मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026, प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, चिड़ियों के मधुर कलरव और सूर्य की पहली किरण के साथ हो चुकी है प्रातःकालीन की शुरुआत। थोड़ी ही देर में संपूर्ण धरती पर नई किरणों के साथ नई ऊर्जा का संचालन करेगी और ये संपूर्ण धरती अपनी उसी नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाएगी। और श्रोताओं, इसी नई ऊर्जा के साथ लेकर आए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी हमजोली, जी हाँ संजोली। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूए अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों

के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर

0: केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि की एक विशेष महत्ता है और वही महत्ता है कृषि चर्चा की भी। तो आइए श्रोताओं जानते हैं अरबी की उन्नत खेती के विषय में। जानकारी दे रहे हैं नागेंद्र सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम है कृषि चर्चा।
2: शुभ प्रभात। अरबी की खेती सामान्यतः हमारे पूरे देश में की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से उत्तरी और पूर्वी राज्यों में अरबी का उत्पादन अधिक होता है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से अरबी की खेती होती रही है और इसका उपयोग भी काफी व्यापक स्तर पर रहता है। अरबी एक शाकीय पौधा है, जिसमें जमीन के अंदर बनने वाले घनकंदों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरबी में मंड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अरबी में लोहा के साथ साथ प्रोटीन एवं खनिज लवण की मात्रा भी अन्य कंदों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जिससे इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में भी बहुतायत से किया जाता है। लेकिन सब्जी रूप में या चोखा रूप में इसका प्रयोग अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। जब इसकी महत्ता को हम देखते हुए खेती की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाता है कि उन्नतशील जो किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उनके बारे में जानें। एक सतमुखी जाति है इसकी, जिसके पौधों की ऊंचाई 100 से 150 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन मातृ घनकंद जो है वह मध्य आकार के होते हैं। बाहरी घनकंद काफी संख्या में और आकार में पुष्ट होते हैं। पकाने में अच्छी तरह से घनकंद गल जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म को अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए संस्तुत किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। श्री रश्मि भी है। इस किस्म के पौधे 100 से 150 सेंटीमीटर लंबे और सीधे बढ़वार वाले होते हैं। पत्तियां मध्यम आकार की, चौड़ी और डंठल गहरे हरे बैंगनी रंग के होते हैं। घनकंद बड़े बेलनाकार और मध्यम आकार के होते हैं। घनकंदों की औसत पैदावार 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। श्री पल्लवी भी है एक जाति। यह भी 100 से 150 सेंटीमीटर ही लंबी होती है और सीधे बढ़वार वाले होते हैं।

0: लेकिन इसके उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, उपज की जिसे हम कह लेते हैं, तो वह 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कंधेआम सी एक प्रजाति है, इसकी 7 नंबर की सीरीज काफी उपयोगी है। इनके कंधों का आकार काफी लंबा होता है तथा प्रत्येक क्लंप में औसतन 4 से 5 पुत्तियां निकलती हैं। इस किस्म के कंध की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, मोटाई 15 से 80 सेंटीमीटर और प्रति क्लंप का भार 550 से लेकर 600 ग्राम तक का होता है। इन किस्मों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो अहीना, पूनम पेट, जाखड़ी साकीन 5, मुक्ता केशी, टोपी, एनडीसी 1, ये बहुत सारी जातियां हैं जिसे हम उगा सकते हैं। और अपने यहाँ देखें, जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से संपर्क करके इनके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी सहायता से अच्छी खेती की जा सकती है बीज प्राप्त करके। इसके लिए भूमि और जलवायु के लिए क्या कहना, यही समय चल रहा है, इसी समय इसकी बुआई की जाती है अपने पूरे उत्तर प्रदेश में, और दूसरा होता है उधर खरीफ मौसम में। लेकिन जायद में जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वह इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए खेत की जुताई अच्छी तरह से करके खेत को समतल बना लेना है और अरबी की बुआई मेड़ों पर करनी चाहिए जिससे पैदावार आपको अच्छी मिले। कंध से कंध की दूरी 45 सेंटीमीटर और मेड़ से मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखने पर उत्पादन अच्छा मिलता है। कुछ जगहों पर इसे समतल क्यारी में भी बोया जाता है। समतल क्यारी में कंधों की बुआई गड्ढों में की जाती है जिसमें कंधों को 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। अरबी के कंधों को 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है जिसमें अरबी के कंधों की 1.5 टन से 2 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उसकी आप बुआई कर सकते हैं। खाद उर्वरक का प्रयोग तो करना ही करना है, इसलिए गोबर की खाद 10 से 15 टन और फास्फोरस, पोटास और नत्रजन, इसका भी जो प्रयोग आप करेंगे, नत्रजन 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होगा। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देना होगा। बाकी बची हुई नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा को 2 बार में बीज जमने के 7 से 10 दिन बाद तथा दूसरी 1 महीने बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देना होता है, तब जाकर के बढ़िया उत्पादन मिलता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूँ और सारी मानवता से विलग होकर मैं समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीतराग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है। जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को

छोड़ देता है। जो जितेंद्रिय है वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा और व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को यह सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावनाएं उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज़ को सुनना और समझना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये करते हैं उस परमपिता को याद कार्यक्रम आराधना के साथ।

मानव में उत्तम पुरुषोत्तम है, हे जानकीनाथ, आपका जीवन सदैव सदा और सर्वोत्तम है, हमें अपने चरणों में स्थान दें।

हे कौशल्या के नंदन राम, हे अवध के राजा राम, पुरुषोत्तम में उत्तम तुम पुरुषोत्तम, हे रघुकुल के राजा राम।

हे ईश्वर, जिसे संसार ठुकराता है उसे तू अपनाता है, मजबूत बनाता है, उठाता है और फिर से उसे खड़ा कर देता है आत्मविश्वास के साथ।

तेरी रोशनी से ही सहारा है माँ, तेरी ज्योति से ही उजियारा है माँ, तू हर राह में दिया बन, बस साथ चलना, तेरे नूर का ही उजियारा है माँ।

हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना और सदा सद्मार्ग पर हमेशा चलाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, जो बना दे मनुष्य को सर्वोत्तम, वो महिमा है श्री रामचरित मानस की। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस की संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 172।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत वन गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज आपने सुना भाग 172। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत में समाचार होंगे।

0: सुचारुतया कुशलतया च सञ्चालनस्य विविधपक्षेषु विस्तृतविमर्शाः कृताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसाईमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेकवैमानिकरक्षापरियोजनानाम् आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराजसिंह चौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थिसम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिमप्राधिकरणयोजनायाः अन्तर्गतम् आभूषणनिर्यातकाः शून्यशुल्केन असंस्कृतवस्तूनाम् अथवा निवेशसामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ विचारों का निर्माण होता है। तो लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज का विषय है आम के गुण और जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस फल की जिसे हम सब बड़े चाव से खाते हैं, जिसका मौसम आते ही हर गली हर नुक्कड़ पर खुशबू तैरने लगती है और जो हमारे दिल के भी उतना ही करीब है जितना हमारी थाली के। हम बात कर रहे हैं आम की, जिसे हम सब प्यार से फलों का राजा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम केवल स्वाद का खजाना ही नहीं बल्कि सेहत का भी अद्भुत स्रोत है। गर्मी के मौसम में जब लू चलती है, धूप चुभती है और शरीर थकान से भर जाता है, तब आम हमें न केवल ऊर्जा देता है बल्कि हमारे शरीर को ठंडक और पोषण भी प्रदान करता है। आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल शुगर पाई जाती है। ये सभी तत्व मिलकर हमारे शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। आम को खाने का सबसे पहला और जायकेदार तरीका है उसका पका हुआ रूप, रसदार, मीठा और खुशबूदार। लेकिन कच्चे आम यानी कैरी का अपना ही महत्व है। कैरी से बनी चटनी, पना, अचार और लौंजी, ये सब केवल स्वाद की बात नहीं करते बल्कि शरीर को लू से बचाने, पाचन शक्ति को सुधारने और प्यास को शांत करने का काम करते हैं। खासकर पना, जिसे कैरी को उबालकर पुदीना, काला नमक और जीरा मिलाकर बनाया जाता है, ये एक बेहतरीन देसी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। शरीर से अतिरिक्त गर्मी को निकालता है और थकान को भी दूर करता है। अब जब बात पके आम की हो रही है तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि ये फल न केवल स्वाद में अद्वितीय है बल्कि शरीर की कई जरूरतों को पूरा करता है। विटामिन ए की प्रचुरता आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी है। वहीं विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आम में उपस्थित फाइबर पाचन को

को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आम खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर इसे सीमित मात्रा में और सही समय पर खाया जाए तो ये वजन नहीं बढ़ाता बल्कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में मदद करता है। खासकर दोपहर के खाने से पहले आम खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप आम खाने के तुरंत बाद भारी खाना खाते हैं तो ये जरूर पाचन पर असर डाल सकता है, इसलिए समय और मात्रा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। श्रोताओं, आम केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं और त्वचा को चमकदार, कोमल और हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। कई लोग आम के गूदे का फेस पैक की तरह उपयोग भी करते हैं जिससे त्वचा को निखार मिलता है। बच्चों

भी लाभकारी होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं और त्वचा को चमकदार, कोमल और हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। कई लोग आम के गूदे का फेस पैक की तरह उपयोग भी करते हैं, जिससे त्वचा को निखार मिलता है। बच्चों के लिए तो आम किसी खजाने से कम नहीं है। ये एक ऐसा फल है जो उन्हें जायका देता है, नखरे नहीं करवाता और साथ ही उनके विकास में भी मदद करता है। बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों और दिमागी विकास के लिए आम में मौजूद पोषक तत्व बेहद सहायक होते हैं। बुजुर्गों के लिए भी आम ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, बशर्ते शुगर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन किया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आम एक ऐसा फल है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी आनंद देता है। आम से जुड़े किस्से, आम के बागों की सैर, आम रस की मिठास, ये सब हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों का हिस्सा बन चुके हैं। आम का मौसम हर बार गर्मी में एक उत्सव की तरह आता है और हर उम्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा आम खाना भी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर यदि उसे दूध या अन्य भारी चीजों के साथ तुरंत खाया जाए। इससे पाचन पर असर पड़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। न ज्यादा न कम, बस उतना ही जितना शरीर को जरूरत हो और आत्मा को तृप्ति मिले। श्रोताओं, इस गर्मी के मौसम में जब आम फिर से बाजारों में अपनी महक के साथ आए तो उसे

0: नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपको जानकारी मिल रही थी आम के गुड़ों के बारे में और जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओं, आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन ताल चौताल। रात्रि 9:30 पर पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहम्मद अजीज के स्वर में नात और कव्वाली। रात्रि 8:10 पर रात्रि 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम। शाम 7:31 पर होगा कार्यक्रम अंग्रेजी कार्यक्रम। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। नई उड़ान ये कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा अपने ही समय पर यानी शाम 5:10 पर। विज्ञान और किसानी कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से। वार्ता का विषय होगा खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में आज आप सुनेंगे संजू सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए कार्यक्रम होगा दोपहर 1:50 पर। हमारी शहरी बहनों का कार्यक्रम अपराजिता आप सुन सकेंगे दोपहर 1:15 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन सकेंगे सुबह 11 बजे। उर्दू कार्यक्रम नशे किया जाएगा सुबह 9:30 पर। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। प्रातः 9:15 पर सुनिएगा मिर्जापुर व सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित इंटरैक्टिव प्रोग्राम आपके मेल व आपके गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन ताल सुल। अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज का विषय है दया धर्म का मूल है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज का विषय है दया धर्म का मूल है। जी हाँ, मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण उसका सद्गुण होता है। इन सद्गुणों में दया का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। दया वो भावना है जो मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया होती है वो सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य होता है। भारतीय संस्कृति में दया को धर्म का मूल बताया गया है। इसका अर्थ है कि बिना दया के कोई भी धर्म पूर्ण हो ही नहीं सकता। दया मनुष्य को मानवता, प्रेम, करुणा और सहानुभूति का मार्ग दिखाती है। अगर दया के अर्थ की बात की जाए तो दया का अर्थ है दूसरे के दुख दर्द को देखकर उनके प्रति करुणा, सहानुभूति की भावना रखना। जब किसी जरूरतमंद, गरीब या बीमार या असहाय व्यक्ति की सहायता करने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है ना, तो वही दया कहलाती है। दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। जी हाँ, दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि पशु पक्षियों और समस्त जीव जंतुओं के प्रति भी ये होनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है वो कभी भी किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। जी हाँ, वह दूसरों की सहायता करने में आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। इसलिए कहा भी गया है कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। धर्म और दया का संबंध, धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं होता है श्रोताओं। धर्म का सच्चा स्वरूप मानवता को सदाचार में छिपा होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के मन में दया नहीं है तो उसका धर्म केवल दिखावा बनकर ही रह जाता है। दया धर्म की नींव है। जिस प्रकार किसी भवन को मजबूत बनाने के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म को और मनुष्य को कितना मजबूत बनाने के लिए, महान बनाने के लिए दया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। सभी धर्मों में दया और करुणा का एक विशेष महत्व बताया गया है। भगवान बुद्ध ने भी जीवों पर दया करना सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा और दया को अपने जीवन का आधार बनाया है। संत कबीर और तुलसीदास जैसे महान संतों ने भी दया को सबसे बड़ा धर्म बताया है। दया का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। दया मनुष्य को महान बनाती है। यह समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति को स्थापित करती है। यदि संसार में दया ना हो तो चारों ओर केवल हिंसा, घृणा और स्वार्थ ही दिखाई देगा। दया का महत्व कई बिंदुओं पर समझा जा सकता है। अगर बात की जाए मानवता की पहचान की, तो दया से मानवता की एक बहुत बड़ी पहचान बनती है। दया ही मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। पशु केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जबकि मनुष्य दूसरों के सुख दुख को भी समझता है। समाज में प्रेम और शांति लेकर आता है। जब लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। दया लोगों को जोड़ती है, मनस को समाप्त करती है, ईर्ष्या को समाप्त करती है। साथ ही साथ ये भावना हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति भी कराती है। जी हाँ, दूसरों की सहायता करने में मन की शांति और संतोष मिलता है। ये सुख किसी धन या वस्तु से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। दया ही एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से ईश्वर की कृपा आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि ईश्वर उसी पर कृपा करता है जो दूसरों पर दया करता है। दयालु व्यक्ति ईश्वर के अधिक निकट पहुँच जाता है। माना जाता है कि ईश्वर उसे अपने सानिध्य में रखता है। दया का उदाहरण इतिहास और समाज में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ दया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। बात की जाए महात्मा बुद्ध की, तो एक बार महात्मा बुद्ध ने घायल हंस को बचाया था। उन्होंने कहा कि किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कई ऐसे महान लोग रहे हैं हमारे समाज में जिन्होंने दया का भाव सबसे सर्वोपरि रखा है। बात की जाए अगर महात्मा गांधी की, तो गांधी जी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। बात की जाए

अगर राजा शिवी की, जी हाँ राजा शिवी भी दया का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक देने को तैयार हो गए थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दया मनुष्य को महानता की ओर लेकर जाती है और साथ ही साथ ईश्वर के सानिध्य में भी लेके जाती है। आज के समय में दया की आवश्यकता का युग भौतिकवादी और स्वार्थ का युग बनता जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में दया की भावना की कहीं बहुत अधिक आवश्यकता हो गई है। गरीबों, अनाथों, वृद्धों और बीमारों के लिए सहायता करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। पशु पक्षियों के प्रति भी हमारा दयालु होना जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना भी दया का ही एक रूप है। जी हाँ, क्योंकि प्रकृति सभी जीवों का आधार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को दया को नहीं अपनाएगा तो समाज में अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दया का सीधा सीधा संबंध अहिंसा से भी आता है। दया का संबंध अहिंसा से बहुत गहरा है। जो व्यक्ति दयालु होता है वो कभी हिंसा का मार्ग अपना ही नहीं सकता। वह सभी जीवों के जीवन का सम्मान करता है। अहिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी को कठोर शब्दों को बोल देना भी एक अहिंसा ही है। इसलिए दया मन, वचन और कर्म तीनों में दिखाई देनी चाहिए। दया वास्तव में धर्म का एक बहुत बड़ा मूल आधार है। बिना दया के धर्म अधूरा है। दया मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना को उत्पन्न करती है। हमें अपने जीवन में दया, करुणा और सहानुभूति को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए। पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। दूसरों के दुख को समझना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दया को अपने जीवन का आधार बना ले तो ये दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है।

श्रोताओं, आज की विविधा यहीं तक। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
2: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश

0: लिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि NDRF ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
3: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
4: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संतियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
1: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी।

0: जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, संगीत वो विधा है जो जीवन को लयबद्ध और अनुशासित होना सिखाती है, इसलिए संगीत का जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए आइए श्रोताओं सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन। ताल है सुल।

शंकर ने 7 बार तांडव नृत्य किया है, जिसमें रौद्र तांडव और आनंद तांडव बहुत प्रचारित हुए हैं। रौद्र तांडव महासती के भस्म होने के बाद क्रोध में किया था भगवान शंकर ने ये नृत्य, और अगली बार जब माँ पार्वती से उनका विवाह हुआ उसके बाद उन्होंने जगत में श्रृंगार रस को व्याप्त करने के लिए दोनों ने मिलके माँ और पार्वती और शिव ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया विश्व के समक्ष, वो है आनंद तांडव। इसी आनंद तांडव को हमने गुरु कृपा से एक परन बनाई है, जिसका नाम हमने आनंद तांडव परन रखा है। ये स्वनिर्मित है, आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें एक चीज और है कि नृत्य को जब उन्होंने किया तो वो संकीर्ण जाति में है, और गणपति गणेश ने सर्वप्रथम पुष्कर नाम के वाद्य, जो आजकल पखावज या मृदंग के नाम से है, उसका वादन किया। तो आपके सामने प्रस्तुत है आनंद तांडव। जटा कटा सम भ्रमम भ्रमन्नलिम्प निर्झरी गले लवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगद जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाहितस्थले गले वलम्ब लुम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमट डमट निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम बमक बमक बम बमक बमक बम बमक बमक बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक

धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा धग दिगन धग दिगन धा

एक रामपुर दरबार की शतरंगी परन जिसमें छह लय बनती हैं, दिन ता तिट धा तिट कत ग दी ग धा तिट धा धा तिट किट धा किट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगन धा तगट तक तक धगट दग दिन दगन धा किट तक दिगन किट तक तकिट थुकिट तक धाद्रिकिट धिकिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन ला धकिट धान धा திருக்கடத்துக்கு தா திருக்கிறதுக்கு கலந்தா காந்தா திருக்கடத்துக்கு தா திருக்கிறதுக்கு கலந்தா.

कुछ चक्रदार परने दो एक तगदी गल, ये अवधि घराने की चक्रदार परन है जो फरमाइशी है। तगत टिकट तगत टिकट तगत तगत तगत धगत टिकट धगत टिकट धगत धगत धगत धगन धिकट धगन धिकट धगत धगत धगत धगन धिकट धगत टिकट धत धगत टिकट धगति धिकट तगिन धत तगिन धत्ता किट तगिन दान धा फरमाइशी है। देखें

0: चैत्र का महीना चल रहा है
1: और
0: अभी 22 तारीख से माँ का स्तवन नवरात्र के रूप में होगा, जो 9 दिन 9 देवियों के पर आधारित होगा। 9 दुर्गा को स्कंद पुराण में प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह श्लोकबद्ध किया गया है। इसी श्लोकों पर आधारित गुरु कृपा से हमसे ये रचना बन गई है, जो नवदुर्गा पर इनके नाम से प्रचारित है। इस स्वनिर्मित रचना को आप सुने और माँ दुर्गा का स्तवन अपने हृदय में करें। धा दिन ता तेट धा त्रिकट गदिगल धा त्रिकट गदिगल धा त्रिकट धागड़ तक धूमगिर तक गदिगल धा धूमगिर तक गदिगल धा धूमगिर तक गदिगल धा दुर्गे दुर्गति हारणी माता दिधान तान धा गदिगल धाता शैल पुत्र जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलनि त्रयताप हारणी गदिगल धा धा गदिगल धा धा गदिगल धा धा चंद्र घंटा घनन घनन घन घनात घननन कुष्मांडा गदिन धान तान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कांत्रिकृत तक धागृत धूमृत घांत्रिकृत तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिकृत तक ईशत्तधा वैशत्तधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्वधा धा धा पुंगी फल तांबूल लवंग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धृग जय मा जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड विच्चे नमः धा धा धा धा धा धा धा धा धा। बीच में

अष्ट सिद्धि और नौ प्रकार की पूजन सामग्री का भी प्रयोग, जो मृदंग वांग्मय में प्रथम बार आया है, इसका भी प्रयोग किया गया है इस स्मरण में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री राजखुशी राम का पखावज वादन ताल थी सुल, और इसी कार्यक्रम के साथ आज का नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ और नई आवाज के साथ। थोड़ी देर में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राज

0: विविधता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न

0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि S. पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं N. गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है।

0: दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sander World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
4: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तशदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा

0: हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज़ बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नज़रअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज़ का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पाँचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवास के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपये की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मस्कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज़ नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज़ VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोज़ा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर ज़िले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर ज़िला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर ज़िले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमाए मौसमियात ने अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में

0: पर जोर देने के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
1: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।

आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। मैं श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है आप जो हमें मेल करते हैं और उस पर लिखी होती है आपकी ढेर सारी फरमाइशें। तो भैया, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारे श्रोताओं को हमारा ई मेल एड्रेस नहीं पता है, हमारे बहुत से श्रोताओं को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ई मेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी ढेर सारी फरमाइशें भेज सकते हैं। और भाई, ढेर सारी फरमाइशें जिस समय हैं वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे सामने हैं। तो भाई, जिनके मेल मेरे पास आ चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कोशिश कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और भाई, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ढेर सारे जो मेल आ चुके हैं अब उनको करते हैं शुरुआत पढ़ने की, क्योंकि बहुत सारे मेल हैं।

और सबसे बड़ी बात पता है क्या, श्रोताओं के जो मेल आने होते हैं ना, वो मतलब अगर कार्यक्रम हमारा 9:15 से शुरू होता है, 8:45 से, तो जो मेल आने शुरू होते हैं वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये आपका प्यार दर्शाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, एक गुजारिश ज़रूर है कि जो एक बार मेल कर चुके हैं वो बार बार ना करें, क्योंकि उससे फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन आप मेल कर रहे हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हमारे पास कार्यक्रम का ये पहला मेल जिन्होंने हमें भेजा है, ये मेल हमें आया है

हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिसन खान। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है ग्राम पंचायत कालेगांव से, भेजने वाले हैं श्री सुधाकर राजे राजे जाधव, साथ में डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी प्रणाली, साथ में है सर्वद, साथ में है सानवी देशमुख, और इन्हीं के साथ में है देशमुख परिवार से वायाल परिवार से हैं। फिल्म इन्होंने सुनना चाहा है, बड़ा प्यारा सा गीत है। और भी मेल मैं साथ में पढ़ना चाहूँगी। इन्होंने अगला ये मेल हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और अगला ये मेल हमारे

पास भेजा है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, साथ में है दीपेश वर्मा। और अगला ये एक और मेल हमारे पास आया है गांव फरान से, हिसार से। भेजने वाले हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें मेल भेजा है राजू मिगलानी, बबता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू। और अगला ये मेल हमें भेजा है, लिखा है होस्ट मैडम जी खुश रहें मस्त रहें, बिल्कुल हम भी ये दुआ करते हैं कि आप भी खुश रहें मस्त रहें। और ये मेल हमें भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, आप कहाँ से हैं, आपने हमें ये नहीं भेजा है, नहीं भेजा है, अनारकली बाजार जागरण से हैं आप सभी लोग। और अगला ये मेल हमारे पास आया है कल्पना ताई लोखंडे, शैलेंद्र, प्रतीक्षा, स्वप्निल और साथ में है रक्षिता लोखंडे, आप सभी लोग हैं यवतमाल महाराष्ट्र से। और अगला ये मेल हमारे पास आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिवदर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म तीसरी कसम का ये प्यारा सा गीत। तो भाई लीजिए श्रोताओं, कोशिश की जाएगी भाई सभी के पसंद की बजा सके, लेकिन हाँ भाई कहते ना मेल बहुत सारे हैं तो कुछ चुनिंदा गाने बच पाएंगे। तो भाई लीजिए सभी को पसंद है ये प्यारा सा गीत, तो लीजिए आपके रेडियो सेट तक पहुँचता है फिल्म तीसरी कसम का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, जिसमें आपके ढेर सारे मेल जो हैं वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है दाऊद सराय सहारनपुर से भेजने वाले हैं अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सिर साथ में है, मुजक्किर साबरी और साथ में है जरीफ अंसारी। और अगला ये मेल हमें भेजा है नेहा वर्मा जी की तरफ से आया है। ये हमें भेजती हैं कि मुझे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनना बहुत अच्छे लगते हैं और हमें आपका ये मेल भेजना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही में इन्होंने कहते हैं बहुत सारी तारीफ लिखी भेजी, उसका तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। और अगला ये मेल हमारे पास आया है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से भेजने वाले हैं अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर हक डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, भेजने वाले हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, आपका मेल हमने पढ़ दिया है, आपने फिर से हमको ये मेल भेज दिया है। अगला मेल हमारे पास भेजा है फिरोजपुर पंजाब से, भेजने वाले हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और साथ में हैं पोतरे गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह। इनका मेल तो मैंने सबसे पहले पढ़ा था लेकिन उन्होंने फिर मेल कर दिया। अगला ये मेल हमारे पास आया, इन्होंने बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी है कि जल ही जीवन है। वाकई में श्रोताओं, अगर आज जल को नहीं बचाया गया, मतलब कि सेव नहीं किया गया, सेव वाटर को सेव नहीं किया गया, तो वाकई में आगे आने वाले समय में पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और ये मेल हमें भेजा है जबलपुर मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह और साथ में है प्यारी सी गुड़िया वेदा सिंह। और अगला ये मेल हमारे पास आया है दरवाज़ा एटा से, भेजने वाले नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अमन अब्बासी, साथ में है यशफ अब्बासी। मेल भेजने के बाद श्रोताओं, थोड़ा सा इंतज़ार किया कीजिए ताकि मैं आपके मेल पढ़ सकूँ, क्योंकि आप रिपीट मेल हो जाता है तो फिर वो वॉर मेल नीचे चले जाते हैं। अगला ये मेल हमारे पास भेजा है नंद किशोर घाटे, संगीता घाटे, साक्षी घाटे, जयश्री मेहरे महत्रे, अंजलि करवा और बाल साहेब करवा, आप सभी लोग हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, ये है

आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत, और आपके मेल जो है वो समय ढेर सारे समय मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगला ये मेल हमारे पास आया है सेक्टर 68 मोहाली चंडीगढ़ से, भेजने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और अगला ये मेल हमें भेजा है गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, भेजने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा।

धर्मपुरी से। खंडवा मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा और साथ में बेबी आयशा। और अगला ये मेल हमें भेजा है ग्राम क्वारियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुदित राजपूत, ब्रजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता, शोभा, दीपा, रामफेरे राजपूत, कपिल, प्रांजल, रामा, रमा, अनन्या और साथ में है कृष्णा राजपूत। और अगला ये मेल हमारे पास आया है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कामरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक और लुबना और साथ में है यश मंसूरी। इन्होंने लिखा है कि आपके पत्र आपके मेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन संजोली जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत आपको भी नमस्कार, प्यारी सी गुड मॉर्निंग आपके लिए भी। क्या बात है, ढेर सारी फूल पत्तियां उन्होंने अपनी भजा बना के भेजी है। और साथ ही सुहावने मौसम में हमारी फरमाइश शामिल करें, कोशिश पूरी पूरी की जाएगी। और आपकी प्रस्तुति इतनी लाजवाब है कि मैं अपने आप को ढोक नहीं पाया, क्या बात है, हम तो चाहेंगे। लेकिन हाँ, बस बार बार मेल ना करें, कोई बात नहीं। आपका देखिए मेल अब मैंने पढ़ दिया है और बड़ा प्यारा सा गाना उन्होंने सुनना चाहा है, तो भाई लीजिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट तक पहुँचता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और श्रोताओं, कार्यक्रम में ये एक मेल हमारे पास आया। ये मेल हमें भेजा है तालिब अंसारी साहब ने, राजकटरा बाराबंकी से। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग संजोली मैम, शायद मेरा मेल कहीं चला जाता है जो कभी पढ़ा ही नहीं जाता। शायद मेल एड्रेस गलत है या फिर सही नहीं है, एक बार पढ़ के कन्फर्म कर दीजिए। भाई तालिब जी, एड्रेस ईमेल बिल्कुल सही है, लेकिन एक साथ एक ही बंदा कई मेल कर देता है, जिसकी वजह से मेल जो है आपका हो सकता है नीचे चला जाता हो, लेकिन ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही है जिस पर आपने हमें मेल किया है ना। तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। और अगला ये मेल हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म बैराग का ये प्यारा सा गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो भाई लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक।

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है pkld पत्र के लिए धन्यवाद @gmail.com पर। और ढेर सारे मेल करने के लिए, मेल के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो भाई श्रोताओं, कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को, और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सभा का।
2: मिर्जापुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणक को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
3: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
2: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं सिर्फ 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय

0: कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRS नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर SSP 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना ID प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN द्वारा ककरही टड़िया गाय घाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में सुनिएगा संवेद स्वर में देशगान।
1: अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सामाइन पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
1: उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, आज हम एक नहायत अहम दिन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो दिन है आलमी योम अजायब घर। आलमी योम अजायब घर हर बरस 18 मई को मनाया जाता है ताकि लोगों में अजायब घरों की अहमियत और तारीखी वर्से के तहफ्फुज़ का शऊर पैदा किया जा सके। सामाइन, अजायब घर सिर्फ कदीमी चीज़ों की रखने की जगह नहीं है बल्कि ये हमारी तारीख, तहजीब, सकाफ़त और इल्म के मुहाफिज होते हैं। ये हमें हमारे आबाओ अजदाद की ज़िंदगी, उनकी रवायात और तारीख़ी वाक़ियात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। सामाइन, आपको चाहिए कि आप वक्तन फ़वक्तन अजायब घरों का दौरा करें क्योंकि ये इल्म हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। आलमी योम अजायब घर हमें पैगाम देता है कि अपनी तारीख और सकाफ़त को महफूज रखना हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सामाइन, जिस तरह अजायब घर हमारी तारीख, तहजीब, सकाफ़त और इल्म के मुहाफिज हैं, उसी के मानिंद ज़ुबान की तमाम इस्नाफ़ सुखन भी तारीख, तहजीब व तमद्दुन और सकाफ़त की मुहाफिज होती हैं। इन्हीं तमाम इस्नाफ़ सुखन में अफसाना एक ऐसा सिन्फ है जो मुआशरे की सच्ची तस्वीर और हकीकत बयान करता है। तमाम तरह की सबक और सीख भी अफसाना निगार की कलम मुआशरे को देता है। इसलिए अब पेश है आपके लिए एक खूबसूरत और दिलचस्प अफसाना। मौजू है तुझको चलना होगा। अफसाना निगार हैं मोहतरमा सिफतुज़्ज़हरा ज़ैदी। समात फरमाएं।
2: आज उसकी ज़िंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। माजी की कड़वाहटों ने इसका कभी पीछा ही नहीं छोड़ा था। जब वो तन्हाई में बैठती तो गहरी सोच में डूबी रहती। कभी बचपन की यादें उसे बेचैन करती, अपने पुराने दोस्त याद आते, कभी जवानी की पुरजोश रौनकों का ख्याल आता। वो बेफिक्र ज़िंदगी जो आज उसे छोड़कर कोसों दूर जा चुकी थी, फिर ये बुढ़ापा जिससे वो गुजर रही थी, एक खला बनकर वो चुप सी हो जाती। हाँ, ये रब्बो आपा की ज़िंदगी का इल्मिया था। बचपन कब गुजर गया रब्बो को एहसास ही नहीं हुआ। बस सुबह उठकर तैयार होना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आकर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना कूदना, इसी तरह वक्त गुजरने लगा। रब्बो जब धीरे धीरे सिनो शहूर को पहुंची तो उस फिक्र ने और परेशान कर दिया कि तालीम के हुसूल के बाद अब क्या करना है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और रब्बो आपा के ख्यालात में भी एक हैजान सा पैदा होता गया, क्योंकि अब घर के हालात उसके सामने आया हो चुके थे। अब रब्बो में ये शऊर ज़रूर पैदा हो गया था कि अब हमारा मकसद ज़िंदगी क्या होगा। उसे अब घर की कस्मापुरसी की ज़िंदगी से बाहर निकलना था। उसके लिए मेहनत तो ज़रूर करना थी। रब्बो की ज़िंदगी का नज़्मुलैन, जल्द पढ़ाई ख़त्म करके कोई ना कोई नौकरी की तलाश जल्द अज जल्द करना ही थी। मगर ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं हुआ करती। एक तो तालीम के लिए खराजात, दूसरे सामाजिक बंधन जो हर औरत को अपने हिसार में जकड़े रहते हैं। रब्बो की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की थी। उसने तालीम के हुसूल के लिए हिम्मत तो जुटाई मगर सामाजिक बंधन उसके तालीमी रास्ते पर मदाखलत ज़रूर करने लगे थे। कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो उसकी इस हिम्मत की तारीफ़ करता, बल्कि ऐब रखने वालों की कोई कमी नहीं थी। कोई रब्बो के बाहर निकलने पर इतराज़ जड़ देता मगर रब्बो सभी को अच्छी तरह समझ रही थी। वो जानती थी कि मुफलिसी में कभी कोई शरीक नहीं होता। इसके जहन में किसी शायर का ये शेर ज़रूर एक सच्ची हकीकत बयान कर देता था कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर होता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर होता है, उसका हरैब समाने को हुनर लगता।

0: वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसको चलना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। रब्बो अपने अमली इरादे के साथ आगे बढ़ रही थी, रास्ते खुलते गए, वो आगे बढ़ती गई, क्योंकि अब उसने किसी की परवाह नहीं की थी, बस वो थी और उसका मकसद। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास और बेहतर करना चाहती थी, जिससे आने वाली नस्लें उसके तजुर्बात से फैज़ हासिल कर सकें। धीरे धीरे अदबी दुनिया में उसकी ख़ास पहचान बन गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वाकई यही रब्बो के साथ भी हुआ। ये एक सच्ची हकीकत है कि जब तक आप दूसरों से मदद चाहेंगे या दूसरों की परवाह करेंगे, तब तक समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे। लेकिन जब अल्लाह और उसके इंसाफ का दामन थामेंगे, रास्ते अपने आप खुलते नज़र आएंगे। आज रब्बो आपा बुलंद और अजीम शख्सियत के मालिक हैं, मगर माजी की तलखियों ने कभी भी रब्बो को तन्हा नहीं छोड़ा। हालांकि रब्बो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो तल्ख हकीकतें जिन्होंने इनको मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। रब्बो इन हालात से बहुत दूर जाना चाहती थी, मगर माजी ने इन्हें अपने हिसार में जकड़ रखा था। आज रब्बो तन्हा ज़रूर थी, मगर इनका कलम तेज़ी से रवां था। इन्होंने कई किताबें भी लिखीं और शाया होकर मंजर आम पर भी आ गईं। रब्बू ने दीगर दूसरे कामों में भी अपनी सलाहियत का सबूत देकर अपनी ख़ास पहचान बनाई, मगर लफ्ज़ गरीब की लड़की उनको परेशान किए थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। मगर उसे अपनी जैसी समाज की लड़कियों के लिए सामने आना था। जो गरीब की लड़कियों को किसी लायक नहीं समझते, उसे आगे चलना था, आने वाली नस्लों के लिए एक नज़ीर बनना था। आज वालदेन की कमी उसे हर मौके पर अकेलेपन का एहसास दिला रही थी। जब रब्बो को कोई किताब शाया होती या अदबी अवार्ड उसको दिया जाता, तो उस वक्त वो बहुत परेशान और रंजीदा हो जाती, इस ख्याल से कि मैं अपने वालदेन को कैसे बताऊं कि अब आपकी बेटी गरीब नहीं रही। आज रब्बो की कामयाबी पर वही ख़ानदान वाले उस पर फ़ख्र करते हैं, मगर वो माजी की तलखियों को कभी नहीं भूल पाई। मगर फिर भी तुझको चलना होगा, और वो चलती रही, आगे बढ़ती रही, बेखौफ खतर संगलाख वादियों में गिरते हुए, पत्थरों की चट्टानों से चोट खाते हुए, अपनी तन्हाई के साथ रब्बो को आगे बढ़ना होगा। यही ज़िंदगी का सच है, और यही तलखी आज भी उसकी कामयाबी में पेश पेश है।
1: सामाइन, अभी आप तुझको चलना होगा उन्वान से समात फरमा रहे थे खूबसूरत अफसाना। अफसाना निगार थीं मोहतरमा सिफ़तुज़्ज़हरा ज़ैदी। सामाइन, अब माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज फ़तेहपुरी।
2: गज़ल का मतला पेश खिदमत है। अपना अपनों से आज

मेरी खुशियों से जल गए कुछ लोग, मेरी खुशियों से जल गए कुछ लोग, तन्हा जीना मुझे गवारा है,

उसके फितना गरी न जाएगी, उसके फितना गरी न जाएगी, अपनी फितरत से वो जो हा

लगे जहां अपना, आग ऐसी लगे मकामे मेरे, ना रहा कोई भी निशान।

0: अपना।
1: सामाईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज़ फतेहपुरी के खूबसूरत कलाम से। आपको ये प्रोग्राम कैसे

लगा हमें अपनी राय से मुत्तला जरूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त, आदाब।

अभी सामयीन समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत के अंतर्गत लोक रंग में संजू सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। आइए श्रोताओं, इन्हीं के स्वर में सुनते हैं सबसे पहले ये कहरवा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बस एक क्लिक में कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म राजकुमार मूवी का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में किस लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायल अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज ही नीदरलैंड्स के लिए रवाना होंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 18 मई को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे 19 मई को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के रूप में ये उनकी पहली चीन यात्रा है।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन ने पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने में भी रुचि दिखाई। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर लगाए उच्च शुल्कों को समाप्त कर दिया था, जबकि चीन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को प्रतिबंधित न करने पर सहमत हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को बताया कि चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमति जताई है, जो लगभग एक दशक में बोइंग की पहली बड़ी खरीद है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के न्याय विभाग ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार के

0: खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दायर मुकदमे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी अनुशासनात्मक प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
1: ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार कार्यालय के उस अधिकार को चुनौती देता है जो अमेरिका में अधिवक्ताओं के लिए नैतिकता और कदाचार के मामलों की जांच करता है। मुकदमे में मुख्य रूप से न्याय विभाग के पूर्व अधिवक्ता जेफ्री क्लार्क का नाम शामिल है, जिन पर वर्ष 2020 में चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है। मुकदमे में ट्रंप के वफादार और वर्तमान में क्षमादान मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता एड मार्टिन का भी नाम शामिल है। न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीसी के अधिकारियों को यह तय नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों या संवैधानिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन किया है या नहीं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के मद्देनजर क्यूबा की राजधानी हवाना में अपने समकक्ष और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी चर्चा की। अमेरिका ने क्यूबा को ईंधन संकट से निपटने में मदद करने के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश को नवीनीकृत किया है। क्यूबा ने कहा है कि वे सहायता पर चर्चा के लिए तैयार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में कम से कम 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं।
2: यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में घर, एक स्कूल, एक पशु अस्पताल और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी। यह हमला कीव को निशाना बनाकर किया गया था। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से अधिकांश को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें आवासीय क्षेत्रों में गिरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस युद्ध समाप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। उधर रूस ने कहा कि ये हमले यूक्रेन की सेना को समर्थन देने वाले सैन्य और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों सहित कई देशों ने हमलों की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इसराइल और लेबनान के अधिकारियों ने वाशिंगटन में तीसरे दौर की शांति वार्ता की। इसमें हिजबुल्ला को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई। वार्ता आज भी जारी है। अभी तक इसमें किसी महत्वपूर्ण प्रगति के समाचार नहीं है।
3: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसराइल अंतिम समझौते तक हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। वहीं लेबनान इसराइल से लेबनानी क्षेत्र से हटने, हवाई हमले रोकने और सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहा है। हालिया संघर्ष 2 मार्च को हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद शुरू हुआ। 24 अप्रैल को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। बाद में 26 अप्रैल को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर और कड़े हमले करने का आदेश दिया। तब से इसराइल की सेना ने लेबनान से बार बार रॉकेट लॉन्च होने की खबर दी है और कहा है कि उसने हिजबुल्ला के कई ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल ने इस पर्वतरोहण सत्र में रिकॉर्ड 492 पर्वतरोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए अनुमति पत्र जारी किए हैं। यह आंकड़ा 2023 में जारी किए गए 489 अनुमति पत्रों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगो को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलू जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जबकि सांडा एक आधुनिक बिना हथियार वाली स्पर्धा है। इसमें मुक्का मारना, लात मारना, फेंकना, कुश्ती और बचाव की तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर तनाव के बावजूद सहयोग पर जोर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में 21 लोगों की मौत, 45 घायल। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने ऊर्जा संकट के बीच क्यूबा में अधिकारियों से मुलाकात की। और वुशू में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए नए तरानों का। कार्यक्रम है चित्रपट से।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय आप आनंद ले रहे हैं नए तरानों का, कार्यक्रम है चित्रपट से। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं यासिर देसाई और गीत गांगुली की आवाज में फिल्म परमाणु का ये प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप।

श्रोता, इस समय आप आनंद ले रहे हैं नए तरानों का। कार्यक्रम है चित्रपट से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। तो आइए श्रोताओं, आप कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म बत्ती गुल मीटर डाउन का ये प्यारा सा गीत आतिफ असलम की आवाज में।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म 1921 का ये प्यारा सा गीत, अरिजीत सिंह और आकांक्षा शर्मा की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे नए तराने, कार्यक्रम था चित्रपट से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। समय हो गया कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का। इस कार्यक्रम में श्रोता हमसे जुड़ते हैं फोन कॉल के माध्यम से और सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। आप भी सुन सकते हैं अपनी पसंद की फिल्म की, जिसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0522-2238-825। कार्यक्रम में आइए जान लेते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: तितलियाँ फूलों पे मंडराती होंगी, भौरों को लुभाती होंगी, याद तो हम आपको करते हैं, हिस्सियाँ भी शायद आपको आती होंगी।
0: बिल्कुल, हमें अपने सभी श्रोताओं की याद आती है और देखिए जब हमसे बात हो।
1: जी, मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का इंदौर।
0: जी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है, आप हमारी पहली कॉलर हैं?
1: जी, अच्छा लग रहा है मैडम, पहला कॉल लगा तो।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत अब जल्दी से बता दीजिए तो हम सुनवा देंगे आपको।
1: मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में, और फिल्म का नाम है खेल, और गाने के बोल हैं

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ये आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब हमारे अगले श्रोता कहाँ से हैं ये जान लेते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ, दुकान में बैठ के आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
0: जी। अपना नाम तो बताइए।
1: मस्त हूँ।
0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम तो बताइए।
1: मैम, आवाज़ कम आ रही है आपकी।
0: आवाज कम आ रही है? अभी अभी आ रही है?
1: जी
0: अभी आ रही
1: जी
0: है आपकी आवाज?
1: जी जी अब आ रही है
0: जी। अब बताएं, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी रमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ।
0: बिल्कुल
1: बहुत ज्यादा गर्मी, 44-12 चल रहा है इस समय।
0: जी जी जी
1: और
0: यही
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मस्त है
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सौदागर और इसका टाइटल सॉन्ग है।
0: चलिए तो सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। हाँ जल्दी बताइए
1: जी। मित्रों को याद कर सकता हूँ क्या?
0: बिल्कुल जल्दी से कर लीजिए याद।
1: भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी, केसरी सिंह राजपूत है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है, और गोल्डी जी है, और आप।
0: चलिए आपकी तरफ से आपके सभी मित्रों के लिए और मेरे लिए भी ये गीत आपके
1: जी
0: रेडियो
1: जी
0: सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश के और कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आप भी सुन सकते हैं अपनी पसंद की फिल्में की, जिसके लिए आप मिला सकते हैं ये नंबर 0522 22 38 825। आइए अब जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं शांति यादव बोल रही हूँ, ग्राम भरियाई मौजा रसिन जिला चित्रकूट से।
0: चित्रकूट से शांति जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
0: आवाज़ नहीं आ रही है, अभी आई
1: जी, अब थोड़ा बड़ी है
0: जी। हाँ तो बताइए कैसी हैं आप।
1: जी मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं।
0: मैं भी अच्छी हूँ। कैसा मौसम है चित्रकूट का।
1: जी मौसम तो ठीक ही है, लेकिन
0: गर्मी
1: ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा आज बादल छाए हुए हैं, थोड़ा घाम भी निकलता है कभी कभी।
0: जी। कुछ लग रहा है कि मौसम ठंडा होने का, कुछ बारिश की उम्मीद है क्या, ऐसा लग रहा है।
1: जी मैम कभी कभी तो धूप निकल आती है तो लगता है कि नहीं बरसेगा।
0: जी हाँ, लेकिन चलिए उम्मीद बनाए रखिए, हो सकता है बारिश हो जाए, कुछ ठंडक आ जाए मौसम में, है ना।
1: राहत बनाए रखे तो
0: जी राहत हो जाएगी।
1: जेठ की दोपहर ही नहीं, मतलब जान मिलेगी कि जेठ की दोपहर है।
0: जी जी बिल्कुल सही कह रही है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी।
1: जी हिना फिल्म का है कुछ मैं हूँ कुछ रंग हिना,
0: लता मंगेशकर की आवाज में। तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम में आइए, अब जान लेते हैं हमारे श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, राकेश जी शिमला से हैं हमारे साथ, है ना?
1: जी जी जी जी जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने है, क्योंकि मैं आपका नियमित श्रोता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आपको मैं हवा की धुन सुना रहा हूँ, क्या दादाजी जो है हवा चल रही है।
0: अच्छा जी, तो मतलब मौसम तो वैसे भी शिमला का अच्छा रहता है, ठंडा?
1: बिल्कुल बिल्कुल ठंडा नहीं, गर्मी भी रहती है, लेकिन जब बारिश होती तब ठंडा रहता है। लेकिन ये है कि आपकी तरह जो है 40-45 डिग्री तक हमारा तापमान नहीं जाता,
0: नहीं जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीवाना मूवी का गाना सुनना है।
0: तो चलिए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी जी बिल्कुल सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कुमार सानू की आवाज़ में दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब जान लेते हैं हमारे श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: मैं जीनत परवीन बोल रही हूँ इंदौर से।
0: जी जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: चलिए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी मुझे तेजाब पिक्चर का सुनना है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
0: तो सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: जी
0: चलिए जीना जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए बहुत

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और आज मैं हूँ आपके साथ पूनम शर्मा। अब जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, हेलो
1: हेलो, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है बहुत।
0: अभी आ रही है आवाज़
1: जी? अब आई
0: जी। अपना नाम बताइए।
1: हेलो
0: अपना नाम बताइए।
1: ये जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। दीदी जी
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी कैसे हैं आप?
1: दीदी जी बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: जी। राहुल जी आप क्या करते हैं अपने
1: दिखाई
0: बारे?
1: नहीं देता है और आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
0: जी जी तो राहुल आप क्या करते हैं?
1: कुछ नहीं दीदी, घर पे ही रहता हूँ क्योंकि जन्म से मुझे दिखाई नहीं देता है और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: जी जी तो प्रोग्राम आप हमारे यहाँ के सुनते हैं, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
1: जी घर आंगन है, गृहलक्ष्मी है, आंगनबाड़ी है, और किसानों के लिए प्रोग्राम आता है वो भी सुनता हूँ मैं।
0: जी चलिए तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है।
0: आवाज़ यहाँ से तो जा रही है, पता नहीं आपके पास
1: हेलो
0: आपके पास तक आवाज़ क्यों कम जा रही है। यहाँ से तो आवाज़ प्रॉपर जा रही है। आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो, लग रहा
1: हाँ
0: मैं कह रही हूँ, आप आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाने के बोले लिखने वाले ने लिख डाले, और कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: जल्दी से याद कर लीजिए
1: जी। सतीश भाई साहब हो गए, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी हो गए, फूलचंद पाल भाई साहब हो गए
0: जी,
1: और मिंटू भाई साहब हो गए,
0: चलिए
1: सिंह जी हो गए, और हिमांशु जी हो गए,
0: सभी के लिए,
1: जितने लोग सुन रहे हैं सब के लिए,
0: सभी के लिए। चलिए कार्यक्रम में कॉल किया आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी मैं, मेरा नाम है संजय कुमार गौतम, ग्राम सिकरोरी, पोस्ट सिकरोरी, जिला हरदोई, तहसील संडीला, थाना त्रोली से संजय कुमार बात कर रहा हूँ।
0: संजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैम, दिल वाली फिल्म का वही गाना बताया था
0: जी। तो चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुँचा दे।
1: जी
0: जी,
1: तो डेडिकेट करना चाहते थे,
0: जल्दी से बता दीजिए।
1: हमारे विनीत भाई हैं सीतापुर से, ओमकार भाई हैं, वो संतोष मुर्रिया भाई हमारे हैं, और सुनील भाई हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सभी के, और रामू दादा बाजार में हमारे सुनते हैं, उन्हीं के लिए।
0: चलिए, सभी के लिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रोता। कहाँ से जान लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: मैं अशोक कुमार बोल रहा था, जबलपुर एमपी से।
0: जी अशोक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं अशोक जी?
1: मैं बिजनेस करता हूं मैडम
0: जी, और हमारे यहाँ के कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ, मैं सिर्फ यही कार्यक्रम सुन पाता हूँ मैडम
0: जी,
1: मैं दूसरे कार्यक्रम नहीं सुन पाता।
0: चलिए, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: मैडम? ये फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है
0: जी,
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है
0: जी।
1: दिल से दिल मिलने का कोई कारण तो होगा
0: जी। फिल्म का नाम है चरित्रहीन, तो आप

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। कार्यक्रम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: जी मैम,
0: अपना नाम बताइए।
1: मैं बबलू यादव
0: जी,
1: मोहनलालगंज लखनऊ, ग्राम धनवासान मेरा है
0: जी। बबलू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैम मेरी पहली कॉल है आज, फर्स्ट टाइम
0: जी। तो कैसा लग रहा है आप, आपकी कॉल हमारे पास पहली बार मिली है।
1: मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप मेरी

0: कॉल रिसीव किया, मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ।
1: जी हम लोग आप सभी के, हमारे समय भी अच्छा लगता है जब हमारे साथ कुछ नए श्रोता जुड़ते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बबलू जी?
0: मैम मैंने आपको मैम बताया था, बड़े घर की बेटी जिनका घर हो अयोध्या जैसा हो।
1: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा देते हैं।
0: मैम मैं दो नाम लेना चाहता हूँ आपकी तरफ से।
1: जल्दी से ले लीजिए
0: मैम। आपको ये मैं गाना डेडिकेट करता हूँ, और मेरे बड़े भाई विजय पाल यादव जी है, और मैम मेरे ओमकार नवनीत संतोष मौर्य जी को मैं, और अधिक नाम ना लूंगा मैम, नहीं तो लिस्ट लंबी है।
1: बिल्कुल,
0: और आप गाना बजाए और आपको हृदय से धन्यवाद है मेरी।
1: चलिए कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका भी धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में आइए अब जान लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में आखिरी श्रोता कौन है। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं बेटा सिंह जी?
1: जी दीदी, मैं बढ़िया हूँ और मैं ग्राम परसेटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। दीदी
0: जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है?
1: दीदी हम भी यमुना के बहुत ही अच्छे हैं और मौसम जहाँ पर रहते हैं तो धूप थोड़ा ज्यादा है और

0: है कि थोड़ा मौसम बदलता है, कभी धूप हो जाती है और कहो उमस भरी गर्मी दबा के हो जाती है, तो कभी कभी क्या स्वास्थ्य परिवर्तन आ जाता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: इसमें क्या है कि जो भी है परिवर्तन के जो स्वास्थ्य के लिए जो भी है ना, अपना जो पानी भी लेके चले साथ में, और जो भी
1: बिल्कुल
0: है धूप में बहुत कम ही निकले,
1: जी बिल्कुल
0: जरूरत
1: सही
0: के लिए ही निकले।
1: बिल्कुल। देखिए समय बहुत कम है तो जल्दी से गाना बता दीजिए।
0: जी दीदी, फिल्म का नाम रहेगा साजन चले ससुराल, और गीत की बोल रहेगा तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, और ये माही लाल चंदेल साहब के लिए और फूलचंद मनकारी के लिए और जितेंद्र पाल के लिए, जितने हमारे अन्य श्रोता सुन रहे हैं
1: सभी
0: सभी
1: के
0: लोग के
1: लिए
0: लिए।
1: जी। चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT

0: द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
1: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे

0: थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सूबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है,

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा की।

0: लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
1: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
3: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
4: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है हमें राही प्यार के। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल में उतर जाते हैं, तो चलिए आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही गीत।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सनम बेवफा।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रंग फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। संगीत नदीम श्रवण का है, बोल समीर के।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने

0: पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओ एम आर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। फूलमती ने थाना कछौना जनपद हरदोई से सूचित किया है कि कमलू, जिनकी उम्र 40 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 17 नवंबर 2025 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने लाल लोअर, सफ़ेद शर्ट व चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7897656763। चंद्र कुमार ने हमें ग्राम शाहपुर थाना मल्लावा जनपद हरदोई से सूचित किया है कि कृष्ण कुमार उर्फ शिवम, जिनकी उम्र 8 वर्ष, कद 5 फीट, इनकी उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 12 मार्च 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी।

के बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8840213327। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8840213327। उपेंद्र सिंह ने थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि काजल सिंह, जिनकी उम्र 17 वर्ष, कद 157 सेंटीमीटर, रंग गोरा, चेहरा पतला लंबा है, इनका शरीर इकहरा है, ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने रंग बिरंगा सूट व सैंडल पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8173891418। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8173891418। ननकई ने थाना चिन्हट

0: थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि काजल सिंह, जिनकी उम्र 17 वर्ष, कद 157 सेंटीमीटर, रंग गोरा, चेहरा पतला लंबा है, इनका शरीर इकहरा है, ये दिनांक 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने रंग बिरंगा सूट व सैंडल पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8173891418। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8173891418। ननकई ने थाना चिन्हट जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि राजकुमार, जिनकी उम्र 8 वर्ष, कद 3 फीट 7 इंच, रंग गोरा, चेहरा सांवला है, ये लापता हो गए हैं और इन्होंने घटना के समय आसमानी शर्ट हाफ पैंट पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना चिन्हट जनपद लखनऊ को दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सपनों को देना है नई रफ्तार, तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर। हर दिन शाम 5:45 पर रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। कुछ ही पलों में आप इलाकाई खबरें सुनेंगे।
5: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए के 79 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरी फराहम कर रही है।
6: आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत की सुविधा है, नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई, मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी है कि नहीं है, मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुई।
5: वजीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और टूल किट्स भी तकसीम करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता

0: पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है।
1: समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कम्प्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं एनटीए ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपोलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वजीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकदम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। एलपीजी पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खुसूसी जोर दिया गया। दरअसल मुल्क के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुतालिका वजारतों और महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की अपील के मुताबिक वजारत की सतह पर एक साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी काउंसिल की पार्लियामानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 के इनका किया गया जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्यात के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह है। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं टूर्नामेंट आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: आपका अपना कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं श्वेता
1: और मैं साधना। सके स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। साधना जी, गर्मी का मौसम है और जहाँ हम सभी इस गर्मी और धूप से परेशान हैं, वहीं बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। क्या कहती है?
1: सच श्वेता, गर्मी की छुट्टियां तो बड़ी यादें लेकर आती हैं ना हम सभी की।
0: हाँ,
1: है ना? और याद आता है कि नानी का घर, बचपन की मस्ती मजा बहुत याद आता है।
0: बिल्कुल, आपने जब ये बात कही ना तो मेरे दिमाग में वो सारा सब कुछ कौन गया कि कैसे हम नानी के घर जाते थे।

0: आम खाते थे, मस्ती करते थे। और जहाँ छोटे बच्चे गर्मियों की छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, वहीं जो बड़े बच्चे हैं उनके मन में कई इस समय कई सारे सवाल होते हैं। कोई 10th की तैयारी कर रहा है तो कोई 12th की, और कई कॉम्पिटिशन बीट करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल श्वेता, किशोरावस्था यानी वो उम्र जब बच्चे न पूरी तरह छोटे रहते हैं और न ही पूरी तरह से बड़े बन पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनके मन में नए सवाल, नई भावनाएं और अपनी अलग पहचान बनाने की एक जो इच्छा होती है वो जन्म लेने लगती है। तो ऐसे समय में माता पिता का व्यवहार बच्चों के भविष्य और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल प्रभावित करता है, और जो माता पिता के रूप में हम सभी की जो भूमिका होती है वो भी बहुत अहम होती है। तो हमें भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ हमें दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, जिससे वो बिना डरे अपनी बात हमसे कह सकें। उन्हें सिर्फ आदेश ना दीजिए बल्कि उनके मित्र बनने की कोशिश करिए।
1: बिल्कुल श्वेता, और इसके साथ ही अक्सर हम जाने अनजाने में बच्चों की आलोचना करते हैं या फिर किसी अन्य बच्चे से उनकी हम तुलना करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, मतलब हमें बचना है इन सब चीज़ों से।
0: बिल्कुल, और वहीं एक बात और है साधना जी, जो मुझे लगता है इस समय हमें जो भी सभी जो किशोर छोटे या छोटे बच्चे जो भी हैं वो सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी एक बात को याद रखिए कि आपके जो माता पिता हैं ना बच्चों, वो आपका हित ही चाहते हैं, उनसे ज़्यादा आपसे शायद ही कोई प्यार करता होगा, तो आप भी उन्हें समझने की कोशिश करिए।
1: हाँ, और माता पिता भी उन्हें उचित स्वतंत्रता दें। अगर आपका बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे अपने फैसले लेने का अधिकार दें, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ, क्योंकि आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब कई मायनों में अच्छा भी है, मतलब ये अच्छे भी हैं और खतरनाक भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो बच्चों को भी माता पिता द्वारा दी गई स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाना है।
0: बिल्कुल, और सखियों, माता पिता के रूप में हमें बच्चों को अनुशासन में तो रखना ही है, साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा सख्ती भी ना करिए, क्योंकि ज्यादा सख्ती से क्या होता है ना कि वो जिद्दी और डरपोक भी बन सकते हैं। नियम ऐसे हों जिनमें प्यार और समझ दोनों शामिल हो।
1: बिल्कुल शामिल हो। और देखो, इसके साथ मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग पर हमें नजर रखना है, है ना, बच्चों पर पूरी तरह से नजर रखना है, और नजर इस तरह से रखना है कि ऐसा ना लगे कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? उन्हें सही गलत का अंतर समझाना है।
0: हाँ, और एक माता पिता के रूप में हमारी एक और भूमिका है, बेहद अहम होती है, क्योंकि जब बच्चे किशोरावस्था या युवावस्था में होते हैं ना साधना जी, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें सही गलत में अंतर बताएं ही बताएं, क्योंकि देखिए ये जो उम्र होती है ना, उसमें बच्चे बड़ी जल्दी दूसरों के प्रति अट्रैक्ट या उनसे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उस समय में सही गलत नहीं समझ में आता है। और कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं, जो गलत नीयत से उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे लोगों की कमी नहीं है श्वेता। और देखो श्वेता, इस दौर में बच्चों के उम्र के इस पड़ाव पर माता पिता की भूमिका जरूरी होती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन साथ ही बच्चे अक्सर माता पिता को गलत भी समझने लगते हैं।
0: हाँ,
1: है ना। लेकिन अगर इस समय हम उनके मन को समझते हुए उन्हें कठोरता की जगह प्यार से समझाएं, तो हो सकता है कि उन्हें हमारी बात समझ में आ जाए।
0: बिल्कुल, समझ में आएगी ही आएगी। और बच्चे भी देखिए, हमेशा ये याद रखें कि माता पिता और पढ़ाई, करियर, ये सब कुछ पहले है, इसके बाद ही कुछ है। और साधन जी देखिए, परिवार सबसे ज़रूरी होता है। याद रखें कि बच्चे माता पिता के व्यवहार से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और घर का वातावरण अगर सम्मान से भरा हुआ, पॉजिटिव होगा, तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे।
1: बिल्कुल अपनाएंगे। श्वेता, किशोर और युवा सभी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती, तुम्हें पता है?
0: किस चीज की?
1: प्यार, विश्वास और सही मार्गदर्शन की।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अगर माता पिता बच्चों के साथ बातचीत करते रहें, उन्हें समझने की कोशिश करते रहें,
0: बिल्कुल,
1: तो परिवार का रिश्ता मजबूत और स्वस्थ बनता है।
0: ये बात बिल्कुल आपने सही की साधना जी, और परिवार का साथ हो तो देखिए जीवन आसान हो जाता है। वहीं देखिए साधना जी, बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए अपने परिवार से, शहर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाते रहें, साथ ही उन्हें ये भी समझाएं, माता पिता के रूप में हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें ये समझाएं कि उनके लिए उनके बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करियर जरूरी है, लेकिन वो इन सबसे बढ़कर माता पिता के जीवन में अहमियत रखते हैं।

0: अश्वेता, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो बच्चे होते हैं परिवार से दूर सुरक्षित हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए या फिर जॉब इत्यादि के लिए वो बाहर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ किसी चीज़ या व्यक्ति से कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब हम माता पिता का अधिकार, ये कर्तव्य बनता है कि उनसे हम खुलकर उनसे पूछें और साथ ही उन पर पढ़ाई और करियर का ज़्यादा दबाव ना डालें, उन्हें प्यार से समझाएं।
1: बिल्कुल। और साधना जी देखिए, बच्चों के मन में कई बातें चलती हैं, उनके कई सपने होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने सपनों को साकार करिए। तो बस देर किस बात की, भाई झोला उठाकर चल दीजिए अपने सपनों में रंग भरने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सभी का पुनः स्वागत कार्यक्रम अपराजिता में। और श्वेता, देखो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जहां अपने सखियों को माता पिता का किशोर और युवाओं के साथ कैसा व्यवहार रखना होगा इस पर बात की, वहीं परिवार कितनी अहम भूमिका रखता है उस पर भी हमने बात की।
4: बिल्कुल साधना जी, परिवार हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे सुख दुख में परिवार के सदस्य ही तो साथ होते हैं। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, जिसकी शुरुआत साल 1993 में हुई थी।
3: बिल्कुल, और परिवार की हमारे जीवन में क्या भूमिका है और संयुक्त परिवार और एकल परिवार में जीवन कैसा होता है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं इस परिचर्चा में। विषय है संयुक्त परिवार, जीवन में बाधा या प्रगति का आधार। अपने अनुभव हमसे साझा कर रही हैं श्वेता राजदान अदीप और संगमित्रा चौहान, और आपसे बातचीत की है ममता उपाध्याय ने।
5: सखियों, परिवार का प्यार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। परिवार को वो चट्टान कहा जाता है जो अडिग रहती है, और वो संस्था माना जाता है जो हमेशा हमेशा सबके लिए काम करती है। अब परिवार से ये भी बात आती है कि वो परिवार एकल है या संयुक्त है। तो आज जो हमारी बातचीत का विषय है वो है संयुक्त परिवार, जीवन में बाधा या प्रगति का आधार। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्वेता राजदान अदीप जी को और संगमित्रा चौहान जी को। दोनों युवा हैं और अपने अपने परिवार के साथ किस तरह जीवन को बिता रही हैं, प्रगति का आधार उन्हें मान रही हैं या कहीं कहीं वो बाधा के रूप में उनके बीच में आ रहे हैं, यही जानने के लिए हमने इन्हें आमंत्रित किया है। तो हमारे बीच में श्वेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता आपका हमारे कार्यक्रम में। आप संयुक्त परिवार में रहती हैं, और संगमित्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप एकल परिवार में रहती हैं।
6: नमस्ते ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक एकल परिवार में रहती हूँ। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, और मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी एक 6 साल की बेटी है।
5: जी, तो पति पत्नी और 6 साल की बिटिया प्यारी सी, और आपका एकल परिवार है। और श्वेता, आपने बताया कि आपका संयुक्त परिवार है
7: जी।
5: तो कितने सदस्य हैं आपके परिवार में?
7: मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरी नानी जी, मामू जी, मेरे सास ससुर, मैं अपने पति और बच्ची के साथ रहती हूँ।
5: यानी कि 3 जनरेशन हो गई आपकी बिटिया को मिला के, 3 जनरेशन साथ में रहते हैं। तो हम जब बात करते हैं परिवार की, और जो महिलाएं हमारी आजकल की कामकाजी हैं, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, और शादी के बाद जब वो अपना परिवार चाहती है ना, तो अक्सर जो हमारी सखियां चाहती है कि हम अलग से अपने हस्बैंड के साथ

0: बच्चों के साथ बस रहे। और जब संयुक्त परिवार की बात आती है तो बहुत सी हिचकिचाहट मन में आती है। तो हम यदि बात शुरू करें श्वेता से कि श्वेता, जब आपको पता चला कि आप आ रही हैं एक संयुक्त परिवार में, तो मन में कुछ प्रश्न उठे, कुछ दुविधा आई क्या?
1: जी बिल्कुल, जब मुझे पता चला मैं एक संयुक्त परिवार में जा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग हुए, जो प्यार मुझे अपने दादा दादी से नहीं मिला, नानी से नहीं मिला, वो मुझे मिलेगा।
0: तो श्वेता, आपके मन में कोई ये हिचकिचाहट नहीं थी कि कहीं मुझ पे बंधन ना लग जाए, कोई बाधा ना बन जाए मेरा परिवार?
1: जी थी हिचकिचाहट, क्योंकि दो जनरेशंस वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये था कि कहीं मेरी आजादी ना मुझसे छिन जाए, मुझे स्वतंत्रता ना मिले कोई भी फैसला लेने के लिए।
0: जी जी,
1: तो ये हिचकिचाहट थी मेरे मन में।
0: अच्छा, लेकिन जब आप परिवार में आई तो ये जो आपके सवाल थे मन के, वो किस तरह दूर हुए आपसे जानेंगे। लेकिन हम चलते हैं अब संघमित्रा की ओर। संघमित्रा, आप एकल परिवार में रहती हैं और आप प्रोफेशनल हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो एकल परिवार में रहने से आपको क्या फायदा लग रहा है, या आप संयुक्त परिवार में रहती ज्यादा आपको फायदा लगता?
2: जो सबसे पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एकल परिवार की एक खासियत होती है जो सब चाहते हैं, सब युवा स्पेशली चाहते हैं, वो है पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ और अपने फैसले खुद लेना। चाहे वो गलत हो या सही हो वो तो समय ही बताता है, लेकिन उस समय हमें लगता है कि हमें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम अपने फैसले स्वयं ले सकें। तो जी हाँ, वो मुझे बिल्कुल प्लस पॉइंट्स लगते हैं। मुझे उस बात की स्वतंत्रता है कि मैं अपने घर को अपने हिसाब से रख सकती हूँ। चाहे मैं आपको एक बताऊँ, छोटी सी चीज़ होती है कि किचन में क्या खाना आज बनेगा, वो भी मैं अपने आप से डिसाइड कर लेती हूँ। ये नहीं कि कोई मुझे बताएगा कि आज ये बनेगा, इनको ये पसंद है, इनको ये नहीं। और शायद ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं चल के कई बारी बड़े टकराव का कारण भी बन जाती है।
0: बिल्कुल। तो श्वेता, भी आप सुन रही हैं संघमित्रा की बात कि जो स्वयं फैसला लेने की बात होती है, जैसे किचन की ही बात की, जो एक महिला के जीवन में किचन होता है ना, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और कई बार लड़ाई झगड़े की जड़ भी वही बन जाती है, और प्यार से वहाँ खीर भी बनती है जो उसको पसंद भी आती है। तो ये बताइए कि जब आप आई और सही परिवार में आई, तो ये किचन या संयुक्त परिवार जो था, ये किस तरह से आपको लगा कि इसमें मिठास है या इसमें खटास है, कैसे आपने इसको एडजस्ट किया?
1: मैंने तो पहले देखा, समझा यहाँ पे क्या तौर तरीके हैं, कैसे हैं, फिर उसके बाद मैंने अपने तरीके से थोड़ा करने की कोशिश करी, तो उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगा और फिर उन्होंने कहा ये हमारे घर का तरीका नहीं है।
0: अच्छा, दोनों बातें,
1: दोनों बातें इकट्ठा हुई। तो मुझे अपनी तरफ से बदलाव लाना पड़ा, उनके तरह से ढलना पड़ा, उन्हें भी मेरी तरह से ढलना पड़ा।
0: अच्छा, तो जैसा कि आपका कहना है कि जब आप आई तो दोनों तरह की बातें हुई, कुछ बातें आपकी उनको पसंद आई, और कुछ ये भी हुआ कि भाई हमारे घर में ये नहीं होता, हमारे घर में ये नहीं चलता, है ना, ये तुम्हारे मायके में होता होगा, हमारे घर में तो ऐसा होता है। ये बातें अक्सर महिलाओं को सुनना पड़ता है शादी के बाद। और जब उन्होंने आपकी बात मानी होगी, जैसे कुछ बातों में कहा कि उन्होंने आपकी बात मान ली, तो शायद वो खुशी भी हुई होगी।
1: जी हाँ, मुझे खुशी हुई कि हाँ भाई, मेरी भी इच्छाओं का मान रखा जा रहा है, मुझे भी आज़ादी दी जा रही है अपने फैसले लेने की, तो मुझे भी उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए। जब वो मेरी इच्छाओं का मान रख रहे हैं तो मुझे भी रखना चाहिए, इसलिए तो मैंने भी रखा।
0: जी अच्छा, ये बताइए संघमित्रा की, ऐसे आपने की कि स्वयं फैसला लेने का जो हक होता है या जो पर्सनल स्पेस होता है ना, ये एक जो दंपति है उसकी सबसे बड़ी चाह होती है जो आपको एकल परिवार में मिलता है। कभी कभी यही लगता है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ, तो कोई होता तो शायद मेरी मदद हो जाती।
2: जी या आप बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि ये बहुत बारी लगता है, लेकिन कई बारी ऐसे हमें चॉइसेस लेने पड़ते हैं, स्पेशली करियर को रिलेटेड। अगर आप वर्किंग वुमन की बात करें तो कहीं ना कहीं शायद उनके हस्बैंड का ट्रांसफर होता, उन्हें जाना ही पड़ता है, ना चाहे भी हमें एकल परिवार में रहना ही पड़ता है। तो कभी कभी ऐसी कमी खलती है, लेकिन अब उसके लिए कभी कभी लगता है कि ठीक है, चलिए जीवन इसी का नाम है, शायद कुछ सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ पर्क्स भी बहुत आते हैं।
0: ये भी है। तो ये बताइए संघमित्रा कि जब हम एकल परिवार में रह रहे होते हैं तो हमें हर निर्णय लेने की आज़ादी होती है। कभी कभी जैसा कि आपने कहा कि वो निर्णय बाद में गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने अपना निर्णय खुद लिया था, किसी ने हम पे दबाव नहीं डाला था। लेकिन कभी कभी आपको ये नहीं लगता है कि शायद कोई बड़ा होता हमारे साथ में तो हमें एक सही दिशा दिखा सकता था? तो ये फर्क जो हमें लगता है कि नहीं, हम एकल परिवार में ही रह के आगे बढ़ सकते हैं, संयुक्त परिवार कहीं बाधा बन सकता है, तो क्या समझती हैं इसमें?
2: जी मैं आपको सबसे पहले अपना ही एग्जांपल देती हूँ। शायद मेरे जैसी बहुत सारी वर्किंग मदर स्पेशली जो इस सेगमेंट में आती हैं लेडीज, उनके साथ ये बहुत होता होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि उनकी पेरेंटिंग कैसे करनी, तब उस समय जरूर लगता है कि अगर एक संयुक्त परिवार

0: में रह रहे होते तो जो दादी नानी के नुस्खे होते शायद वो भी चल जाते, लेकिन अकेले में, खैर आजकल सोशल मीडिया एक साथी बन चुका है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ टिप्स मिल भी जाती हैं। लेकिन हाँ, शायद वर्किंग मदर्स के लिए सबसे ज्यादा ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कहीं मीटिंग में जाना हो, कॉन्फ्रेंसेस में जाना हो, तब बच्चों को अकेले छोड़ना पड़ता है। स्पेशली शहरों की बात करें तो वहां पे दादा दादी नाना नानी शायद वो नहीं रहते होंगे, तो आपको क्रच में छोड़ना पड़ता है, नहीं तो किसी नैनी को हायर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन आप मानेंगे कि माँ का दिल है वो वहीं अटका रहता
1: जी,
0: है।
1: जैसा कि संगमित्रा आपने कहा कि माँ का दिल अटक जाता है बच्चों में, और जितना वो आउटपुट देना चाहती हैं अपने वर्क प्लेस में, कहीं कहीं कमी भी रह जाती है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की जो थीम है ना, वो है कि फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी परिवार असमानता और बाल कल्याण। तो आपने जो बच्चों की बात की, तो बच्चे जो होते हैं ना, वो एकल परिवार में भी बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई ट्रांसफर हो जाता है तो फैमिली को अलग होना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। लेकिन जो बच्चा होता है ना, वो जब अपने बड़ों के बीच पलता है, जो सुरक्षा का वातावरण मिलता है उसको, उसकी बात अलग होती है। तो श्वेता क्या कहना चाहेंगी, आपकी बिटिया छोटी है,
0: जी
1: आप छोड़कर आई हैं अपनी बिटिया को यहाँ आकाशवाणी स्टूडियो में,
0: जी
1: तो क्या महसूस करती हैं जब आप कहीं बाहर जाती हैं और बिटिया के साथ आपके घर के परिवार के लोग रहते हैं?
2: मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी एकदम सुरक्षित है, सब लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, मुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसने कुछ खाया है कि पिया है, क्या वो परेशान तो नहीं हो रही है। तो ये स्वयं पर हमें रहने के बहुत बड़े फायदे हैं कि आप दादा दादी नानी के साथ अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, अपने कार्य पे जा सकते हैं और उन बच्चों को अच्छी देखभाल और अच्छे संस्कार अपने दादाजी से मिलते हैं।
1: जी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग लेडीज है ना, वो समय समय पे अपने मोबाइल पे चेक करती रहती हैं कि घर पर जो उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, जो उन्होंने नैनीज रखे हुए हैं, जो आया रखी हुई है, वो उनके बच्चों की सही देखभाल कर रही है कि नहीं कर रही है। वो दिखाती रहती है, देखिए मेरा बेटा यहाँ घूम रहा है, वो उसको देखकर यहाँ आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद उनका दिल दिमाग जो है ना, वो अपने घर पर बच्चों के साथ है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार साथ देता है बच्चों का। और जैसा कि अभी कहा संगमित्रा ने कि हमें एक चॉइस लेना पड़ता है जब हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, पर श्वेता और संगमित्रा कई बार ये होता है कि शादी से पहले ही लड़की की डिमांड होती है कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे, संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे। क्या कहना चाहती हैं इस बात पर आप?
0: इसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि एक तो लाइफस्टाइल, करियर चॉइसेस, ऊपर से शायद कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होता कि बचपन में एक सपना होता है कि मैं अपनी चीजें अपने हिसाब से करूंगी, अपना घर अपने हिसाब से सेट करूंगी, अपने करियर चॉइसेस अपने हिसाब से लूंगी। और सबसे बड़ी चीज होती कि लाइफ का हर डिसीजन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, दुनिया हमने भी देख चुकी है, तो शायद हम ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही रीजन होता है कि करियर चॉइसेस हो गए, लाइफस्टाइल चॉइसेस हो गए, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू होता है जो हम सबको चाहिए होता है कि हम अपनी चीजें अपने हिसाब से कर सके। और ऊपर से दूसरी बड़ी चीज होती है जनरेशनल गैप। यहाँ पे जब दो पीढ़ी एक साथ मिल जाती है तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई विवाद, किसी ना किसी टकराव, कुछ ना कुछ उत्पन्न हो ही जाता है।
1: जी, लेकिन ये विवाद तो आपके मायके वाले परिवार में भी होता होगा। तब तो हम नहीं कहते हैं कि मम्मी पापा आप अलग रहिए और हम अलग रहेंगे। भाई शादी से पहले भी तो आप पापा मम्मी के साथ रह रहे होते हैं, बाबा दादी के साथ रह रहे होते हैं, तो उस वक्त हम उन सारे बंधनों को हम नियम मानते हैं, मम्मी पापा के प्यार के रूप में देखते हैं। लेकिन शादी के बाद वही बंधन या वही सलाह, वही नियम हमें इतनी बड़ी बाधा क्यों लगने लगती है?
0: शायद यही एक विडंबना है कि कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मुझे तो यही बात लगती है यहाँ
1: अच्छा
0: पर।
1: श्वेता ये बताओ कि वही मैं बात करना चाह रही थी कि जैसे जो लड़कियां डिमांड रखती हैं कि हम अलग ही रहेंगे, है ना, अपने घर पे भी मम्मी कहती होंगी या पापा कहते होंगे भाई शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना है, इस तरह कपड़े पहन के आपको फला फला जगह नहीं जाना है, तो वो बात मान लेती हैं। लेकिन ससुराल में आते ही उन्हें हर तरह की आजादी तुरंत तुरंत चाहिए, है ना,
2: जी हाँ,
1: एक बार भी टोक लगी तो बहुत बुरा मान जाती हैं।
2: जी हाँ,
1: क्या कहना चाहेंगे आप?
2: बचपन से हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं उनके स्वभाव को। हम एक अनजान घर में जब आते हैं तो हम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, तो इसलिए हमें डर लगता है, हमें लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी आजादी हमसे छीन रहे हैं। जब वो हमारे उम्र के थे तो उन्हें जब स्वतंत्रता थी हर फैसला लेने की, हर जगह जाने की, हर कपड़े पहनने की, खाने की, तो हमें भी मिलनी चाहिए, ख्याल आते हैं।
1: जी, आते तो है, आना भी चाहिए, स्वाभाविक है आना। लेकिन पहले दिन से यदि आप कह दें कि शादी के अगले दिन से ही मैं जीन्स पहन के जाना चाहती हूँ मार्केट में या अपने वर्क प्लेस पे, और सास कहे कि नहीं

0: नहीं अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम सलवार कुर्ते पहन के चली जाओ, तो उस पर भी टकराव हो जाता है। क्या कहोगी संगमित्रा?
1: इसी को शायद जनरेशनल गैप कहते हैं, पीढ़ियों का अंतर कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप कितना भी आप वो डांट लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो आपको मनाने ही आ जाते हैं। लेकिन शायद ससुराल में ये चीज हम नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट तो लगता ही
0: मुझे
1: है।
0: लगता है जैसे कि पहले दिन उन्होंने कहा कि आप पहन लीजिए सलवार कुर्ता, यदि आपने पहन लिया, मान लीजिए उनका दिल रख लिया, शायद एक हफ्ते बाद वो खुद कहें कि नहीं अब तुम अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हो। पर टकराव जो पहले दिन शुरू होता है ना, वहां पे कितना एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है युवा पीढ़ी को। श्वेता क्या कहेंगी?
2: ये युवा पीढ़ी को तो एडजस्टमेंट करना ही होता है, क्योंकि एकदम नई आई होती है। जब वो उनकी बात मान रही है तो वो भी उसकी बात का सम्मान रख रहे हैं, उसे अनुमति दे रहे हैं जीन्स पहने की, वेस्टर्न करने, तो वो उसकी हर बात का सम्मान रख रही है। जब वो ये महसूस करती है कि मुझे भी उतनी ही आज़ादी दी जा रही है, स्वतंत्रता दी जा रही है हर कार्य करने की, तो मैं भी उनकी हर इच्छाओं का मान रख।
0: हाँ, मतलब कहने का ये है कि कई बार जैसे आप दो अलग अलग परिवार से आ रहे होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग वातावरण होता है, तो एडजस्टमेंट युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जैसा कि जनरेशन गैप की बार बार बात संगमित्रा कर रही है, तो ये बताओ कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए जब एक लड़की दूसरे परिवार में आती है और अपनी आजादी चाहती है, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है कि जो परिवार है वो बाधा ना बने, उसकी प्रगति का आधार बने।
1: जी, मुझे इसमें लगता है कि सबसे पहले ना एक जो चीज़ है जो बड़ी कॉमन होनी चाहिए कि बड़ों का सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन वही बड़ों को, युवाओं को स्वतंत्रता जरूर देनी चाहिए। सलाह दें वो, पर दबाव ना हो उस पर।
0: दबाव ना डाले।
1: जी बिल्कुल, दबाव ना डाले। फिर उसके बाद प्यार तो होता है, लेकिन जहां पे ज्यादा नियंत्रण होने लगते हैं वहां थोड़ी टकराव होने लगती है। तो प्यार अगर है तो नियंत्रण भी थोड़े लिमिट वाले होने चाहिए।
0: अच्छा,
1: जी ये मेरा तो यही मानना है।
0: अच्छा, और क्या कहेंगे श्वेता आप?
2: मैं संगमित्रा जी से पूरी तरीके से सहमत हूँ।
0: अच्छा, मतलब बैलेंस होना चाहिए। और कई बार जैसे संयुक्त परिवार की बात होती है तो उसके बहुत फायदे भी होते हैं। आपके जो टेंशन होते हैं बहुत तरह के ना, चाहे वो ऑफिस के लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो चल रहे होते हैं टेंशन, वो भी संयुक्त परिवार में रहकर थोड़े से कम हो जाते हैं या बहुत विकराल रूप धारण नहीं करते हैं। या जैसे आर्थिक जो परेशानियां आती हैं वो भी संयुक्त परिवार में कभी कभी जो होती है ना वो बैलेंस हो जाती है। तो फायदे नुकसान
2: दोनों
0: के हैं, और मैं तो कहूंगी कि फायदे नुकसान की बात ही क्यों करें, परिवार तो परिवार होता है, उसमें प्यार होता है ढेर सारा, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स क्या कहें हम उसको, एक तरह की सोच होती है जो हमें लगती है कि हमारी सोच ज्यादा प्रोग्रेसिव है, युवा है हम, और ये जो बुजुर्ग है ना ये थोड़े पीछे रह गए, इनकी सोच भी पीछे वाली है। तो दोनों के बीच पुल बनाने का काम जो है ना वो युवा पीढ़ी को बढ़कर करना चाहिए, तभी जो परिवार है ना वो आपकी प्रगति का आधार बनेगा। एक स्त्री के जीवन में भी वो आजादी लाएगा और उनके बच्चों के लिए तो वो बहुत बड़ा एक तरह से खजाना होगा परिवार का, जो उन्हें संस्कार के रूप में मिलता है, जो उन्हें सुरक्षा के रूप में मिलता है। चलते चलते अपनी जो भावनाएं हैं वो आप कह डालिए श्वेता।
2: मैं चाहती हूँ जो भी संयुक्त परिवार में रहें वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी और युवा पीढ़ी दोनों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बड़े बुजुर्ग अगर पहले ही दिन अपनी बहू को कह दें कि बेटा तुम अपनी मर्जी से अपना घर रखो, जो पसंद है वो खाओ, और हर फैसले में अगर तुम हमारी सहमति चाहती हो तो हम ले सकते हैं, जब उसे महसूस होगा कि मेरी इच्छाओं का मान रखा जा रहा है, स्वतंत्रता दी जा रही है, तो फिर वो अपने सास ससुर का अपने माता पिता की तरह ही ध्यान रखेगी, वो भी उनकी इच्छाओं का मान रखेगी।
0: और संगमित्रा?
1: मेरा तो यही कहना है कि परिवार छोटा हो या बड़ा हो, उसमें प्यार, सम्मान और समझ, ये सबसे बड़ी चीजें हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि वो ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
0: प्यार, सम्मान और समझ, ये जो तीन शब्दों की कुंजी दी है संगमित्रा ने, वो सभी के लिए, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, यदि वो प्यार, सम्मान और समझ रखता हो तो हर रिश्ते में आने वाली परेशानियां दूर हो सकती हैं, जो सोच या जनरेशन गैप का अंतराल है वो भी कम हो सकता है, और हर स्त्री अपने परिवार के बीच में खुश रह सकती है, आगे बढ़ सकती है, और परिवार को बाधा न मानकर जीवन का, प्रगति का आधार बना सकती है। तो संगमित्रा और श्वेता आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और संयुक्त परिवार के बारे में आप लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
3: सखियों, अभी आप सुन रही थी परिचर्चा, संयुक्त परिवार जीवन में बाधा या प्रगति का आधार। प्रतिभागी थी श्वेता राजदान अदीब और संगमित्रा चौहान, और उनसे बातचीत कर रही थी

0: ममता उपाध्याय।
1: साधना जी, परिवार का महत्व देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ उन्होंने बयां किया, और सच भी है, एक परिवार ही तो होता है जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है, जिससे हम अपने सुख दुख बांट सकते हैं।
0: और हमारी ये परिचर्चा और नियमित कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपने पत्रों के द्वारा हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी श्रोता भी हमारे आकाशवाणी के परिवार में शामिल हैं और आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है।
1: और आपके संदेश हमें ऊर्जा से भर देते हैं, और ऐसा ही संदेश हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो है सुप्रसिद्ध कथक कलाकार शोभना नारायण जी का। आइए जानते हैं आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर उन्होंने क्या कहा।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभ

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष जहां पूरे हो गए हैं, वहीं हम सभी इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। और जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया भी था कि आज यानी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो परिवार कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के जीवन में, ये तो हम सब मानते ही हैं।
4: बिल्कुल, हम सभी के जीवन में परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है। किसी तरह की महामारी, आर्थिक संकट जैसे कठिन दौर में भी ये साफ हुआ है कि परिवार सामाजिक सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय आधार है।
3: हाँ श्वेता, और देखो बातें करते करते अब कार्यक्रम का आज का समय भी समाप्त हो रहा है, तो अपने सखियों से अनुमति लेते हैं, तो दीजिए मुझे यानी साधना
4: और श्वेता को इजाजत। सखियों नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गीतों का ये सफर तय करेंगे मेरे यानी पूनम शर्मा के संग।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था कस्मे वादे और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से, मोनू सेठ, गीता सेठ, परी, हर्षित, भोला, रीशु, मनीष तिवारी और आंचल सेठ की। कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कभी कभी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म का ये गीत। और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी विरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी हेतल, जैमिन कुमार की। कार्यक्रम में अगला गीत है दूसरा आदमी फिल्म से और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत की को सुनना चाहा है आर्य नगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना आरजू फिल्म का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी नरहरपुर सफीपुर जिला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, किरण, लक्ष्मी, राहुल, मीठी, मोहिनी, सार्थक और उनके पूरे परिवार ने। साथ ही औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने इसी गीत को सुनना चाहा था। और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम जवानों के लिए अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति पूनम शर्मा को। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और

0: कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को

0: हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के

0: प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय है खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं। जहां खरीफ में मक्का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ मक्का की बुआई करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
2: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। मक्का के लिए जो इस समय खरीफ में हम लेते हैं, उसके लिए जो इसका जलवायु होना चाहिए वो गर्म एवं नम जलवायु उपयुक्त रहता है। चूँकि देखिए, खरीफ में मक्के का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा है। हाइब्रिड मेज जो हम संकर बीज लेते हैं, अगर उसको किसान भाई अगर अपना रहे हैं तो इसके लिए तो सर्वप्रथम जो आपको अच्छी जल निकास वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी जो है इसके लिए बहुत उपयुक्त सर्वोत्तम रहती है।
1: जी।
2: और किसान भाइयों, मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए हमारा वो 5.5 से 7.5 के बीच अगर है आपकी मिट्टी का पीएच,
1: यानी तो सामान्य मिट्टी
2: उसमें इसको अच्छा माना जाता है, बुआई के लिए अच्छा माना जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी में क्या कुछ खास करें किसान भाई बहन?
2: खेत की तैयारी में तो पहले जैसे देखिए, मक्का का जो बुआई का समय इस समय खरीफ में हम करते हैं वो 15 जून से लेकर के मतलब मिड जून से लेकर के हम जुलाई के बीच में जो है इसका उन्नत प्रजातियों का जो है चयन करें।
1: जी।
2: और कौन कौन सी प्रजातियां हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो उन्नत किस्में हैं, संकर बीज जिसको कहते हैं हाइब्रिड सीड,
1: जी
2: वो हमारा जो एक पूसा HM1 है।
1: जी।

0: हाइब्रिड है मक्का, यह किस्म जो है सर 85 से 90 दिन
1: में तैयार होता
0: में
1: है।
0: पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने जो है पीले, कड़े और चमकदार होते हैं,
1: जी
0: और प्रति एकड़ जो है 23 से 24 कुंटल
1: पैदावार है इसकी।
0: पैदावार इसकी है सर। इसी क्रम में प्राइवेट की हमारी जो पाइनियर 3396 है, वो भी प्रजात बहुत अच्छा कर रही है। और इसके बाद सर जो और भी वेराइटियाँ इसमें हैं, पूसा शंकर 5, मालवी शंकर 2, प्रकाश हैं सर, गंगा 11, सरताज, और एक क्वालिटी प्रोटीन में जो आया हुआ है
1: जी
0: EHQ PM, जो इसमें जो है प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसका जो है वो 1 और 5 और 7, EHQ PM 1, 5, 7 जो है ये
1: तीन
0: वेराइटी है,
1: प्रजातियां
0: तीन
1: हैं
0: प्रजातियां हैं।
1: यानी हाई क्वालिटी
0: हाँ
1: प्रोटीन है इनमें,
0: यस
1: उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है, तो
0: सर,
1: इसकी भी खेती कर सकते हैं किसान भाई बहन। डॉक्टर साहब, क्या संकुल प्रजातियां भी उगा सकते हैं?
0: हाँ संकुल प्रजातियां जो हैं ये जो है 75 से 85 दिन के बीच में तैयार हो जाती हैं,
1: जी
0: और जो आपकी संकर प्रजातियां हैं वो करीब 90 से लेकर के 110 दिन के बीच में तैयार होती हैं। तो जो संकुल प्रजातियां हमारी हैं, HM 4, HM 8, पूसा, गंगा 11, दक्कन 115, दक्कन 117, सूर्या, प्रभात, गौरव, कंचन, श्वेता, आजाद, उत्तम, यह सब प्रजातियां जो है
1: इनको चुन
0: संकुल,
1: सकते हैं
0: इनको
1: किसान भाई
0: किसान
1: बहन।
0: भाई चुन सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने खरीफ मक्का में संकर और संकुल प्रजातियों का जिक्र किया, इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
0: संकर मक्का की जो पकने की जो अवधि होती है वो 90 से 120 दिन की वाली किस्में जो है उपयुक्त रहती हैं,
1: उनकी अच्छी पैदावार
0: उनकी
1: मिलती है।
0: अच्छी पैदावार मिलती है। और जो इसका हम खरीफ में जो मक्का की बुआई 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में इसको कर देना चाहिए, उसके पहले हमको जो है खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए।
1: और इस समय गर्मी की जुताई करके
0: इस
1: छोड़
0: समय
1: दें
0: गर्मी की जुताई करके, और या तो ढैंचा वगैरह जैसे अगर
1: हरी
0: आपको
1: खाद
0: थोड़ा
1: के
0: हरी
1: रूप में।
0: खाद के रूप में ग्रीन मैन्योरिंग का भी जो है आप वो कर सकते हैं, सनई है, ढैचा है।
1: बीज दर कितना लगेगी एकड़ पीछे?
0: बीज दर जो सर संकर मक्का की है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ है,
1: हाँ
0: और सर सामान्य किस्म जो होती है हमारी जो है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के रेट से हम इसको
1: बुआई करें,
0: बुआई कर सकते हैं।
1: बुआई में भी कुछ खास बारीकी होगी?
0: मक्के में खास ध्यान आपको जो है दूरी का देना है, जो हमारा कतार से कतार की दूरी होगी वो 60 से 70 सेंटीमीटर होनी
1: यानी
0: चाहिए।
1: 2 फीट से ऊपर रहे
0: जी डॉक्टर साहब,
1: हाइब्रिड में।
0: हाइब्रिड में, और ये पौध से जो पौध की दूरी होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए।
1: संकर मक्का में
0: जी
1: और संकुल मक्का में?
0: संकुल मक्का में इसको हम और कम कर सकते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर ही रख सकते हैं।
1: यानी 2 फीट से कम रख सकते
0: जी
1: हैं,
0: कम रख
1: डेढ़ से दो
0: सकते,
1: फीट रख
0: जी
1: दें
0: सर,
1: जैसी प्रजातियां हैं। डॉक्टर साहब, बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना जरूरी होगा?
0: हाँ मक्का में जो है भूमि शोधन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जो बीज का उपचार करेंगे बुआई से पहले, हम बीज का उपचार आपको ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से जो है उसका हम उपचारित कर लेंगे। और जैसे कीटनाशक के लिए है, दीमक वगैरह जो उसमें लगते हैं उसके लिए भी हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोपीड 5 से 7 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर वो कर देते हैं तो उससे हमको दीमक वगैरह
1: उससे छुटकारा मिल जाता है।
0: छुटकारा मिल जाता है।
1: डॉक्टर साहब, भूमि शोधन भी फायदेमंद होगा जो भूमि जनित बीमारियां हैं
0: जी
1: ट्राइकोडर्मा से?
0: ट्राइकोडर्मा से जो है आप उसको अगर करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि खरीफ मक्का में जो संकर प्रजातियां या संकुल प्रजातियां अधिक पैदावार देने वाली हैं, तो उनकी भूख भी अधिक होगी, तो खुराक में जैसे खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे हो एकड़ पीछे?
0: खाद एवं उर्वरक के लिए किसान भाइयों आपको जो है 4 टन सड़ी गोबर की खाद,
1: यानी 40 कुंतल।
0: हाँ 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में मिला देना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास

0: है, तो जो नाइट्रोजन में हम 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के रेट से जो है उसको दे सकते हैं, और फास्फोरस की मात्रा जो है 24 किलोग्राम प्रति एकड़ के रेट से दे सकते हैं, और पोटास जो हमारा है वो 16 केजी पर एकड़ के हिसाब से जो है हम इसमें दे सकते हैं।
1: तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बेसल डोज में?
0: फास्फोरस और पोटास की मात्रा पूरी मतलब बुआई के टाइम आपको देना है, 1/3 जो नाइट्रोजन है वो आपको 2 बार ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में जो है फसल को देना है।
1: और 1/3 नाइट्रोजन बेसल डोज में देना है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो?
0: खरपतवार की समस्या के लिए जो मक्का में खरपतवार की समस्या में प्रारंभिक हमको जो 30-40 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसको वाच करना चाहिए, और उसका जो हम रासायनिक नियंत्रण करते हैं वो 600 ग्राम जो है एट्राजीन, एट्राजीन को 50 WP
1: जी
0: टेबल पाउडर होता है, वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के दर से जो है इसको हम अगर दे देंगे तो इससे जो है
1: तो
0: हमारा
1: बुआई के तुरंत बाद?
0: बुआई के तुरंत बाद, प्री इमरजेंस है ये,
1: जी,
0: तो
1: यानी बुआई के
0: वो
1: बाद और जमाव के पहले
0: पहले
1: 48 से 72 घंटे के अंदर।
0: यस सर।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केंद्र पर। अगर आप चल करके आएंगे तो बहुत सारे हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस भी लगे हुए हैं, प्रदर्शन्स हैं, उसको आप आ करके हमारे फील्ड पे देख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94-157-20-127, 94157-20127, 94-157-20127।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: इसके अतिरिक्त जो सुझाव है इसके लिए, ड्रिप सिंचाई एवं मल्चिंग अपनाएं
1: खरीफ में
0: खरीफ में, इससे आपकी जो है पानी की भी बचत होगी और मृदा का परीक्षण ही करा करके जो है खाद एवं उर्वरक का आप वो करें, और समय पर खरपतवार नियंत्रण करें, और प्रमाणित बीज का उपयोग करें
1: और समय से बुआई
0: और
1: करें।
0: समय से बुआई करें।
1: डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विज्ञान और किसान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता। विषय था खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। भोला ने हमें थाना गौतम पल्ली जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि रवि कुमार, जिनकी उम्र 14 वर्ष, कद 4 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है, ये दिनांक 14 मार्च 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने लोअर टी शर्ट पहन रखी थी। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8957945115। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8957945115। थाना मदेईगंज जनपद लखनऊ से हमें सूचना मिली है कि मोहित मौर्य, जिनकी उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है, ये दाहिने हाथ से दिव्यांग हैं। ये हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत भाषा जानते हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना आप थाना मदेईगंज जनपद लखनऊ को दे सकते हैं। शबीना ने थाना चौक जनपद लखनऊ से सूचित किया है कि फरहा, जिनकी उम्र 17 वर्ष 6 माह, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 28 मार्च 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने हरा सूट, काला नकाब,

0: ही चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8810864645। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8810864645। सभी बुन निशा ने हमें थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से सूचित किया है कि शाकिब अली, जिनकी उम्र 8 वर्ष, कद 4 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, ये दिनांक 21 नवंबर 2025 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने पैंट, टी शर्ट व चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9454403511, 7007942127। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आपको बता दें, रविवार दिन में 12 बजे से 1 बजे तक हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम आप सुनेंगे। हमारा विषय होगा हाइपरटेंशन। आपके समस्याओं के समाधान हेतु स्टूडियो में होंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर, डीडी फ्री डिश पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे संजू सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत।

लोकमादरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संजू सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने सुना सोहर और अब आपको सुनवाते हैं पूर्वी।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संजू सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लचका।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे संजू सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। संगतकर्ता थे ढोलक पर नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सेकिया, साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है। आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर कार्यक्रम युवा तरंग में युवा श्रोता सुनेंगे वार्ता हिंसक वीडियो गेम कितना सही नई उड़ान। ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन अस्पताल अधीक्षक SGPGI लखनऊ से उमाशंकर की बातचीत उत्तर प्रदेश में ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे डॉक्टर तरुणा पांडे की वार्ता औषधीय पौधों में से स्वास्थ्य संरक्षण। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे अरविंद कुमार शुक्ल से कार्यक्रम खेती किसानी में आज शाम 6:50 पर। संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा एडवोकेट देवांश शर्मा से डॉक्टर शिवा राकेश का इंटरव्यू प्रॉपर्टी फ्रॉड्स एंड सेफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इन उत्तर प्रदेश। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगी वार्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान। वार्ताकार होंगे श्री सुशील अवस्थी। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन। मोहम्मद अजीज की गाई नात और कव्वाली आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सुबह 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत समाप्त फरमाइएगा कैंपस डायरी इरम मेडिकल कॉलेज। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर सना शफक हुसना और सानिया तारिक। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिए डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। लीची के स्वास्थ्य लाभ इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7:00। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। विषय होगा शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा। आज सुबह ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे डेंगू कारण लक्षण उपचार एवं बचाव इस विषय पर डॉक्टर चमन लाल रावत से की गई प्रतिभा त्रिपाठी की बातचीत। कार्यक्रम विज्ञान और किसान आप सुनेंगे कल दिन में 2:30 से। शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। इस कार्यक्रम में मांडवी से आप सुनेंगे सोशल मीडिया के दौर में जेंजी की भूमिका। नई उड़ान ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में सुनिएगा उत्तर प्रदेश कौशल विकास

विकास मिशन पर मिशन निदेशक श्री पुलकित खेर एवं प्रशिक्षणार्थियों से बातचीत। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे सुशील सीतापुरी की वार्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, इस विषय पर डॉक्टर संदीप कुमार से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा 21वीं सदी का ईंधन, परमाणु सपनों को पंख लगाएगा।

45 मिनट। अलका चतुर्वेदी के गाय अवधि लोक गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम लोक रंग में कल सुबह 9:50 पर और कार्यक्रम लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। प्रतीक्षा मिश्रा की गाय गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात्रि 8:10 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवा ऊर्जा, नए विचारों और सकारात्मक सोच से भरपूर कार्यक्रम युवा तरंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक ऐसा विशेष अंक जिसमें होगी प्रेरणादायक बातें, ज्ञानवर्धक जानकारी, रोचक चर्चाएं और युवाओं से जुड़े कई खास विषय। युवा तरंग सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों, उनकी सोच और उनके आत्मविश्वास की आवाज है। तो तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने, कुछ नया सोचने और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम युवा तरंग इस प्यारे से गीत के साथ।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इरा यूनानी कॉलेज में प्रसारित हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
6: आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है।
7: हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब यानी सहायक निदेशक सुभाष खन्ना जी, हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रमन प्रीत सर, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आसिफ इकबाल सर, तो हमारी टेक्निकल टीम भी मौजूद है। और जैसे प्रोग्राम का आगाज होगा, आपके 20 से लोग होंगे,
6: हेलो,
7: 4 टीमें होंगी, 4 टीमों में से कौन बनेगा सिकंदर ये हमें देखना होगा। और शुरुआत में जो सवालात होंगे,
8: हेलो हेलो हेलो,
7: वो मुतालिक होंगे जनरल नॉलेज से, वो मुतालिक होंगे फिल्म इंडस्ट्री से, वो मुतालिक होंगे आपके कोर्स से। तो कौन बनेगा आज सिकंदर ये तो वक्त बताएगा साहब।
6: मैं हूं आपका मेजबान शमसुल आरफीन और मेरे साथ हैं,
7: मैं हूं जमशेद आपके साथ,
6: हमारे साथ प्रोग्राम प्रेजेंटर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, सोशल मीडिया से हमारे साथ स्थिति मौजूद है, और हमारी सीनियर ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट अनाहिद हसन साहिबा भी तशरीफ फरमाए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जमशेद भाई
7: जी,
6: सफेद कोट वाले बैठे हुए सब।
7: हाँ, ये आने वाले वक्त के डॉक्टर हैं।
6: हाँ बिल्कुल है,
7: और संभल के सवाल पूछिएगा, इनका इंजेक्शन बड़ा खतरनाक होता है।
6: और अब प्रोग्राम को बाकायदा हम शुरू करते हैं, इजाजत है सर?
7: तो चलिए, इजाजत मिल चुकी है, और इजाजत के साथ साथ हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की।
6: अभी हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जो आकाशवाणी लखनऊ की डॉक्यूमेंट्री है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आपके सामने देख रहे हैं 4 टीमों का जिक्र यहाँ पर है, टीम हवा महल, टीम छाया गीत, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा। जमशेद भाई, जो टीम है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। हवा महल टीम में है उबैदुर रहमान साहब और हबीबुल्ला साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपने ही साथियों।
7: उबैदुर रहमान साहब और हबीबुल्ला साहब।
6: टीम छाया गीत में है अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब और फजील साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
7: और टीम आबशार में?
6: टीम आबशार में है जोया आलम और तबीही ना साहिबा।
7: और बात होगी टीम रजनीगंधा की?
6: रजनीगंधा टीम में है मिस तहसीन और शाइमा साहिबा, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
7: तो ये सारे चेहरे भी आपके सामने होंगे, 4 और 4 8 लोग होंगे, ये धीरे धीरे 8 से 4 बनेंगे और 4 से बनेंगे 2, यानी कोई एक टीम होगी जो बनेगी सिकंदर। अब देखना यह है कि वो कौन सी टीम होगी, टीम रजनीगंधा होगी या टीम आबशार, टीम हवा महल होगी या टीम छाया गीत, क्या कहते हैं शम साहब?
6: बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो 2 राउंड होगा, पहला राउंड होगा बूझो तो जाने, जिसमें जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, हर टीम से 4 सवाल किए जाएंगे, सही जवाब देने पर 10 नंबर और गलत जवाब देने पर 5 नंबर हो जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग होगी। दूसरा राउंड होगा हमारा, वो होगा आवाज़ की दुनिया, जिसमें हम रेडियो से मुतालिक सवाल करेंगे, सेम वही 4 सवाल आपसे किए जाएंगे, लेकिन अच्छी बात
7: पर,
6: ये है
7: यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी,
6: नहीं होगी, तो जोरदार तालियां होनी,
7: यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
6: नहीं होने वाली इसमें भाई। और आखिर के 2 राउंड जो होंगे इसमें रिजल्ट आएगा और जो सबसे थर्ड आएगा, यानी कि 4 टीमों में से 1 टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी,

0: तीन बचेंगी, फिर हमारा अगला राउंड होगा आप ही के सब्जेक्ट से होगा, स्टेथोस्कोप राउंड, जहां पर मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिलचस्प बात यह है इसमें भी
1: माइनस मार्किंग
0: है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें,
1: माइनस मार्किंग ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
0: नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, सेम वैसे ही चार सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जैसे कि पहले राउंड में हुआ है वैसे ही थर्ड राउंड में, यानी फर्स्ट एंड थर्ड राउंड जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, फिर फाइनल राउंड होगा हमारा
1: उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है।
0: नो
1: कंफ्यूज कर,
0: नो जो जीता वही सिकंदर, हमारा फाइनल राउंड होगा
1: जी।
0: इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे?
1: इसमें तो भाई जो जीता वही सिकंदर, कई सारे मिले जुले सवाल होंगे आपके साथ और उसमें उर्दू अदब से सवाल होंगे,
0: बॉलीवुड और उर्दू अदब से सवाल किए जाएंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
1: तो बस इस तरह से पूरी मुकम्मल होगी आज की क्विज और उसमें जो टीम हमारे साथ जीतेगी या विनर होगी वो बनेगी आज सिकंदर।
0: अच्छा एक बात और भी है, स्टेथोस्कोप राउंड के बाद एक टीम और एलिमिनेट की जाएगी,
1: यानी दो टीमें बाहर हो जाएंगी
0: और दो टीमें
1: और फिर बचेंगी दो टीमें जो कि फाइनल राउंड में हमारे साथ खेलेंगी।
0: और प्राइस की बात बता दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड जो होंगे, जो विनर होंगे ये टीमों को प्राइस के साथ साथ कंसोलेशन जो होगा वो हमारी फोर्थ टीम को, हम लोग अपने आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम में खत के लिए शुक्रिया में बाकायदा स्टूडियो तशरीफ के बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। तो जोरदार तालियां अपने लिए गिर दी।
1: और आज इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज और आकाशवाणी दोनों मिलकर आपके बीच है, आपकी जो प्रतिभा है उसको परखने के लिए सवालों के माध्यम से।
0: अब मैं चाहता हूं कि जितने भी टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं आ जाएं और हम अपना पहला राउंड बाकायदा शुरू करने वाले हैं
1: जी,
0: लिहाजा आप लोग तशरीफ ले आएं, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए।
1: और पहला राउंड हमारा है बूझो तो जाने,
0: तो राउंड शुरू किया जाए।
1: बिल्कुल शुरू किया जाए,
0: जोरदार तालियों से आप लोग इजाजत दीजिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बूझो तो जाने राउंड का पहला सवाल टीम हवा महल से है। अमृतसर का गोल्डन टेंपल यानी प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी?
1: ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर दो मियां मीर और ऑप्शन नंबर तीन बुल्ले शाह।
0: गौर से टाइम का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इस राउंड में है, लिहाजा अच्छे से खेलिए आप लोग।
1: ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, श्योर हैं आप? हम लॉक कर दें इसे। इन्होंने जवाब दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
0: जो कि सवाल सही नहीं है
1: जी, यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है।
0: ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा?
1: आप लोगों में से कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा?
0: ऑडियंस बोल।
1: पीछे से हाथ उठ गया है। अमृतसर के मशहूर गोल्डन टेंपल की नींव किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी?
2: मियां मीर।
1: मियां मीर, जवाब आया मियां मीर। तो ये जवाब तो बिल्कुल सही है पूरी तरह से। नाम बताइए अपना।
3: सईदुर रहमान।
4: सईदुर रहमान।
0: सईदुर रहमान आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
1: चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है जो पारित हुआ था? साल 1919 में पारित किस कानून को काला कानून कहा गया है?
0: आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंट बेटन प्लान और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून।
5: सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट।
1: ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, आप लोग क्या कहते हैं, सही है? ऑडियंस ने मोहर लगा दी है।
0: हाँ।
1: तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है,
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए।
1: अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था?
6: सुभाष चंद्र बोस।
0: ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। अच्छा आप लोग फ्यूचर में खून लेंगी भी।
1: जवाब बिल्कुल सही है,
0: टीम आबशार का ये जवाब बिल्कुल सही है।
1: 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इजी भी है।
1: भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
0: ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल।
6: 35।
0: 35 ईयर बता रहे हैं जमशेद।
1: 35 साल, आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? जवाब आया है 35 साल। और हम आपको बताते हुए बहुत

0: खुश हो रहे हैं कि सवाल का जवाब बिल्कुल
1: जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए। टीम रजनीगंधा ने भी स्कोर कर लिया है।
0: और अब पारी आती है फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ, एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है?
1: आपके ऑप्शन है 243, 243, 245, 245 या 250, 250।
2: सर 243।
1: 243 बता रहे हैं।
0: और बड़े
1: टीम हवा महल 243 का ऑप्शन इन्होंने चुना है।
0: अब आप क्या कहेंगे,
1: सही जवाब है या गलत, आप लोग बताएं।
0: देखिए हमने तो कुछ नहीं कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250।
1: ओहो, जोरदार तालियां होनी चाहिए
0: उनके लिए जिन्होंने सही जवाब दिया। उनके लिए
1: जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम हवा महल नेगेटिव में।
0: और हम आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है टीम छाया गीत की तरफ। और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन हैं?
1: ये सवाल टीम छायागीत के लिए है।
0: और ऑप्शन आपके पास हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जस्टिस बी आर गवई।
3: सर फर्स्ट।
1: फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत। क्या लगता है आप लोगों को, हैं सही है?
0: ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा
1: जी।
0: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही।
1: जोरदार तालियां। और आपने एक बार बढ़िया फिर से परफॉर्म किया है टीम छाया गीत ने।
0: और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और टीम आबशार, आपसे सवाल है हवा की शुद्धता यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है? हवा का जो प्रदूषण है उसको मापने का इंडेक्स क्या है? ऑप्शन बताएं आप।
1: आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI।
4: AQI।
1: क्या लगता है आप लोगों को?
0: AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
1: बिल्कुल सही है जवाब। जोरदार तालियां टीम आबशार के लिए।
0: और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ। और हमारा सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है?
1: ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन।
0: जी
4: सर ऑप्शन बी।
1: ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को, गलत है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा?
5: मुथैया मुरलीधरन।
1: मुथैया मुरलीधरन बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए माइनस पॉइंट।
0: और उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है। और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है?
1: आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई या ऑप्शन सी है बेंगलुरु।
2: बेंगलुरु।
1: बेंगलुरु। अहो जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम हवा महल।
0: इस तरह से आगाज हो गया टीम हवा महल का। और
1: आगाज हो गया है टीम छाया गीत की तरफ चलते हैं हम लोग।
0: और टीम छाया गीत, आपके लिए सवाल है ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं?
1: आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन या ऑप्शन सी है हॉकी।
5: सर ऑप्शन सी हॉकी।
0: तो ये जवाब पूरी तरह से है सही।
1: बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां होनी चाहिए
0: क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अगला सवाल अब आप पूछेंगे, अगला सवाल टीम आबशार से क्या कहते हैं आप?
1: लखनऊ का फेमस सिकंदरा बाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था?
0: ऑप्शन है
1: आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह।
0: ऑडियंस क्या कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है।
1: जोरदार तालियां आबशार के लिए।
0: अगले सवाल की तरफ चलें।
1: जी बिल्कुल, अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है
0: और टीम रजनीगंधा से।
1: रजनीगंधा के लिए
0: जी,
1: आपका सवाल है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन।
4: ऑप्शन सी ट्रिप्सिन।
1: क्या लगता है जमशेद भाई, सही है?
0: हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है।
1: जवाब बिल्कुल सही है आपका। जोर

0: जोरदार तालियां।
1: और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, टीम हवा महल से है अगला सवाल।
0: एक बार फिर से पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं हम लोग
1: जी। और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है
0: 400, 402 या 403।
2: 403।
1: और सही जवाब है 403। बिल्कुल
0: जोरदार तालियां टीम हवा महल के लिए।
1: और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छाया गीत की तरफ। ऑप्शन पहले देंगे और सवाल का जवाब आपको देना ऑप्शन से। जवाब है कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक। और अब हम सवाल करेंगे कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
0: क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का?
1: कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक?
0: सर कथकली। श्योर है? पक्का
3: जी।
1: जवाब आया है कथकली यानी बी। सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ। और इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मैं तीन नाम लेने वाला हूं, मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह।
4: बी
0: बी
1: बी यानी जेपी नड्डा,
0: जगत प्रकाश नड्डा। आपका जवाब ये है
1: जगत प्रकाश नड्डा। अब आप लोग क्या कहेंगे?
0: बढ़िया, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर।
0: जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम आबशार के लिए। अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम आबशार का।
1: और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का
0: आखिरी सवाल।
1: आखिरी सवाल है और ये डिसाइड करेगा कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। और आखिरी सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में।
4: सर ऑप्शन ए आर्टिकल 14।
0: आर्टिकल 14 टीम रजनीगंधा ने जवाब दिया है।
1: बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। और इसी के साथ हमारा ये जो राउंड है
0: बूझो तो
1: राउंड खत्म होता है। और इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं।
5: टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज्यादा, और रजनीगंधा को 25।
0: जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए।
1: और अभी टीम हवा महल के पास चांस है, अभी ऐसा नहीं, अभी चांस आपके पास है। यहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और अगला राउंड हमारे पास आ गया है और आवाज की दुनिया में आपको बताना है कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे।
0: अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
1: लेकिन जवाब सही होना चाहिए। तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें।
0: जी सर, करिए आप।
1: आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी?
0: ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1936। क्या कहेंगे आप लोग?
1: और सही जवाब है 1936। पूरी तरह से सही है,
0: जोरदार तालियां।
1: अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है, स्लोगन क्या है?
0: आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
3: सर पहला ऑप्शन।
0: पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
1: और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया? और ऑप्शन है साल 1947 या फिर साल 1957।
4: 1957।
0: टीम आबशार का ये जवाब है।
1: बिल्कुल सही जवाब,
0: राइट,
1: 1957।
0: जोरदार तालियां टीम आबशार के लिए भाई।
1: चले हम FM से हैं।
0: हाँ,
1: और FM से ही है। टीम रजनीगंधा प्रोग्राम भी FM का है
0: जी, और आप ही का है।
1: हाँ, और ये सवाल भी FM से है कि आकाशवाणी लखनऊ FM का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है, धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की?
4: सर बी ऑप्शन।
0: ऑप्शन बी
4: शान लखनऊ की।
1: यहाँ पर हम आपसे कहेंगे

0: धड़कन लखनऊ की
1: इजहारे ताज़ियत है आप लोगों के लिए इस बार
0: जी। यानी ये सवाल का जवाब गलत है, सही जवाब है धड़कन लखनऊ की। और अगला सवाल है टीम हवा महल से। टीम हवा महल हमारा चैनल है, प्राइमरी चैनल, और प्राइमरी चैनल की फ्रीक्वेंसी है, आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है। मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलो हर्ट्ज।
1: मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज या मीडियम वेव 750 किलो हर्ट्ज।
2: 750
1: का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने।
0: तो सही जवाब क्या है शम्स साहब?
1: 747 किलो हर्ट्ज। मीडियम वेव 747 किलो हर्ट्ज इज द राइट आंसर।
0: आपका जवाब गलत होता है। विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं, उसको किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है, एम मोड पर या फिर एफएम मोड पर?
2: एफएम मोड पर।
1: एफएम मोड पर। टीम छाया गीत का ये जवाब एफएम मोड पर।
0: विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त एफएम मोड पर जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर। और अगला सवाल है, विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है, उसी को आगे हम बढ़ा देते हैं कि विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 98.6 या 101.6?
3: सब बी।
1: 101.6। इस बार पक्के हैं
0: ऑडियंस? सही जवाब,
1: जोरदार
0: सही जवाब,
1: टॉप क्लास पे जा रही भाई।
0: और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है, और सवाल ये है कि आकाशवाणी लखनऊ के एफएम चैनल का नाम क्या है? वेरी इजी, कौन जवाब देगा?
1: आपके ऑप्शन है एफएम रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची।
3: सर ऑप्शन ए।
1: ऑप्शन ए एफएम रेनबो।
0: राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही जवाब एफएम रेनबो। और एक बार फिर टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं और सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। एफएम रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है?
1: ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशा।
0: आबशार या फिर कहकशा?
2: आबशार।
1: आबशार। क्या कहेंगे आप लोग, सही जवाब बता रहे हैं?
0: तो बिल्कुल सही जवाब है
1: जी
0: आबशार।
1: जन की आवाज है तो सही होगा भाई, आबशार इज द राइट आंसर।
0: और फिर टीम छाया गीत माइक पकड़ लीजिए आप, और सवाल आपकी तरफ आ रहा है। प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है?
1: आपके ऑप्शन है सुबह 9:30 पर और बी है ऑप्शन रात में 9:30 पर।
4: रात में 9:30।
1: रात में 9:30 का जवाब, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं वैसे टीम छाया गीत के। सुबह 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं, तो आपका ये जवाब गलत है। टीम छाया गीत का ये जवाब गलत।
0: हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ, और टीम आबशार आपको पहले हम माइक दे दें और उसके बाद हम आपसे सवाल पूछते हैं, और बहुत आसान सवाल है।
1: हाँ, ये तो है।
0: एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है?
1: 98.7 या 100.7?
3: बी
1: 100.7। बी
0: 100.7।
1: यस, जोरदार तालियां टीम आबशार के लिए।
0: और माइक संभालेगी टीम रजनीगंधा। टीम आकाशवाणी एक संस्था होती है, जैसे आपका चल रहा है कॉलेज, वैसे आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है, और उसका नाम है NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर प्रसार भारती। किसके अंडर में आकाशवाणी चल रहा है?
1: ऑप्शन
0: प्रसार भारती या फिर NSD?
3: सर ए प्रसार भारती।
0: ए प्रसार भारती, बिल्कुल सही जवाब है ये।
1: राइट आंसर
0: प्रसार भारती। और एक बार फिर टीम हवा महल, और टीम हवा महल के लिए सवाल क्या है बताएंगे शम साहब?
1: आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं, आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR? सवाल ये टीम हवा महल से है ना?
0: जी
1: जी।
2: न्यूज ऑन AIR।
1: News on AIR.
0: News on air. सही जवाब News on air.
1: सही जवाब है टीम हवा महल के लिए। News on AIR ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन सकते हैं, FM रेनबो सुन सकते हैं।
0: और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए, क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं?
1: टीम छाया गीत के लिए,
0: प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण

0: कर सकते हैं?
1: ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं।
2: जी सर, कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, जवाब है टीम
0: प्राइवेट
1: छायागीत
0: एफएम
1: का।
0: चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, उनको अनुमति है, और आपने कहा हाँ,
1: कर सकते हैं, यानी कि गलत जवाब।
0: और फिर एक बार हम माइक देते हैं टीम आबशार को, और सवाल है, क्या है सवाल शमसाब?
1: आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध, ऑप्शन बी है मन की बात।
3: मन की बात।
1: कंफ्यूज तो नहीं है आप?
0: पक्का
1: मन की बात बोल रहे हैं?
0: सही जवाब है मन की बात।
1: मन की बात, जोरदार तालियां, कांग्रेचुलेशन। अब ये माइक,
0: और माइक एक बार फिर जाता है टीम रजनीगंधा की तरफ, और सवाल है आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
1: 1938 और 1947।
3: 1938।
0: तो बिल्कुल सही जवाब,
1: जोरदार तालियां।
0: और इसी के साथ हमारे दो राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया।
1: अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें, और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आएं और टीम का रिजल्ट बताएं, फिर थोड़े से गुफ्तगू, उसके बाद हम थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं।
0: और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, और फिर हमारे पास तीन टीमें बचेंगी, बाकी के राउंड हम उन तीन टीमों के साथ खेलेंगे।
1: जोरदार तालियां मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर आकाशवाणी प्रोग्राम, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं।
4: सर्वप्रथम तो धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया और इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन किया, और हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी ज्योग्राफी और हमारा जो पूरा इतिहास है वो आपने इसमें रचाया, और हमारे जो दोनों एंकर रहे वो उन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत अच्छे ऑप्शन रखे, आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। और जवाब के रूप में मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं, उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही, और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं। और जो अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं, और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं। आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला। तो ये तो रहे अंक, और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ सहभागिता की। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छायागीत टीम, आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन।
0: तो ये दो राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, टीम हवा महल 40, टीम छाया गीत 35, टीम आबशार 80 और टीम रजनीगंधा 55। तो यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छाया गीत, और बाकी के तीन टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा।
1: अगला राउंड आप लोगों का होगा, यानी कि आपके सब्जेक्ट से होगा, स्टेटस।
5: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रसारित हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे इस अंतराल के बाद।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: आरबीआई कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, आज तो हमने आपसे काफी चर्चा की और बातों ही बातों में समय का पता नहीं चला, तो वक्त हो गया अब आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

युवा साथी अभी कार्यक्रम सुन रहे थे युवा तरंग, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान सुनने वाले सभी दोस्तों को आरती का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, शब्द समाज बदलने की भी ताकत रखते हैं और हिंदी साहित्य को एक ऐसी ही नई सोच, नई दिशा और नई पहचान देने वाले महान साहित्यकार, संपादक और विचारक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आज जयंती है। इन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी लेखनी ने समाज की चिंता थी, देश के प्रति समर्पण था, लोगों को जागरूक करने का अद्भुत भाव था। ये मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने और बेहतर बनाने का माध्यम है, और शायद यही वजह है कि आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। वैसे जब बात समाज को जोड़ने की आती है तो सबसे पहला नाम आता है परिवार, और ठीक इसी भावना के साथ नई उड़ान का कार्यक्रम भी आपसे जुड़ता है एक परिवार की तरह, जिससे जुड़ा हर श्रोता हमारे अपने परिवार का, अपने घर का हिस्सा है। आपका स्नेह, आपका परिवार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बांटते रहें, यही चाहूँगी। और बस इतना ही कहना चाहेंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई दौलत नहीं है बल्कि अपनों का साथ होता है। परिवार वो जगह है जहाँ बिना कहे भी भावनाएँ समझ ली जाती हैं, जहाँ डांट में भी प्यार होता है, और जहाँ एक कैसे हो इतना बोल देने भर से पूरी थकान मिट जाती है। तो ज़िंदगी की कड़ी भाग दौड़ के बीच थोड़ा सा डेडिकेटेड फिक्स समय अपने परिवार के साथ बिताइए, कुछ बातें कीजिए, कुछ यादें बनाइए, क्योंकि रिश्ते ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और अपनों का प्यार ही जीवन को जीवन बनाता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, जीवन का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार होता है ईश्वर का, ये सबसे कीमती उपहार है। लेकिन कई बार एक जीवन को बचाने के लिए दूसरे इंसान की संवेदनशीलता, जागरूकता और निर्णय किसी चमत्कार से कम नहीं होते। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान सिर्फ एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानवता की वो मिसाल है जो किसी के जीवन में फिर से सांस से उम्मीद और मुस्कान लौटा सकती है। लेकिन आज भी समाज में अंगदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, डर है, कानूनी सवाल मौजूद हैं। क्या है ऑर्गन डोनेशन की सही प्रक्रिया, कौन कर सकता है अंगदान, क्या इसके कानूनी प्रावधान हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसे लेकर के क्या व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को और गहराई से आज समझते हैं। और इसको समझने के लिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह के साथ, जो प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी से बातचीत करके इस पूरे प्रकरण में हमें जानकारी मुहैया कराएंगे। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं पूरी प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों को।
4: नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपको दूसरा अंग किसी और दूसरे के शरीर से निकाल के और डॉक्टर्स जो है लगाते हैं, जिसको अंग हम प्रत्यारोपण कहते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब शायद ये सोच रहे होंगे कि एक दूसरे का अंग एक दूसरे के शरीर में लगता है तो ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई, तो अपने आप कैसे लग सकता है। तो इसको बोलते हैं हम अंगदान। कोई अंगदान करता है तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बगैर अंगदान के आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी अंगदान, जिसको कि ऑर्गन डोनेशन भी कहते हैं, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं और ये एक राष्ट्रीय एक सिस्टम बनाया गया है, उसके तहत पूरी प्रणाली कार्य करती है। ये इतना आसान नहीं है कि आप गए और किसी का शरीर

0: शरीर से अंग निकाल लिया और इसको लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन जी हैं, जो कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं SGPGI लखनऊ में और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण प्रतिष्ठान संगठन, जिसको सॉटो यूपी के नाम से बोलते हैं, और ये पूरे राज्य की एक नोडल एजेंसी है जो कि अंग प्रत्यारोपण से संबंधित, ऑर्गन डोनेशन से संबंधित सारी जो नियमावली रूल रेगुलेशन, एक हिसाब से एक अथॉरिटी है जिसके माध्यम से ही कोई अनुमति मिलती है तभी आप अंगदान की जो प्रक्रिया है पूरी कर सकते हैं, या आप ट्रांसप्लांट जहां भी कराते हैं बगैर उसकी अनुमति के नहीं होते। लेकिन इसके बहुत से कानूनी पक्ष हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पहलू हैं, आम आदमी को समझना चाहिए ताकि समय रहते सारी प्रक्रिया का पालन नियमानुसार कर सकें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब इतनी व्यापक समस्या हमारे देश में ट्रांसप्लांट की है, डोनेशन की कमी है और बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, तो प्रक्रियागत तो सोटो जो है आपका एक उत्तर प्रदेश का, जिसके आप इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पूरी प्रक्रिया क्या है और एक ट्रांसप्लांट के बारे में अगर कोई सोचता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी और क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा?
1: सबसे पहले आपके आकाशवाणी लखनऊ के द्वारा यह लिए गए निर्णय कि इस बिंदु पर आप एक परिचर्चा करेंगे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में सामान्यतः और हमारे प्रदेश में विशेषतः अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता अभी भी उतनी व्यापक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसमें आपका ये प्रयास अहम है, महत्वपूर्ण है। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा, सॉटो का क्या रोल है या क्या योगदान है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में एक केंद्रीय संस्था, हर 5-6 प्रदेश पर एक क्षेत्रीय संस्था और हर राज्य के लिए एक राज्य स्तरीय संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में SGPGIMS में डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल प्रशासन विभाग ने स्वयं सीओ मोटो कॉग्नाइजेंस लेते हुए प्रयास किया, प्रस्ताव तैयार किया और संस्थागत नियमों के तहत प्रस्ताव को प्रोसेस किया गया और इवेंचुअली SGPGI से ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग और फिर वहां से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तक गया और अंततः अस्पताल प्रशासन विभाग, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अनवरत प्रयास के पश्चात उत्तर प्रदेश देश का 5वां राज्य हुआ जहाँ पे सॉटो का गठन हुआ। और ये सॉटो यूपी का गठन, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से आया था और वहाँ पे मैंने इस क्षेत्र में काम किया था, खासकर कॉर्डिनल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में प्रोफेसर राधिका टंडन के साथ में। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई केम बैक टू SGPGIMS लखनऊ, जब मैं आया तो मैंने इस पे कार्यवाही शुरू की और इवेंचुअली उत्तर प्रदेश 30 राज्यों में 5वां राज्य बन गया जहां पे सॉटो का गठन किया गया। सॉटो एक राज्य स्तरीय अंग प्रत्यारोपण के जितने चरण हैं उन चरण के नियमन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में इसको विकसित किया गया है। अंग प्रत्यारोपण के कुछ महत्वपूर्ण चरण ये हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए अलग से कानून बनाया है जिसका नाम थोटा एक्ट एंड थोआ रूल्स हैं, जो 1994 और 2014 में क्रमशः प्रख्यापित किया गया था ये कानून। इस कानून के तहत भारत देश में और उत्तर प्रदेश के सरकार ने उस एक्ट और रूल को यहाँ की विधायिका ने एडॉप्ट किया। सो जो भारत सरकार का कानून है हमारे प्रदेश में भी यथावत लागू है,
0: यथावत है।
1: उस कानून में निहित प्रावधान जो है उसके अनुसार व्यवस्था ये है कि हमारे प्रदेश में किसी भी चिकित्सकीय संस्थान में अगर एक डिफाइंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मैन पावर के पास डिजायर्ड एक्सपर्टीज अवेलेबल है, तो वो विहित प्रपत्र में खुद को ट्रांसप्लांट सेंटर के रूप में घोषित करने के लिए, अंग का आहरण ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने के लिए, अंग का संचयन ऑर्गन बैंकिंग करने के लिए और अंग का प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के अधीन घोषित विधिक प्राधिकरण है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसको आवेदन देता है। फॉर्म अगर देखते हैं कि वो अस्पताल कानून में दिए गए मानकों के अनुसार वहां पे आधारभूत संरचना है, सुविधाएं हैं, मैन पावर है और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो संस्तुति करती है और अंततः एप्रोप्रिएट अथॉरिटी चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसको इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि आपका ये हॉस्पिटल इस अंग के लिए इस व्यक्ति के द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने के लिए अधिकृत किया गया।
0: अच्छा, आप ये कहना चाहें डॉक्टर साहब कि हर अस्पताल जो है ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता है?
1: नहीं, अस्पताल ही नहीं, अस्पताल यानी प्लेस, पर्सन,
0: अच्छा डॉक्टर भी
1: उस व्यक्ति से, एन ऑर्गन, कौन सा अस्पताल में कौन सा व्यक्ति कौन सा अंग प्रत्यारोपित करेगा इसके लिए सरकार ऑथराइजेशन देती है।
0: तभी डॉक्टर ट्रांसफर हो जाए वहां से, तब
1: एप्लीकेशन दोबारा

0: जाता है,
1: डॉक्टर दूसरा
0: दूसरा आता है,
1: इसके पैरामीटर स्ट्रिक्ट
2: पैरामीटर हैं ये, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट इज इट इम्पैक्ट्स द लाइफ इन मेनी वेज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड द क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन, बीट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, बीट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। सो और ये सारे जो ऑथराइजेशन दी जाती है हमारे DGME के द्वारा, उसकी प्रतिलिपि एक हमारे ग्रैंड डायरेक्टर सर्टोपी को आती है। तो हमें पता होता है आज हमारे उत्तर प्रदेश में DGME या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से प्राधिकृत 122 ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं या हार्वेस्ट सेंटर्स हैं।
1: अच्छा, इसको ट्रांसप्लांट सेंटर
2: प्रत्यारोपण केंद्र कहते हैं। तीन बातें होती हैं, या तो आप ऑर्गन सिर्फ निकालने का अधिकार लिया है आपने, या ऑर्गन निकालने और रखने का लिया, मैंने कहा ऑर्गन हार्वेस्टिंग एंड बैंकिंग, और ऑर्गन हार्वेस्टिंग एंड बैंकिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन, ऑल
1: तीन अलग अलग चीजें।
2: ट्रांसप्लांट सेंटर्स में दोनों बाय डिफॉल्ट होंगे, क्योंकि वो निकालेगा रखेगा तभी तो ट्रांसप्लांट करेगा।
1: वो तो जी,
2: लेकिन देर आर NOTRC ऑल्सो नॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल सेंटर्स, उनके पास ट्रांसप्लांट करने की एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है या संसाधन नहीं है, लेकिन निकालने की क्षमता है,
1: इमरजेंसी में जरूरत भी है तो
2: निकालने की क्षमता है, वो निकाल सकते हैं और उसकी स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है वहाँ भेज सकते हैं,
1: स्कोर्ट कर सकते हैं।
2: सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर्स, ट्रांसप्लांट सेंटर्स TCs एंड NOTRCs, नॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल सेंटर्स।
1: तो इसमें सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अथराइज नहीं है?
2: नो, गवर्नमेंट प्राइवेट से इसका सरोकार नहीं है, इसका सरोकार है कि जो विधिक प्रावधान हैं, जो जो उसको मैं उल्लिखित प्रावधानों का पे खरा उतर रहा है, उसको कॉम्प्लाई कर रहा है, उसकी कॉम्प्लायंस है, कन्फॉर्मेंस है, और वो विहित प्रपत्र में आवेदन करता है कि उसके शुल्क भी दी जाती है, तो उसे प्राधिकार दिया जाता है।
1: तो अब डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि भारत में अंगदान का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, हालांकि PGI ने आपके कार्यकाल में बहुत सारे प्रोग्रेस किए हैं, बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी और बहुत सारे शोज किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, पब्लिक अंगदान कर भी दे रही है मोशन में आके, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि अंगदान हो नहीं पा रहा है, और ट्रांसप्लांट के टाइम पर समस्या हो रही है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहे हैं। तो डायलिसिस या किसी और बीमारी में बहुत सारी प्रक्रिया गुजरते हैं, तो जिसका मुख्य उद्देश्य है वो, तो हम चाहेंगे कि पब्लिक, इसको इतना जटिल प्रक्रिया है, इसको आसानी से एक आदमी अंगदान देना चाहता है वो कैसे क्या करे, कहाँ संपर्क करे, और एक्चुअल में जब कोई ऐसी बात हो तब वो क्या करे।
2: यहाँ पे आपके द्वारा उठाए गए बिंदु पे को मैं तीन टुकड़ों में जवाब दूंगा
1: जी।
2: पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक खेत में एक किसान ने एक बीज लगाया है 20 साल पहले, दूसरे खेत में 15 साल पहले, तीसरे खेत में 10 साल पहले, चौथे खेत में 5 साल पहले, और पांचवें खेत में 1 महीने पहले, और आज हम इन पाँचों जो हमारी फील्ड है उसके सामने खड़े होकर मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमारी प्रगति कहाँ पर है।
1: प्रगति
2: का मूल्यांकन सम्यक वैज्ञानिक तथ्यपरक तभी होगा
1: समयबद्ध,
2: जब आप पूरी यात्रा और यात्रा में लगाए गए समय, प्रारंभिक प्रारंभ करने का समय अंतराल से मूल्यांकन करें। अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन में इस क्षेत्र में काम करना कब शुरू किया गया था, हमारे देश में इस पे काम करना कब शुरू गया,
1: ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत बाद
2: नहीं। मैं अवेयरनेस की बात ही नहीं कर, मैं सभी तो उस पर मैं भी आऊँगा, मैं भी पूरी प्रक्रिया की बात करना चाह रहा हूँ। मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि 10 लोग हैं जो एक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसमें एक रिक्शे वाले का बच्चा भी है और एक टॉप एडुकेशन घर का ही बच्चा है, और 10 एक परीक्षा में पास होकर के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ने इक्वल दूरी तय की है
1: जी, नहीं।
2: तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम आज कहाँ पहुँचे हैं, इसका सम्यक मूल्यांकन तभी हो सकता है हमने शुरुआत कब की थी, पहली बात। दूसरी बात है, हमने शुरुआत किस परिवेश में की थी, क्या स्पेन का परिवेश और हमारा परिवेश एक ही है, क्या स्पेन की संस्कृति हमारी संस्कृति एक ही है, क्या स्पेन की धार्मिक विश्वास, कल्चरल बिलीफ सिस्टम और इंडियन बिलीफ सिस्टम एक ही है, क्या स्पेन का पर कैपिटा इनकम लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का एक ही है, नहीं
1: सब
2: है,
1: सब कुछ अलग।
2: तो इस तरह स्पेन से मूल्यांकन करना तथ्यात्मक नहीं है। तो पहली बात यह है कि मूल्यांकन सम्यक और वैज्ञानिक और तथ्यपरक होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज लाइक पुटिंग अ सीड इन द ग्राउंड वेटिंग फॉर सम टाइम फॉर द प्लांट टू ग्रो बिफोर इट गिव्स यू फ्रूट। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल आपको फल मिलने लगेगा, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लैग फेज है काफ़ी बड़ा है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी सबसे प्यारी होती है। कोई नहीं चाहता कि हम अपना अंग किसी को दे दें, क्योंकि उसको उससे अपने ही ज़िंदगी की अवधि के कम होने के आसन्न खतरे से वो डरता है, और
1: एक बूंद खून नहीं दे सकता
2: है। दूसरी बात है, हमारे देश में भावनात्मक संबंध काफ़ी गहरे हैं। तीसरी बात है, हमारे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक जो उसका
1: मान्यता है,
2: जो मान्य

0: विविधताएं हैं वो एकदम अलग हैं,
1: बिल्कुल अलग है।
0: इस अब ये जो चीजें बनी है पिछले 5000 साल में तो कम से कम जरूर इस पे हो चुका
1: है।
0: तो 5000 साल में जो सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग, आज में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेट ऑफ लिटरेसी, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पल्स पोलियो कैंपेन का। पल्स पोलियो कैंपेन क्यों इतना समय, इतना सरकार ने कैंपेन चलाया, सालों साल चलाया,
1: हर संडे
0: तब आप सफल उसमें हुए। क्या हमने पल्स पोलियो कैसा कोई अभियान चलाया है तो हम भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल कोविड 19 में गवर्नमेंट, पब्लिक, सोशल बॉडीज, एनजीओस, समाज का हर तबका, हर स्टार्टअप सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया और कोविड के बारे में बहुत तेजी से जागरूकता फैली और हमारे विश्व में हमारी प्रशंसा हुई कि हमने कोविड का अच्छा नियंत्रण नियमन किया। क्या हमने ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया? तीसरा एग्जाम्पल एड्स को भी हमने एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बहुत अच्छे से लागू किया और हम सफल हुए उसमें भी। सो हमने ऐसा सघन प्रयास किया ही नहीं। ये तो जो लोग इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसको जिसके जिसके जहन में इसके प्रति पैशन है, वो जिस जगह पे हैं अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ही देश में जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं उन्होंने शुरुआत हमसे कम से कम 25-30 साल पहले की, तो आज हमसे बेहतर कर रहे हैं। अगर हम देश के फलक पे देखें तो लोग कहते हैं यूपी इतना कर रहा है। मैंने कहा कि यूपी ने शुरुआत कब की,
1: बहुत फास्ट कर रहा है, ये तो है।
0: यही मैंने कहा कि जब तेलंगाना में शुरुआत हुआ या केरला में शुरुआत हुआ, उनके फर्स्ट 5 ईयर्स का मेरे फर्स्ट 5 ईयर्स का कंपेयर करो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर हमें कंपेयर करना है तो तेलंगाना के फर्स्ट 5 ईयर्स से कंपेयर करना पड़ेगा, आज की परफॉर्मेंस नहीं। केरला के प्रथम 5 वर्ष से यूपी के प्रथम 5 वर्ष की प्रगति मापनी होगी, तो हम बेहतर उनसे हैं। लेकिन हम केरला की पिछले 25 साल के आज कहाँ पहुंचा है और हम आज देख रहे हैं यूपी के 5 साल के प्रयास को।
1: लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, उसका कारण वही है कि हम चाहते क्या है?
0: हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, पहला है हमने यात्रा शुरू कब की, दूसरा है ईयर्स ऑफ कल्चरल कंडीशनिंग उसको तोड़ने, और तीसरा हम उत्तर प्रदेश में संसाधन। अब जब से सॉटो आया है उसके पिछले 5 साल में हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। यहाँ तक कि 2024 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक अंग दान के लिए शपथ लेने वाला राज्य बन गया। तो 5 साल में जो हमारी प्रगति हुई, जो यात्रा हुई, उसका विवरण देखेंगे तो उत्तरोत्तर प्रगति पर है और हम आगे भी इसको लेकर जा रहे हैं। और हम जैसे अभी सॉटो यूपी ने किंग जॉर्ज को 1.5 करोड़ का ग्रांट दिया लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए, 1.43 करोड़ का ग्रांट दिया है GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर को किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए, और अभी 75 लाख का ग्रांट देने के लिए प्रक्रिया अपने चरण में है, जहाँ पे हमारे SGPGIMS को दिया जाएगा कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। हम अभी पिछले 3-4 साल से हम लोग फोकस एज ए सॉटो हम लोग कर रहे थे सॉइल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फिर हमने फोकस शिफ्ट किया कैडावरी खास पे, हार्ट डिस्ट्री। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से आप श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस 25,000 लोगों में लगभग 2/3 लोगों की मृत्यु मस्तिष्क मृत्यु होती है, तो लगभग 16-17,000 लोगों की ब्रेन डेथ होती है। 17,000 लोगों की ब्रेन डेथ हुई तो हमारे पास 34,000 किडनी मिल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कितना उसमें से ले पा रहे हैं? इसके लिए सॉटो की तरफ से व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास के कारण आज लखनऊ में कम से कम एटलीस्ट शुरुआत करने के मद्देनजर SGPGIMS में, RML में और किंग जॉर्ज में, ISUs में ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर घोषित करना मैंडेटरी कर दिया गया है बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो अभी हमने अपने 3 फोकस बनाए। पहला कहा कि नहीं, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर हम आगे चलते हैं, इसकी प्रक्रिया के जितने चरण हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश में एक वेबसाइटों का वेबसाइट डेवलप किया, उस वेबसाइट पे सारे 122 ट्रांसप्लांट सेंटर जुड़े हुए हैं। सो ईच वन ऑफ देम हैव गॉट देयर लॉगिन ID एंड वी हैव डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द 122 ट्रांसप्लांट सेंटर, दोज आर परफॉर्मिंग ट्रांसप्लांट्स। तो ऐसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस में इसको मैंडेटरी कराया। DGP गवर्नमेंट ऑफ UP के कोऑपरेशन से हमने सारे पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई, किंग जॉर्ज और SGSM कानपुर में हमने वो ग्रांट रिलीज करवाया। दूसरा हमने फोकस शिफ्ट किया कैडेवरिक हार्वेस्ट में, SGPGIMS में मस्तिष्क मृत्यु से हुई मृत्यु केस में अगर परिजन अंग दान की देते हैं सहमति तो उनका सारा इलाज खर्च माफ कर दिया जाता है। ये भी पहल सॉटो यूपी ने करवाई,
1: ये प्रमोशन का सबसे बेस्ट तरीका।
0: तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब हमने थोड़ा सा अपना ध्यान शिफ्ट किया कॉर्नियल ट्रांसप्लांट पे, टिश्यू ट्रांसप्लांट जो ज्यादा आसान है करना, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 से 25,000 तक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की एनुअल रिक्वायरमेंट होती है और हम 4-5,000 के आसपास कर पाते हैं। लाइकवाइज देश में जो लगभग 2 लाख किडनी की आवश्यकता है, 50,000 लीवर की, 50,000 हार्ट की और 20,000

0: पैनक्रियाज की, लेकिन काफी कम हो रहा है। हर 6 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है अंग पाने की प्रत्याशा में, और वो भी वो उस देश में जहाँ पे दधीचि ने अस्थिदान किया था।
1: बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो एक रिचुअल्स कल्चर है, और उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस का ज़माना है, लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, वो इन साइंटिफिक टेम्पर के हो रहे हैं लोग और इसमें भाग ले रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, कितने प्रोसेस से गुजरते हैं जब एक केस आप बनाते हैं? जब
0: इसमें अंगदान मूलतः दो तरह का होता है, जीवित व्यक्ति से जीवित दाता होते हैं और मृत दाता होते हैं। जीवित दाता के केस में फिर दो तरह का होता है, एक जो संबंधी हैं और दूसरे जो गैर संबंधी हैं, और एक मृत दाता। तो कुल तीन तरह की प्रक्रिया हो गई, जीवित संबंधी वाले केसेस, जीवित गैर संबंधी वाले प्रकरण, और मृत दाता वाले केसेस। सबके डिफाइंड एल्गोरिदम हैं, डिफाइंड स्टेप्स हैं, और इसके लिए जो विधिक प्रावधान है कि उसमें एक ऑथराइजेशन कमेटी होगी, या तो अस्पताल के स्तर पे या जिला के स्तर पे।

0: रहे हैं वो इन साइंटिफिक टेम्पर के हो रहे हैं लोग और इसमें भाग ले रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, कितने प्रोसेस से गुजरते हैं जब एक केस आप बनाते हैं जब?
1: इसमें अंगदान मूलतः दो तरह का होता है, जीवित व्यक्ति से जीवित दाता होते हैं और मृत दाता होते हैं। जीवित दाता के केस में फिर दो तरह का होता है, एक जो संबंधी हैं और दूसरे जो गैर संबंधी हैं, और एक मृत दाता। तो कुल तीन तरह की
0: तीन तरीके
1: प्रक्रिया
0: का
1: हो गई,
0: प्रक्रिया हो गई।
1: जीवित संबंधी वाले केसेस, जीवित गैर संबंधी वाली प्रकरण्स, और
0: एक
1: मृतदाता वाले
0: मृत
1: केसेस।
0: दाता।
1: सबके डिफाइंड अल्गोरिदम हैं, डिफाइंड स्टेप्स हैं, और इसके लिए जो विधिक प्रावधान है कि उसमें एक ऑथराइजेशन कमेटी होगी, या तो अस्पताल के स्तर पे, या जिला के स्तर पे, या राज्य के स्तर पे, और उसमें ये निर्धारित है कि कौन कौन सदस्य होंगे और उन सदस्यों को, उस समिति को किन किन बिंदु पे मूल्यांकन करना है इन तीनों केसेस का, खास करके जीवित के लिए है वो। और जो मृतदाता है उसके लिए ब्रेन स्टेम डेथ डिटेक्शन कमेटी होती है, वो भी सरकारी उसको अप्रूव करती है उस समिति
0: जी
1: को।
0: जी
1: तो मृतदाता से अंग निकालने के लिए अलग समिति होती है, और जीवित दाता से अंग देने की प्रक्रिया को अलाउ करने के लिए, एनओसी देने के लिए अलग समिति होती है। उसमें भी समितियाँ दो तरह की हैं, एक समिति वो होती है जो संबंधित रिलेटिव्स के लिए होती है,
0: वे
1: एक गैर
0: डिफाइंड
1: संबंधी के लिए होती
0: संबंधित कौन है, डिफाइंड
1: है।
0: है,
1: डिफाइंड रिलेशनशिप,
0: डिफाइंड है।
1: डिफाइंड रिलेशनशिप है इंडिविजुअल, पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से बैठ कर दिया गया है, बाकी सारे संबंधी भी
0: नॉन
1: नॉन
0: रिलेटेड
1: रिलेटेड में आते हैं। तो संबंधित दाता होता है तो उसकी अलग समिति होती है, उसको कंपिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। गैर संबंधित दाता होता है तो इट गोज़ टू ऑथराइजेशन कमेटी, एसी कहते हैं, और अगर मृत दाता है तो इट गोज़ टू बीएसडीसी, ब्रेन स्टेम डेथ डिटेक्शन कमेटी। जब इन तीन चरण से गुजर जाता है, ये प्रक्रिया गुजर जाती है, तो अगला चरण आता है काउंसलिंग का। अगर जीवित दाता है तो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो काउंसल करते हैं उनको, अगर मृत दाता है तो ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति के परिजन इमोशनल ट्रॉमा में होते हैं, पेन में होते हैं, तो वहाँ पे ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं।
0: हॉस्पिटल्स में
1: हाँ,
0: ज्यादातर
1: तो
0: हॉस्पिटल
1: ग्रीफ काउंसलर्स या काउंसलर फिर काउंसल करते हैं, दाता को समझाते हैं,
0: में
1: और जब दाता समझ जाता है, जीवित में दाता खुद और मृत में दाता के
0: परिवार के लोग
1: संबंधी
0: संबंधी
1: परिवारजन,
0: जी
1: जब सहमति दे देते हैं, तो जीवित पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। और मृत में फिर एक चरण और आता है, वो पुलिस का है,
0: फिर लीगल,
1: पोस्टमार्टम
0: ठीक
1: इंक्वेस्ट,
0: है,
1: ऑल एमएलसी जो मेडिकल लीगल
0: लीगल
1: केसेस के चरण है, वो
0: लीगल
1: एक चरण और जुड़ जाता है
0: राइट,
1: मृत केसेस में।
0: एमएलसी मेन
1: एमएलसी वाली बात आ जाती
0: जी
1: है, तो हम लोग फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करते हैं। जब वहाँ से भी क्लियरेंस हो जाता है, तब हम ऑर्गन निकाल देते हैं, और जो हमारे पास वेट स्टेट रिसिपियंट हैं, जो पेशेंट हैं, जिससे मैच करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अल्गोरिदम
0: नॉर्मल
1: बना हुआ है जिससे मैच करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, उसके लिए हम फिर प्रोसेस करते हैं। ये प्रक्रिया है।
0: बहुत नदी को पार करने जैसा है, और जो आप सफल हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, और इसके पीछे आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, बगैर उनके सहयोग के आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते।
1: तीन छोटी छोटी बातें। पहली बात ये कि अभी हमने सॉट्टो यूपी की तरफ से लखनऊ के सारे प्रोमिनेंट जगहों पे पोस्टर्स लगवाए हैं, मजबूत पोस्टर्स लगवाए हैं, इसमें क्यूआर कोड डाल रखा है हमने, उस क्यूआर कोड को वो स्कैन करें और अंगदाता बनने का शपथ लें, ये हमने लगवाया है, सारे मॉल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स में लगवा दिया है, आपको दिखाई देंगे। और ये बहुत आसान है, पहले अंगदान करने के लिए शपथ लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, आप पेपर फॉर्म फिलअप करो, विटनेस लो, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप कोई किसान, कोई अनपढ़, कहीं भी गांव खेत कहीं भी बैठ के एक क्यूआर कोड स्कैन करके 2 मिनट के अंदर प्लेज ले सकता है, शपथ ले सकता है, और उसके मोबाइल पे अंगदाता होने का शपथ प्रमाण पत्र तुरंत डाउनलोड हो जाएगा,
0: तुरंत डाउनलोड हो
1: सिर्फ इट
0: जाएगा,
1: टेक्स ओनली 2 मिनट्स। ये
0: संभव है।
1: पहली बात। दूसरी बात, सॉट्टो यूपी की वेबसाइट पे कोई भी जाके क्लिक करे, सॉट्टो यूपी होम पेज पे ये प्लेज नाउ का है, प्लेज नाउ बटन क्लिक करके वो प्लेज कर सकता है। और तीसरी बात है, चार पंक्तियां हैं, दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता
0: क्या
1: है,
0: बात है डॉक्टर साहब,
1: बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोटो का जो कार्य है, जो राज्य ऊतक प्रत्यारोपण और के लिए काम करता है, और बहुत सारे चीज़ जो विधायी प्रक्रिया उसको पूरी करता है, ये तभी सफल हो सकता है जब आम लोग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखें, और क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके आधार पर अपने अंगदान का अगर निर्णय लें, और केवल अंगदान का फॉर्म नहीं भरें, शपथ नहीं लें, अंगदान एक्चुअल में जब कोई घटना होती है उस समय
1: सहमति दें।
0: उस, और
1: एक और काम किया है हमने,
0: जी
1: आपको बताना चाहूँगा आपके द्वारा, आपके श्रोताओं को, कि सॉट्टो यूपी ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था थ्रू ड्यू प्रोसेस, कि आयुष्मान भारत योजना में
0: जी
1: जो मृतदाता हैं, अगर उनके सब परिजन अंगदान की सहमति दे देते हैं, तो उसके बॉडी को आईसीयू में रखने में जो खर्च आता है, डोनर की वर्कअप करने में जो खर्च आता है, उसके लिए पैकेज बना दिया जाए। तो ये एक

0: अहम कदम होगा।
1: तो डॉक्टर साहब, आप केवल चिकित्सा क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहे हैं, एक समाज का एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़ा है, संस्कृति और विज्ञान के बीच का जो एक इथिकल जो बैरियर है उसको दूर करने काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
0: बिल्कुल, अभी उम्मीद है मिलकर कोई पत्ता हरा ढूंढें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब।
2: और दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेने का। तो दीजिए आरती को आज यहीं पर अनुमति। नमस्ते, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
4: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
0: श्रोताओं, रविवार दिनांक 17 मई 2026 दोपहर 12 बजे से 1 बजे कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर कोमल अग्रवाल, MBBS MD आंतरिक चिकित्सा विभाग। तो सुनना ना भूलिए ये कार्यक्रम FM रेनबो 100.7 MHz, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचना

0: पंचो जय हिंद।
1: ज्योति बहनी।
0: हाँ विनय भैया,
1: देखो ऐसा है कि इस समय जो है बरसात हो रही है धीरे धीरे और मौसम बड़ा सुहाना लागत है।
0: बिल्कुल भैया, आप देखो का बताई, असाड़ चल रहा है,
1: असाड़ चल रहा है, जेठ चल रहा
0: है, जेठ चल रहा है। अरे भैया अब का करी, बहुत भुलाए लागे है।
1: कल देखो बट सावित्री के पूजा है
0: यही लिए। हाँ तैयारी करत गया था हम भुलाइन के, मगर भैया देखो काहे से की हमका पता ही नहीं चल रहा है ये मौसम कौन चल रहा है, तो महीना कैसे याद रही। देखो अब हो रही गर्मी, अब पड़ रहा है बरसात। देखो
1: तो देखो जो है पानी का बड़ा महत्व है इसमें। देखो जैसे आप कहो कि असाड़ चला, तो आपके जो गलती ना है वो जो मनाई मौसम हो तो हिसाब से ऋतु का अंदाजा लगा होते इस समय। लगता है ना है कि भाई लू तो चलना है रही, रोज बदली होते, पानी होते, आंधी होते, तो पानी का देखो जब पावत है तो अपन कितना जो है सृष्टि लहलहा जाते, मतलब पूरा प्रकृति जो है नई हो जाते, धुल जाते एकदम। भाई पौधा पानी पाएगी, पेड़ पानी पाएगी तो एकदम रौनक आ जाते
0: एकदम भैया। जैसे लागत ना देखो कहूँ कहूँ देख पत्ता बढ़िया नए आ रहे हैं, और बिल्कुल जहाँ देखो हरियाली, धरती में हरियाली
1: बिल्कुल। और ऐसे जब शुद्ध पानी अपने शरीर के मिलते हैं तो शरीरों में रौनक आ जाते, शरीरों हरा भरा हो जाते, शरीर स्वस्थ हो जाते।
0: वह कहे ना कि जल ही जीवन है भैया, है ना, कहे मतलब यह है।
1: और यही के कारण देखो सरकार अपन जो है हर घर नल योजना जो है बना रही है।
0: अच्छा
1: तो ये ऐसी योजना है जेमा हर मनाई के यहाँ शुद्ध और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, क्योंकि पानी के कारण बहुत बीमारी हैं, कभी हैजा है, कहूँ पैचिस है, कहूँ जो है और प्रकार की तमाम बीमारी डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, तो ये पानी से फैलती हैं। और अगर मनाई के यहाँ शुद्ध पानी पिए का मिले लगे तो ये जो बीमारी हैं अजारी हैं ये दूर हो जाती।
0: अच्छा हाँ भैया देखो काहे से पिछले साल जो है हमारे पूरे गाँव में यहाँ जो है जो पाइप नहीं डाले जाते मजदूरन से, सरकार की तरफ से सबके घर में पाइप, मतलब गली गली में पाइप डाली गई, सबके घर में एक एक टोटी दिन गए भैया।
1: हाँ,
0: अब देखो उकर कनेक्शन टंकिस करा गया,
1: टंकिस करा गया,
0: लेकिन घर में पानी आत भैया।
1: हाँ लेकिन देखो ईमा हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो पानी है बहुत पैसा लगा के सरकार अब तक पहुंचा रही है, जो पानी बाहर खरीदा जाता है वही जो है बराबर का पानी यह है। तो भैया इका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। कहीं अगर जो टोटी आपके लीक हो रही है या कहीं पानी चुह रहा है तो उका ठीक करो, अनावश्यक न चलाओ। और वही पानी से जो है ये शुद्ध पेयजल है, इसे कहूँ गाड़ी धोना, जानवर नहलाना, कपड़ा छाटना, वही प्रकार का या सिंचाई करना ई काम ना करो।
0: बिल्कुल सही बताया भैया। देखो कहा मतलब तुम्हारी यो है कि जल संरक्षण करो, भले जैसे अब सदुपयोग के लिए और आपकी मतलब आसानी के लिए तो आएगा घर घर पानी, जैसे हम लोग पहले नलका भरे जाइत रहे बाल्टी से लेके आइत रहे, तो अब जो है टोटी खोल पानी आएगा, तो इसका मतलब नहीं कि मतलब बढ़िया बेरवा नहीं आ रहे या टोटी हमारे खराब हो गए तो बही रहा ना।
1: हाँ,
0: तो जिम्मेदारी
1: है हमारी, चीज की जिम्मेदारी, सबका ध्यान रखो, क्योंकि धरती पर जो है जल बहुत सीमित है और सीमित जल का जो सदुपयोग किया जाए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वह जल का कोई संकट नहीं।
0: और एक बात और बताइए भैया, कहूँ कहूँ जैसे हमारे गांव रहे कि अरे यो पिए वाला पानी ना आए, तो देखो यह बहुत गलत बात है। काहे से नहीं हम पता करे रहन कि यो बहुत अच्छी अंदर से गहराई से पानी आवत है, बिल्कुल पिए वाला है,
1: निकाला जाता है, और वो है मतलब गुण का पानी होता है, जैसे कि आपके यहाँ खरीदे पड़ते मॉल मिलते कहते शुद्ध पानी ले, वैसे शुद्ध पानी वो होते। और ई प्रकार के अगर योजनाएं सरकार चला रही तो हम सबकी सेहत के लिए है, लेकिन हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए, रचनात्मक सहभागिता होनी चाहिए कि कोनो प्रकार का नुकसान चीजन में ना हो।
0: बिल्कुल भैया।
1: और भैया एक बात और है, देखो अपन जो गांव जवार होते वहाँ बहुत सारी बीमारियां जारी होती, तो मनई का हो तो खर फूस तेने ठीक कर लेते, और खर फूस जी का कहा था गांव में उका हम पंच औषधि पौधा कही थे।
0: बिल्कुल भैया, जैसे हमारे जुकाम सर्दी हुए थे हम तुलसी और जो है देखो जो उनका कहा तो पत्ता जो है जराकुश ये सब पी ले थे, ठीक हो जाते हैं।
1: ऐसे देखो गांव में अपने तमाम ऐसे पौधा होते हैं जिनके गुण तो औषधि होते हैं, उनका ना कोई लगावत है, ना कोई उनका सिंचत है, ना बनावत है, लेकिन तब हम अपने उगया होते हैं और अपने गांव के आसपास बस्ती के आसपास बने रहते हैं। अब जरूरत ये बात की है कि उनका संरक्षण किया जाए, तो संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि जाना जाए कि भाई उनके में काका फायदा है, तो मैंने संरक्षण कर
0: यहाँ जाना जाए कि पौधा कौन कौन है हमारे आसपास जो पाए जाते हैं कौन कौन नहीं और उनके काका कौन कौन बीमारियां जा रही हम लोगों का उपयोग करिए
1: कैसे कहते। तो देखो आज है कि जो है डॉक्टर तरुणा पांडे बहनी जानकारी लेके आई हैं, औषधीय पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण,

0: बन जाना जाए।
1: बिल्कुल भैया,
2: भारत की धरती केवल अन्न उत्पादन के लिए नहीं बल्कि औषधीय पौधों की समृद्ध परंपरा के लिए भी विश्व भर में जानी जाती है। हमारे गांवों, खेतों और घरों के आसपास ऐसे अनेक पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग सदियों से स्वास्थ्य संरक्षण और रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। दादी नानी के घरेलू नुस्खों से लेकर आयुर्वेद तक हर जगह प्रकृति और औषधीय पौधों का विशेष महत्व है। आज आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं पौधों के औषधीय गुणों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 80% आबादी किसी न किसी रूप में हर्बल या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है। तुलसी, नीम, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसे पौधे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, संक्रमण से बचाने और अनेक बीमारियों को नियंत्रण करने में सहायक माने जाते हैं। यदि हम तुलसी की बात करें तो यह सर्दी, जुखाम और खांसी में राहत देने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। हल्दी को पारंपरिक एंटीसेप्टिक माना जाता है जो सूजन कम करने और घाव भरने में सहायता करता है। आंवला विटामिन सी का अत्यंत अच्छा स्रोत है। मोरिंगा यानी सहजन पोषक तत्वों से भरपूर पौधा है जो शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायक माना जाता है। पुदीना पाचन सुधारने और पेट संबंधी समस्याओं में लाभकारी है। वही जवा घास यानी लेमन ग्रास अपनी सुगंधित तेल एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण मानसिक ताजगी और तनाव कम करने में उपयोगी माना जाता है। जिरेनियम और रोजमेरी जैसे सुगंधित पौधे आज औषधीय और सुगंध उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रोजमेरी को स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। अश्वगंधा शरीर को ऊर्जा देने, तनाव कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। यही सर्पगंधा का उपयोग लंबे समय से उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। कौंच या कवेंच का पौधा आज वैज्ञानिक शोध का महत्वपूर्ण विषय है। इसमें पाए जाने वाले तत्व तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं और पार्किंसन रोग संबंधित शोधों में इसका विशेष भूमिका है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने चिरेता पौधे पर भी महत्वपूर्ण शोध किए हैं। चिरेता में पाए जाने वाले जैव सक्रिय तत्व स्वेटेमारिन को एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के रोगों से बचाने के लिए और पार्किंसन रोग में संबंधित लाभकारी तत्व के रूप में देखा गया है। शोध बताते हैं कि यह तत्व एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के साथ तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा में भी सहायक है। श्रोताओं, हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थान बीज औषधीय पौधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, विशेष रूप से सीमैप, सीडीआरआई, एनबीआरआई और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे संस्थान का योगदान उल्लेखनीय है। सीएसआर सीमैप ने कई उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय पौधों की किस्में विकसित की हैं, जैसे सिम आरोग्य जो आर्टिमिसिया एनुआ की एक अच्छी प्रजाति है, सिम रोय गोल्ड और अन्य कई प्रजातियां। इससे अतिरिक्त कई हर्बल उत्पाद भी विकसित हुए हैं, जैसे सोरोसिस की एक क्रीम जिसमें हम लेवेंडर का तेल का उपयोग करते हैं। हर्बीच्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे तंबाकू छोड़ने में सहायता होती है। इसमें कौच का बीज, आंवला, हल्दी, इलायची, केसर, मुलेठी और इमली जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। सिम एवरग्रीन एक एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे बीमारियों से बचाने वाली और मानसिक क्षमता बढ़ाने वाली उत्पाद है, जिससे आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस यानी दिमागी बीमारियों की समस्या जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर के रोग संबंधित लाभकारी माना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसमें महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। हाल ही में उनने अमल तस्पर किए शोध पर इनके फूल और फलों के एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां पाई गई हैं जो लीवर और किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और फैटी लिवर से भी बचाते हैं। आज मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से

0: पड़ रही हैं। जामुन, गुरमार, नीम, सदाबहार जैसे पौधे रक्त शर्करा निरीक्षण में सहायक पाए गए हैं। वैज्ञानिक शोधों में भी इनके गुणों की पुष्टि हो रही है। श्रोताओं, औषधीय खेती आज ग्रामीण क्षेत्रों में आय का एक नया माध्यम है। आयुर्वेदिक दवाएं, हर्बल चाय, प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद और हर्बल औषधियों की मांग देश और विदेश दोनों में तेजी से बढ़ रही है। कम लागत और कम पानी में तैयार होने वाले कई औषधीय फसलें ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। यदि हम ग्रामीण भाई पारंपरिक खेती के साथ तुलसी, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, सर्पगंधा या मोरिंगा जैसे पौधों की खेती अपनाएं, तो वह एक आय बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही घर के आसपास तुलसी, पुदीना, गिलोय, एलोवेरा और हल्दी जैसे पौधे लगाकर परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा भी की जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी औषधीय पौधे या हर्बल दवा का उपयोग सही जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। प्राकृतिक होने का अर्थ ये नहीं कि वह हर चीज़ और हर व्यक्ति पे पूरी सुरक्षित हो। तो श्रोताओं, प्रकृति में हमें औषधीय पौधों के रूप में एक अनमोल धरोहर दी है। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें। हमारे गांवों, खेतों और घरों में मौजूद ये औषधीय पौधे केवल बीमारियों से बचाव का समाधान नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का भी आधार हैं। यदि हम अपने आसपास तुलसी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा, मोरिंगा, लेमन ग्रास जैसे पौधे लगाएं, तो इससे न केवल परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। औषधि खेती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का एक अच्छा माध्यम बन सकती है। आज देश और विदेश में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए नई संभावनाएं लेकर आता है। साथ ही यह भी आवश्यकता है कि औषधि पौधों का उपयोग सही जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह से ही अनुसार किया जाए, ताकि उनका अधिकतम लाभ सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सके। हम इस प्रकृति से जुड़ें, औषधि पौधों का महत्व समझें, उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों तक ये इस अमूल्य परंपरा को सुरक्षित पहुँचाने का संकल्प लें।
1: ज्योति बहनी।
2: हाँ विनय भैया।
1: देखो अबहन जो है डॉक्टर तरुणा पांडे बहनी औषधीय पौधों से स्वास्थ्य संरक्षण के बारे में कितनी बढ़िया जानकारी दी, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अपन आसपास पेड़ पौधा है उनका पहचानो, उनका महत्व समझो, उनका संरक्षित करो।
2: बिल्कुल।
1: और एह के साथ देखो एक झूमर गीत हम लेके आए हैं अपने पंचन भाई के खातिर, पंच भाई बहनी के खातिर, दोनों के खातिर। गीत के बोल हैं ये झुमका जी का जंजाल रे, और गाय रही हैं राखी अग्रवाल और सीमा अग्रवाल।
2: बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए है लोकगीत।

0: ज्योति बहनी,
1: हाँ विनय भैया,
0: देखो ऐसा है कि इस समय जो मौसम चल रहा है, ये जो बताना है कि बारिश का मौसम चल रहा है, मतलब बारिश का मौसम
1: लाग रहा
0: है
1: नहीं है, मगर अब आ गया समय बारिश,
0: हो रही बारिश लगातार।
1: हाँ।
0: तो देखो ऐसा है कि जो अपन रबी फसल के बाद का समय होते है, खेत की तैयारी का समय होते है, जो गर्मी के महीना होते
1: हैं। देखो भैया, हम बहुत जगह देखे हैं कि बढ़िया धान गेहूं और सरसों काट ले हैं,
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: रबी फसल हुई उसके बाद खेत खाली छोड़ दे
0: खाली
1: हैं।
0: छोड़ना, कसकर जुताई कर दे हैं, गर्मी ना हो, मुझे एक तरह से जनरल समझ लो कि पक जाते हैं खेत, वह एक अच्छी विधि है
1: और भैया
0: क्योंकि
1: के लिए कारण भी हमका जून जनाई दे जो हमका जनाई दिए
0: हाँ
1: थे
0: हाँ बताओ।
1: उसका का कारण है कि देखो का करे खेत तो गर्मी बहुत हुई और फिर पानी बहुत सींचे पता अगर कोनो फसल ले आवे हम तो।
0: और उससे महत्वपूर्ण यह है कि जो घास फूस होते हैं वह जर जाते हैं, जो कीड़ा बीमारियां जारी होती हैं वो खत्म हो जाते हैं, और खास करके जो नीचे अंडा दे जाते हैं बीमारी के कीड़ा, वो जब मिट्टी पलट से हल्से खुल जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से खेत के जो है तैयारी भी होते हैं गर्मी की जुताई, लेकिन गर्मी की जुताई के साथ साथ बहुत पंच भाई अपन जो आईस हैं जो ई गर्मी में हाँ हरी खाद का उत्पादन भी करते हैं।
1: और भैया देखो ये अच्छा अवसर है, काहे मौसम बदल गया है,
0: हाँ तो सिंचाई करेंगे ना
1: धरती
0: परी,
1: सिंचाई करेंगे
0: नमी
1: ना
0: है,
1: परी।
0: नमी है भैया, अब आप ढैंचा के बुआई कर दो, और जब 40-45 दिन का हो जाए तो की जुताई कर
1: और
0: दो।
1: भैया देखो ढैंचा के साथ और भी हम चीजें बो
0: हाँ
1: सके,
0: बहुत
1: जैसे
0: चीजें
1: हो
0: बोल सकते
1: सकता है कि
0: हैं।
1: हम लोग जैसे लोबिया बो दे,
0: हाँ
1: मूंग बो दे, है
0: उरद
1: ना,
0: बो दी,
1: उरद बो दे,
0: अरे कोई
1: तो
0: दलहनी फसल कोई,
1: कौनो, हाँ,
0: हाँ
1: जिससे हमारे जो है जो धरती की ताकत जो है बढ़ जाए भैया।
0: बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और इससे उत्पादन पर बेहतर होते हैं, और साथ साथ एक फायदा और हो जाता है कि जब आप नमी खेत में बनाए रखा था या सिंचाई करा था, तो जब खरीफ में हो वाले खरपतवार हैं वो जम जाते हैं, जब उनकी जुताई हो जाती है तो एक तरह से उनके बीज भी खत्म हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, उनका घनत्व जो है खेत में बहुत कम
1: बिल्कुल
0: हो
1: सही
0: जाता
1: बताया
0: है।
1: भैया, कहा मतलब यो है कि जो पहले जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हम लोग

0: कर रहा है, पहले सोच रहा है खेत खाली पड़ी रही तो मजबूती आई, मगर ना अब का है कि हमका अपन सोच बदले पड़ी और हमका जो है जायद में हरी खाद के उत्पादन के लिए अपना कृषि विज्ञान केंद्र जाए के जो जी तरह का अच्छा बीज हुए ओका लेके आए के अपने खेत में बोए दिए है भैया।
1: देखो और यही के साथ में हम पंच बहन के लिए कहा कि हम तरह तरह के जानकारी अपने करके मैं लेके आए थे, और जो कृषि जगत में कुछ ऐसी हलचल या गतिविधियाँ योजनाएं या जानकारी होती हैं तो आज के दिन हम यानी शुक्रवार के दिन का किसान डायरी के रूप में लेके आए थे जो उन कृषि समाचार पर आधारित होते।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बता
1: आज
0: रहे
1: के जो आलेख है वो अरविंद कुमार शुक्ला भैया क्या है, वाचन है नीना सोनकर क्या और संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया क्या। तो आओ सुना जाए आज ये किसान डायरी।
0: बिल्कुल भैया सुन लीजिए।
2: भाइयों और बहनों नमस्कार, किसान डायरी में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है इस सप्ताह के कृषि समाचार। आज की सुर्खियां, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, यूपी में आपदा से नुकसान पर 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, उत्तर प्रदेश की 7,500 गौशालाओं में बनेगी जैविक खाद, उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों को किया 3.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान, आलू किसानों को राहत देने के लिए नई रणनीति और उत्तर प्रदेश के बागवानों के लिए लखनऊ में बनेगा आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। अब कॉमन धान का MSP 2,441 रुपए और ग्रेड ए धान का 2,461 रुपए प्रति क्विंटल होगा। ज्वार हाइब्रिड 4,023 रुपए, माल दांडी ज्वार 4,073 रुपए और बाजरा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। रागी का MSP 5,205 रुपए और मक्का का 2,410 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। दलहन पर सरकार का खास फोकस दिखा है। अरहर यानी तूर की MSP 8,450 रुपए, मूंग का 8,780 रुपए और उड़द का 8,200 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तिलहन फसलों में भी किसानों को राहत मिली है। मूंगफली 7,517 रुपए, सूरजमुखी बीज 8,343 रुपए और सोयाबीन 5,708 रुपए प्रति क्विंटल MSP पर खरीदा जाएगा। तिल का MSP 10,346 रुपए और नाइजर सीड का 10,052 रुपए तय हुआ है। सरकार का कहना है कि MSP बढ़ाने का मकसद किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम देना, खरीफ बुवाई को बढ़ावा देना और दाल तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। यूपी की 7,500 गौशालाओं में बनेगी जैविक खाद। वैश्विक उर्वरक संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है जिसके तहत प्रदेश की करीब 7,500 गौशालाओं को जैविक खाद उत्पादन के बड़े केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गो आश्रय स्थलों में गोवंश के गोबर से तैयार की गई जैविक खाद किसानों को सब्सिडी दर पर 50 किलो के पैकेट में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने गो संरक्षण अभियान के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जबकि वृहद गो संरक्षण केंद्रों के विकास के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को सस्ती प्राकृतिक खाद उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार राज्य में पहली बार गाय के गोबर को एक सशक्त आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य है कि DAP और यूरिया पर निर्भरता कम कर किसानों को प्राकृतिक खेती का एक बेहतर विकल्प दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान पर 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसमी आपदाओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेमौसम बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान पर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तर

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 3.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। सरकार का कहना है कि ये भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा गया, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और किसानों को समय पर पैसा मिला। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली के जरिए गन्ना सर्वे, पर्ची जारी करने और भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब किसानों को गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर मिल रही है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से खातों में पहुंच रहा है। गन्ना विभाग के प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की है। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिला है और प्रदेश के करीब 48 लाख गन्ना किसान परिवारों को इसका फायदा मिला। सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन चुका है। सरकार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश का औसत चीनी परता 10.21% रहा, जो महाराष्ट्र के 9.49% से अधिक है। बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार, नई मिलों की स्थापना और क्षमता बढ़ाने से 10 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का दावा किया गया है। वहीं एथेनॉल उत्पादन भी बढ़कर 188 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान के लिए एक बड़ी खबर है। आगामी पेराई सत्र के लिए अब किसानों को ऑनलाइन गन्ना क्षेत्र घोषणा यानी डिक्लेरेशन भरना अनिवार्य होगा। गन्ना विभाग की वेबसाइट पर यह फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और किसानों को इसे खुद भरना होगा। विभाग ने साफ कहा है कि जो किसान समय पर ऑनलाइन डिक्लेरेशन नहीं भरेंगे, उनका गन्ना कोटा कभी भी निरस्त किया जा सकता है। गन्ना विभाग और चीनी मिलों की संयुक्त टीम 1 मई से बिजनौर में गन्ना सर्वे कर रही है, जिसे 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले पेराई सत्र में जिले का कुल गन्ना क्षेत्र करीब 2.56 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। सर्वे टीम के खेत पर पहुंचने से 3 दिन पहले किसानों को SMS भेजकर जानकारी दी जाएगी। मैसेज में टीम प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर भी रहेगा, ताकि किसान आसानी से संपर्क कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार आलू किसानों को राहत देने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। इस बार अधिक उत्पादन और कोल्ड स्टोर भरने से किसानों को फसल बेचने में काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद सरकार ने अगले सीजन से पहले ही भंडारण, खपत और विपणन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार अब उन राज्यों में यूपी का आलू भेजने की योजना बना रही है जहां उत्पादन कम होता है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल में भी निर्यात बढ़ाने और श्रीलंका व खाड़ी देशों तक सप्लाई की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बागवानी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में बनने वाले इस सेंटर में किसानों को आम, अमरूद, लीची और एवोकाडो जैसी फसलों के रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक से तैयार इन पौधों से किसानों को बेहतर उत्पादन मिलेगा, फलों की गुणवत्ता सुधरेगी और बाजार में अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। सेंटर में खासतौर पर आम, लीची, अमरूद और तेजी से लोकप्रिय हो रहे एवोकाडो की उन्नत किस्मों पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने बागों के जीर्णोद्धार, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि फलों की बर्बादी कम हो और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सरकार निर्यात बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट और रेडिएशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक व्यवस्था का इस्तेमाल कर यूपी के फलों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ संवाद में कहा

0: किसानों के हित में जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव भी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजना यूपी को फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगी। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कृषि स्थायी समिति की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में समिति सदस्यों ने सरकार की कृषि योजनाओं की सराहना करते हुए किसानों के हित में और प्रभावी कदम उठाने के सुझाव दिए। बैठक में निराश्रित पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान को बड़ी समस्या बताया गया। इस पर नियंत्रण के लिए ठोस व्यवस्था करने और किसानों को राहत देने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समिति के सुझावों को आगामी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आधुनिक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने की अपील की। श्री शाही ने स्थायी समिति के सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए सभी रचनात्मक सुझावों को विभाग की आगामी कार्य योजनाओं में प्रभावी रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों से आह्वान किया है कि वे अपने स्तर पर भी स्थानीय किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रबी फसलों की खरीद, उर्वरक उपलब्धता, खरीफ बीज वितरण और सिंचाई योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने रबी खरीद की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए खरीद एजेंसियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना 2026-27 के तहत प्रदेश में 280 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनसे अब तक 2749 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने नेफेड, NCCF और अन्य एजेंसियों को मसूर, सरसों, चना और अरहर खरीद के निर्धारित लक्ष्यों को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम कुसुम योजना की भी समीक्षा हुई। सरकार के मुताबिक वर्ष 2013 से 2026 तक प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा सोलर पंप लगाए गए हैं, जिनमें से 91,000 से ज्यादा सोलर पंप वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्थापित हुए। किसानों को 2 से 10 HP तक के सोलर पंपों पर 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और खरीफ सीजन के लिए उन्नत बीजों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से agriculture.up.gov.in पोर्टल या जनसेवा केंद्र के माध्यम से बीजों की मांग के लिए आवेदन करने की अपील भी की है। किसान डायरी के आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार
1: ज्योति बहनी।
2: हाँ विनय भैया,
1: देखो ये तो हो गए किसान डायरी। अभी जो है जो कृषि आधारित समाचार होते हैं,
2: हाँ,
1: उनकी जानकारी दी जाते हैं।
2: हाँ भैया, देखो इका सुन के किसान पंच अवेयर रहें, जागरूक रहें।
1: हाँ।
2: तो इके लिए देखो भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर समाचार हर हफ्ते हम लोग लेके आए थे तो अच्छे से जानकारी लिए।
1: हाँ।
2: और इका सुने और सुन के अपना जो है जितनी योजनाएं हो रही है समाचार जो बोला गया है उसके अनुसार जो है अपना सुन समझ के अपना आगे अपना काम करें।
1: देखो जब जानकारी और कोई सूचना मिल जाते हैं तो मन ही का अपन कार्य करे में आसानी रहत है। और साथ साथ जैसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जो समय पर उनका मिल जाए तो उनका काम आगे बढ़ जाता है। एहत की याक जानकारी हमारे पास है और वह है नहर से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अपन हैं जिनका सिंचाई नहर से होते हैं। तो देखो जो है ये शारदा सहायक संगठन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जानकारी है। जन सामान्य संबंधित कृषक भाइयों को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज बहराइच लिंक चैनल चौधरी चरण सिंह शारदा बैराज शारदा नगर जनपद लखीमपुर खीरी शारदा सहायक पोषक नहर एवं पोषक नहर से विभिन्न जनपदों में जाए वाली मुख्य नहर रजबहा आदि के वार्षिक निरीक्षण और अनुरीक्षण के कारण के खातिर कृषि निदेशक कृषि भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ की सहमति के उपरांत मतलब सहमति के बाद में खरीफ जो है फसली 1434 सन वर्ष 2026-27 माने कि जो फसली सन है वो है और ईस्वी सन है 2026-27 में यहाँ शारदा सहायक पोषक नहर शीर्ष दिनांक 16-17 मई माने कल है परसों

0: मई 2026 के मध्य रात से ने बंद कर दीजिए,
1: हाँ भैया
0: और दिनांक 14/6/2026 के यहाँ पुनः चलाई जाए। ये बंदी के फलस्वरूप उक्त जनी नहरी से जुड़ी हैं, जो रजबाहरी से जुड़े हैं, वो सब बंद रहे हैं। तो पंच भाई के यहाँ सूचित किया जाता है कि भाई अपन से सिंचाई की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका दुरुस्त कर लें, क्योंकि ई
1: बिल्कुल
0: बीच में
1: भैया।
0: पानी ना मिली पंच भाई के यहाँ।
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: यह
1: भैया देखो, कहे से जो नहरें हैं हमारे, जैसे रक्त धमनियां हैं वैसे हमारी नहरें हैं
0: बिल्कुल
1: खेती
0: बिल्कुल,
1: किसानी के लिए।
0: लेकिन इनका
1: तो
0: देखो
1: अगर
0: एक,
1: बंद है तो अपन इंजन
0: हाँ
1: और
0: मतलब
1: बाकी जो
0: पंपिंग
1: स्रोत है,
0: सेट है या
1: तालाब
0: कुछ
1: वगैरह,
0: कुछ
1: उन सब
0: कुछ
1: का
0: कुछ,
1: सुधार के अपना जल संरक्षण
0: और
1: करें
0: बाकी
1: भैया।
0: शायद ईश्वर भी मेहरबानी की है, बीच बीच
1: हाँ
0: बारिश
1: सबसे
0: हो
1: बड़ी बात तो भैया कि
0: रहे तो जो है सिंचाई की इतनी जरूरत तो ना पड़ी।
1: बिल्कुल भैया
0: तो ये तो हो गई बात जो नहर संबंधी, और अब असली बात यह है कि जो धूल माटी है यह अपन जिंदगी है,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बताया
0: यह में
1: भैया।
0: हम पंच पैदा भाई, नह में बड़े भाई, नह में, और खेती किसानी का काम है इसे कि दिन भर तो माटी लगता है शरीर में है। तो
1: बिल्कुल
0: देखो
1: भैया
0: आज एक ऐसे गीत, किसानी गीत हम लेकर आए हैं रविशंकर देहाती भैया की आवाज़ में है, और ई गाना के बोल हैं कि यही धूल माटी में,
1: भैया,
0: तो
1: तो ये
0: सुना जाए।
1: किसानी गीत भैया सुन लीजिए।

0: विनय भैया,
1: हाँ
0: देखो हम देख रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में मौसम का जो है जानकारी है, तो दे दियो।
1: हाँ बिल्कुल, मौसम की जानकारी पंचर महन के यहाँ दे दीन जी। और देखो जो है आज क्या मौसम है उमा, आज जहाँ तहाँ बारिश हो सकत है, बौछार पड़ सकत है,
0: हाँ
1: गरज चमक के साथ बिजली हो सकत है, और बाकी जो है आगे चल के मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
0: तो भैया देखो, जिसे आज जो है जो अपना घर में जो है तो उन तैयारी वारी कर लिए, और जो उनकी कुछ बाहर पड़ा हुआ है तो उनका गुट्ठा रख लिए, अपने गोरू और हरहन का बिल्कुल सुरक्षा करें, देखभाल करें। और देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि जब मौसम खराब हुआ था तो अपने पशुओं का बाहर न रखें, है ना। और काहे से नू कि जब बहुत तेज हवा चलती है, बारिश हुआ है, तो फिर जो है हम लोगों का तो चलो हम घर के अंदर चले जाए, मगर अपने पशु जो है कहूँ बाहर अगर बंधे हैं तो उनका
1: हाँ
0: अंदर कर लिए भैया,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और
0: उनका।
1: देखो ये जो ये मौसम होते हैं, इके अपने लाभ भी हैं अपन नुकसान भी हैं। काहे तने जो मौसम अगर बार बार बदल रहा है तो सुरक्षा रखो, और खास करके अन्न भंडारण के जो बात है
0: हाँ
1: वही की बात भी हम लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ई मौसम में अन्न भंडारण कर दिया जाता है, क्योंकि नमी है वातावरण में हो, तो संभावना होता है कि आगे चल के कुछ जो है खराबी पैदा हो जाए, अनाज खराब हो जाए। तो पंचभाइन के यहाँ परामर्श दें जी कि वैज्ञानिक लोग भी बतावत हैं कि जौन अपन पंच भाई धान के, गेहूं के, अरहर के, चना के जो भी भंडारण कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं अगर भंडारण ना कहीं हो, और जब मौसम बदले तो अच्छी तरह से सुखवा लें उनका, और सुखाए के बाद उनका ठंडाए लें, फिर भंडारण करें।
0: बिल्कुल सही
1: और एक के
0: बताया
1: साथ
0: भैया।
1: साथ जो अपन कुठला हैं, डहरिया हैं, बोरा हैं, उनका भी एक बार खूब धूप दिखा लें तो वो जो है कीड़ा बीमारी से मुक्त हो जाते हैं।
0: एकदम सही बताया भैया। गेहूं जो भरी के तुरंते जो है उसका सील कर दिए ताकि हवा ना जाए
1: हवा ना जाए,
0: अंदर।
1: लेकिन एक बार जब ढंग से सूख जाए तब, क्योंकि अगर जो है सूखी है नहीं तो फिर नमी, देखो नमी कोई भी अनाज में हो तो का नुकसान पहुंचावत है।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा बतायो। और देखो इसके साथ साथ हम तुमका कल के कार्यक्रम
1: नहीं
0: बता
1: कल के
0: दे।
1: कार्यक्रम वही ना बताओ अभी, कुछ
0: अच्छा
1: और ही बातें पंच बहन से नहीं है जो नहीं बताई दी जाए। कहे तो नहीं यू है कि अगर हम पंच जो मतलब जानकारी ना दी जी समय पर, तो जो है कुछ पंच बहन का नुकसान हो सकता है या वही तरीके से लाभ ना उठा सकते हैं। तो जैसे एक सबसे बड़ी जानकारी है कि इस समय जो मौसम चल रहा है, तो
0: हाँ
1: ईमा अपन जो हरहा गुरु हैं, इनके हरे चारे की व्यवस्था जो है वह कम है। तो
0: हाँ
1: हरे चारे की जब व्यवस्था हाई, लेकिन सब किसान के पास ना ही है तो कहूँ
0: हाँ
1: कम है, तो जो अपन दूध दे वाले पशु हैं, चाहे काम करे वाले पशु हैं, उनका रातिब बढ़ा देगा चाहिए, मतलब दाना बढ़ा देगा चाहिए।
0: अच्छा भैया, बहुत सही बताया। देखो काहे सुनो कि जब ई फसल में जैसे हम हरा चारा हमारे पास जोन होते हैं वो चरी नुअत है ना जैसे, मगर अगर मान लो कोई किसान पास जमीन कम है, चरी नहीं बो
1: ना ही है
0: पाए
1: या
0: हैं,
1: तनिक विलंब हो गया है बोवा में,
0: तो
1: तो तैयार नहीं खोग लिए।
0: और देखो एक चीज़ का भैया और ध्यान रखे चाहिए कि एकदम नवा भूसा जो खेते से कट के आवे उका ना खवावे सीधे, उके साथे का करें उका पहले देख पहले उमा जो है पानी मिलाए, अच्छे से उसको भिगोए, साफ कर लिए, वही नांदी जो मैं जिम्मे चारा वारा
1: नान
0: दिए हैं,
1: मतलब दे, हाँ
0: हाँ गीला अच्छे से गीला कर लिए, तब उके बाद में है उका अपन राशन वासन मिलाए भैया उमत दिए उका।
1: और एक बात और है कि कईयों पंच भाई क्या करते हैं कि वही अपने जानवर का जो दाना देते हैं वैसे सूखा दाना दे देते हैं। तो सूखा दाना देखो अपने डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं कि सूखा दाना ना दो, या तो दाना के यहाँ खूब पहले 3-4 घंटा पहले भिगोई दो, और या फिर उका हल्के से उबाल दो जैसे कि सुपाच्य हो जाए, तो जो अपन दाना आप दे हो उका ठीक ढंग से वही पाचन कर ले
0: और
1: हैं।
0: भैया देखो गर्मी का जो मौसम है ही बदली रहा है चारों तरफ से, तो जैसे कि उनका पानी का विशेष ध्यान रखें, और दूसरा बात कि अगर मान लो कहूँ उनका दिखाई दे रहा है कि कम जुगाली कर रहे हैं या खाना कम उठा रहे हैं, तो भैया जैसे वैज्ञानिक लोग बताए ना कि मीठा सोडा दे दिए है
1: बीच
0: ना,
1: बीच जो
0: बीच
1: है
0: बीच में
1: पचास
0: दे
1: ग्राम
0: दिए,
1: पचास ग्राम दे
0: तो
1: दिया।
0: उनके
1: हाँ
0: पेट का जो है बहुत अच्छे से उनका जो है
1: पेट
0: बढ़िया
1: सफाई हो
0: सफाई हो
1: जाता
0: जाते हैं, और फिर अच्छे से खाना उठावे दाना लगाते
1: है।
0: हैं।
1: एक के साथ साथ देखो आजकल का है कि अभी

0: नहीं तो बरस रहा है, लेकिन बरसात का मौसम नहीं है। अब कई बार होते का जब सवेरे में नहीं उठा तो खूब घोर बदरी है, खूब बादल है, और के बाद तनिक देर बाद चली हवा और बादल गवा छठ एकदम धूप चिलचिलात हुई निकली। मन ही का किस की लापरवाही किस अपन हरा गोरू बाहर बांध के निकल गया, कहूँ खेते चला गया, कहूँ बाजार चला गया, कहूँ रिश्तेदारी नतीती चला गया, अब वो धूप खा गए जानवर। तो ये सुनिश्चित कहने कि भैया बदरी हो चाहे मौसम खुला हो, लेकिन अगर दोपहर में जानवर है तो उनको बाहर न बांधो। उसे दो ही कारण है, अगर जैसे पानी बरसा, कहूँ बिजली गिर जाते, कहूँ वज्रपात हो, तो कहूँ कुछ हो, तो उसे नुकसान होते, और अगर बादल उड़ाएगा धूप होगा तो उसे नुकसान होगा। तो समय के हिसाब से उनका बंधन करो कि जैसे मान लो कि अब 8-9 बज रहा है के बाद में जानवर के यहाँ छाया में, तो भले उस समय धूप ना हो, क्योंकि आजकल मौसम का भरोसा होता है, तनिक देर बाद धूप और तनिक देर बाद जो है बूंदाबांदी।
1: एकदम सही बताया भैया। देखो जो उनके साथ साथ जो हमारी जो है छोटे बच्चे हैं, जैसे बछड़ा बछड़ी है, बकरी है, ये जितनी चीजें जितनी पशुपालन में जितने भी जीव आवत हैं, उनका लिए पानी की अच्छी व्यवस्था करें। और जैसे तुम बताओ रहक तो अच्छा अंदर कर ही दिए, उनके साथ साथ गर्मी के जो मौसम रहा था ना, तो इनका अलग से इनके खान पान में बदलाव थोड़ा थोड़ा कर दिए।
0: बिल्कुल, खान पान में बदलाव करना चाहिए। देखो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि एकदम ना तो हरा चारा दो ना एकदम सूखा चारा दो, उसका मिलाए के दो धीरे धीरे, जैसे कि मात्रा बढ़ा, जैसे आप एकदम चरी आपके तैयार हो गए और पता लगा 15-20 दिन से महीना भर से लगातार भूसा खा रही, एकदम आप हरा चारा दे दो, तो हुआ भी जो जानकार लोग बताते हैं कि नुकसान हो जाते हैं। अगर आप सूखे चारे से हरे चारे पर लाए रहे हो तो आपके यहाँ थोड़ा मिलाए के धीरे धीरे की मात्रा बढ़ाओ तब का देख चाहिए, जिससे कि वो जो है उसकी आंत जो है पचाव में होकर सक्षम हो जाए और बढ़िया तरीके से उखाए, उसका पेट खराब ना हो। अब बताओ जो कल के बाद कहती रहो।
1: हाँ भैया, देखो कल के जो है कार्यक्रम बता दी कि श्रोता पंचकाल का सुनिए, तो लोकायतन जो हमारा कार्यक्रम है उमा एक वार्ता हुई, जी का विषय हुई ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, और एक वार्ता कर रही है सुशील सीतापुरी भैया, और खेती किसानी में हमारा जो है एक भेंट वार्ता लेके आई है हम लोग, तो जी का विषय हुई जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, तो डॉक्टर संदीप कुमार जो है जानकारी दे हैं, और भेंट करता रही है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो देखो एक चीज हम और अपने पंच बहन का बताई दी कि देखो हम जो पंच कार्यक्रम अपने पंचन खातिर लाए थे, तो हमारों सबका मन कहा था कि हमारे पंच भाई अपन बात हम तक पहुंचावे, कि उनका कई लाख कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया दें, अपन जो है कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो वह हम तक पहुंचावे, और कुछ का सुना चाहते हैं वहाँ पहुंचावे। तो देखो अब हम पंचन का भी ईमेल हो गया है, तो अपन ईमेल है farmandhome@gmail.com है, और दूसरा है कि पता है खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ 226001। तो ई पर अपन प्रतिक्रिया अपन संदेश तक पहुंचा सकते हैं। देखो घड़ी का इशारा बड़ी सख्ती से है, पंचन से लीन जाए आज्ञा, जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा। 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपये पेट्रोल और 88 से 91 रुपये प्रति लीटर की

0: सेक्टर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहे।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने

0: राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में हम आपको एक वार्ता सुनवा रहे हैं जिसका विषय है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान। वार्ताकार हैं श्री सुशील अवस्थी।
2: हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आदर के

साथ लिया जाता है। वह युग दृष्टा तथा युग सृष्टा साहित्यकार थे। रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में 60 अनुदित एवं मौलिक कृतियों की रचना की। द्विवेदी जी का साहित्यिक महत्व इस प्रचुर साहित्य के कारण नहीं अपितु एक युग निर्माण करने से हुआ। उन्होंने युग सापेक्ष भाषा शैली और विषय निर्धारण करते हुए उस काल का नेतृत्व किया। परतंत्रता के समय में हिंदी शासन द्वारा तिरस्कृत थी। कवि भक्ति और श्रृंगार की कविताएं ब्रजभाषा में लिखकर कवि कर्म की इतिश्री समझ लेते थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद के अभ्युदय से हिंदी गद्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई थी, किंतु अचानक भारतेंदु के अवसान के बाद नेतृत्व के अभाव में सब कुछ लड़खड़ाने लगा था। ऐसी विषम परिस्थिति में आचार्य द्विवेदी ने बागडोर संभाली। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1902 से 1920 ईस्वी तक किया। इस काल में हिंदी जगत को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वही विकासशील हिंदी का आधार बना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसी कारण से युग सृष्टा कहा गया। नागरी प्रचारिणी सभा ने सन 1932 में उन्हें हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य का सम्मान दिया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के नए युग का निर्माण किया। आचार्य द्विवेदी संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी एवं गुजराती इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट रचनाकारों और उनकी कृतियों पर ध्यान दिया। अन्य भाषाओं की अनेक कृतियों का उन्होंने अनुवाद किया। संस्कृत की कृतियों में महिम्न स्तोत्र, गंगा लहरी, रघुवंश, भामिनी विलास, अमृत लहरी, कुमार संभव प्रमुख हैं। वेकन विचार, रत्नावली, जल चिकित्सा, स्वाधीनता और शिक्षा शास्त्र तथा बंगाल में हिंदी महाभारत का द्विवेदी जी ने अनुवाद किया। इन अनुवादों का उद्देश्य हिंदी की विविध विधाओं में मौलिक कार्य शुरू हो इसके लिए हिंदी रचनाधर्मियों के समक्ष मॉडल प्रस्तुत करना था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी की वास्तविक समालोचना का आरंभकर्ता माना जा सकता है। उन्होंने कई आलोचना प्रधान कृतियों का प्रणयन किया। उन कृतियों में नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, लाला सीताराम की रचनाओं की आलोचना, हिंदी रीडर की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, समालोचना समुच्चय आदि प्रमुख हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक महत्व खड़ी बोली का परिष्कार है। संस्कृत, अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी प्रेमियों के पूर्वाग्रहों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप निर्धारण किया। युग नायक द्विवेदी ने हिंदी व्याकरण की एक कसौटी तैयार की और भाषा की शुद्धता पर हिंदी जगत में एक बहस ही छिड़वा दी। फलस्वरूप भाषा की गलतियों में सुधार हुआ और वह व्याकरण सम्मत बन सकी। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य को हर प्रकार से संपन्न बनाने के लिए उपयोगी विषयों पर भी अनेक कृतियों का प्रणयन किया। संपत्ति शास्त्र नामक उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र विषय प्रधान है। आचार्य द्विवेदी जी ने उपेक्षित महिलाओं की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने दौलतपुर गांव में नारी मंदिर बनवाकर उसमें सरस्वती और लक्ष्मी के साथ अपनी पत्नी की मूर्ति स्थापित कराई थी। सन 1928 में उन्होंने अवध के किसानों की बर्बादी शीर्षक पुस्तक की रचना कर अपने विद्रोही स्वभाव का स्वतः परिचय दिया था। द्विवेदी जी ने कविता संस्कृत काव्यों के अनुवाद से प्रारंभ की। वह निरंतर संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते रहे। जब वह मात्र 21 वर्ष के थे तब उन्होंने संस्कृत कवि पुष्पदंत के श्री महिम्न स्तोत्र का काव्य रूपांतर ब्रजभाषा में किया। यह उनकी पहली काव्य कृति थी। विनय विनोद आचार्य द्विवेदी का तीसरा काव्य रूपांतर है। उसमें कवि की मूल भावना को तो संजोए रखा है, शेष सारी भाव संपदा द्विवेदी जी की मौलिक है। देवी स्तुति शतक में कवि ने चंडी रूप को आलंबन बनाते हुए अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। इस कृति के नामकरण के अनुसार ही इसमें 100 पद संकलित हैं। आचार्य द्विवेदी ने भारतेंदु की भांति ही देशवासियों में स्वदेश प्रेम का तीव्र भाव जागृत करने के लिए वंदे मातरम, प्यारा वतन, आर्यभूमि, जय जय प्यारे भारत देश जैसी राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित कविताओं की रचना की थी। आचार्य संस्कृत के उद्भट विद्वान थे।

0: कवियों में भी वे कालिदास से सबसे अधिक प्रभावित थे। वाल्मीकि और व्यास के उपरांत वह कालिदास को ही सबसे बड़ा कवि मानते थे। आचार्य प्रवल द्वारा कालिदास के कालजयी तीन तीन महाकाव्यों का औपन्यासिक शैली में रूपांतर चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे उन्होंने पूर्ण किया था। आचार्य द्विवेदी के समस्त लेखन में जीवन चरित्रों की संख्या सर्वोपरि है। निश्चय ही वह हिंदी के सबसे बड़े जीवनीकार हैं। उन्होंने देशी और विदेशी विभूतियों की जीवनी साहित्य का विषय बनाकर अपने विश्वजनीन विराट दृष्टिकोण का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवनियों में जितनी विविधता, व्यापकता और विजन या भविष्य दृष्टि है, वही उन्हें सफल जीवनीकार के रूप में प्रतिष्ठित करती है। द्विवेदी जी द्वारा प्रणीत जीवनियां महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के चतुर्थ एवं पंचम खंड में संग्रहित हैं। इन जीवन चरित्रों के लिए आचार्य प्रवर ने रात दिन एक कर दिए हैं। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित करके भी उसे जीवनियों का रूप दिया है, ताकि सरस्वती के पाठक संस्कारित हों। जीवनियों में वह सबसे अधिक बाल गंगाधर तिलक के जीवन से प्रभावित थे, इसीलिए इस जीवनी को लिखते समय अपने आप पर नियंत्रण नहीं लगा पाए। उनकी भावुकता के आधार पर चरितनायक की महानता का सहज ही आकलन किया जा सकता है। आचार्य प्रवर लिखते हैं, तिलक तुम निसंदेह इस अभागी भारत भूमि के ललाट के तिलक थे। तुम्हारे पार्थिव शरीर के नष्ट हो जाने से उसका वह तिलक पुछ गया, तुम्हारी लोकमान्य उपाधि भी सार्थक थी। प्राचीन कवियों और विचारकों में द्विवेदी जी ने भवभूति, सुखदेव मिश्र जैसी विभूतियों के अतिरिक्त भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र भी उनकी जीवनी के विषय बने। द्विवेदी जी सरस्वती के पाठकों को देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण चरित्रों और विषयों से परिचित कराने के लिए कृत संकल्प थे, ताकि उनका पाठक समय के कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसीलिए आचार्य जी का लगभग समग्र लेखन कार्य साहित्य एवं संस्कृति, भारतीयता का गौरवगान करना अर्थात राष्ट्रीय श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना परिलक्षित करता है। आचार्य द्विवेदी के निबंधकार रूप के दर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में होते हैं। उनके निबंधों का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने वैचारिक निबंधों द्वारा खड़ी बोली कविता की सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण किया। द्विवेदी युग हिंदी निबंध के विकास का दूसरा चरण था। भारतेंदु ने विविध कला विद्या, अमित ज्ञान, अनेक प्रकार की भाषाओं से लेकर अपनी भाषा के भंडार को भरने का जो आह्वान किया था, द्विवेदी जी ने उसी लक्ष्य प्राप्त हेतु तो अपना सारा जीवन खपा दिया था। द्विवेदी जी क्रांतिदर्शी, अनुशासन प्रिय, उग्र और स्पष्टवादी थे। वह चित्र आधारित कविताओं के जनक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अहर्निश हिंदी सेवा तथा साहित्यिक पत्रकारिता को युगों युगों तक याद किया जाएगा।
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री सुशील अवस्थी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज की गाई नात और कवाली। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये नात।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की गाई नात। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम मैं हूं ना।

0: चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय

0: स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: All the BRICS members and partner countries.

0: के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: Under the three pillars of BRICS strategic partnership.
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून

0: शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level

0: gold medals from the six-member contingent. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded the historic campaign today by winning two golds and seven silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged eight bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153 for 5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends three IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुरमुज़ की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: और उसको फ्री और

0: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा करेगा।
1: पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यागानगत का इआदा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निज़ाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के ज़खायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवील मुद्दती LPG सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सनअती ताउन, बहरी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और यूएई के G24 के दरमियान 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबूजाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बज़ात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अबू ज़ाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदु किया। ब्रिक्स के वज़राए खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहीं अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज़्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक़वामी और कसीर रुखी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इक़दाम पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की ज़रूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़राए खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज़ और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहीं अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वज़ीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इख्तरा, इश्तराक और पायदार निज़ाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफ़ी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया।

0: इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानी पेशकदमी में अपने सभी शराकत दारों के साथ काम करने के तई अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़रा खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग की वसत इस अहम बात की जानब इशारा करती है कि तेजी से बदलती दुनिया में सभी रहनुमा कसीर जहती तआवुन को मुस्तहकम करने से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मीटिंग के तनाजुर में ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत मगरबी एशिया में क़याम अमन के लिए और ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अराक्ची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाज़ों को अपनाए हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराक्ची ने कहा कि अपनाए हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुजाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान भारत के किसी भी तरह के तामीरी रोल का खैर मकदम करेगा। जनाब अब्बास अराक्ची ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों के मामले में कलीदी सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद सरगाना PV कुलकर्णी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। PV कुलकर्णी केमिस्ट्री मजमून का लेक्चरर है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के अमल में शामिल था। उसे सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन में 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। CBI ने कहा है कि सभी 5 मुलजिमीन को दिल्ली में मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तफ्तीश के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया गया। नीट UG 2026 सवालिया पर्चा लीक मामले में दीगर कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ और मजीद कार्रवाई जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में पुट्टपार्थी के मकाम पर जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारा प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि नए शुरू किए गए दिफाई प्रोजेक्टों से कौमी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी, सनअती तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत के ताल्लुक से कई तरह के इकदाम का ऐलान किया है। इनमें वर्चुअल समात, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं। मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में ईंधन की खपत कम करने के लिए मरकजी सरकार की वसी तर अपील के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर की जानिब से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि अब उन मामलों की समात मजीद अहकाम तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जो ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے RG کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتا پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں

0: परेशानी जैसी अलामत नजर आने पर फौरी तौर पर इलाज कराएं। भारतीय महकमा मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरला, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक़ी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरक़ी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। CBI ने नीट UG 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने RG कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 IPS अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपकी पसंद के आज के इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शिवानी वर्मा। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, वक्त हो गया है आपके फरमाइशी गीतों को सुनने का, तो जल्दी से अपने फरमाइशी गीत हम तक पहुंचाने के लिए नोट करिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का पहला मेल हमें मिल चुका है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से। और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और साथ ही शुभदीप सिंह ने। आप सभी ने सुनना चाहा है कभी कभी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और इस कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजीनगर से। और अगला मेल हमें मिला है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से। और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विजय पाल यादव, शुभम यादव, बबलू यादव, रिचा, शिखा गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार व विजय पांडे जी। और ये लिखते हैं कि आपको व समस्त श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुभकामनाएं। और साथ ही ये लिखते हैं कि जिंदगी में कभी हार मत मानो, चाहे हालात जैसे भी हों, खुद को उठाओ, एक दिन जरूर सफलता कदम चूमेगी, बस खुद पर विश्वास रखो और बढ़ते चलो। वाकया बात कही है आपने। और इन्होंने फरमाइश की है नया दौर फिल्म के इस गीत की, तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य और राम सागर शाहू रसूलपुर वाले। आप सभी ने सुनना चाहा है आसपास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी रेडियो साथी शिवानी वर्मा के साथ। और इस कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने सांडी जनपद हरदोई से। और आपने सुनना चाहा है दिल का रिश्ता फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें भेजी है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। ये लिखते हैं कि आज माधुरी दीक्षित जी का जन्मदिन है और उन्हीं पर आधारित एक गीत सुनना चाहते हैं, और इन्होंने फरमाइश की है बेटा फिल्म के इस गीत की अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से, और इस मेल को लिखा है राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव और राम प्रसाद ने। ये लिखते हैं कि सभी को आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ के सारे प्रोग्राम जो प्रसारित किए जाते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो साथ ही इन्होंने फरमाइश की है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गोरा और काला फिल्म के इस गीत की। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशें तो अभी भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे ईमेल हैं, लेकिन अब जल्दी से हम इस कार्यक्रम में आखिरी मेल शामिल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में आखिरी मेल हमें किसने लिखा है। ये मेल भेजा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने संबलपुर कांकेर से, और इन्होंने फरमाइश की है राजकुमार फिल्म के इस गीत की लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेजना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप अपनी फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी लखनऊ। पिन कोड है 226001। अब कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

0: हेलो जेमी, राहुल आ गया अपने एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
0: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए इश्क फिल्म का गीत। आवाजें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजखुशी राम का राग चारुकेशी में पखावज वादन।

प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। ये परन हमारे गुरुदेव मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी द्वारा रचित है। इसको उन्होंने बीज परन के लिए नाम दिया है। हमने इसको हनुमत बीज कवच परन के नाम से इसको बजाया है। प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। पहले पढ़ंत देंता त्रिकद गदि गलधा त्रिकद गदि गलधा त्रिकद गदि हुं हुं हुं हनुमत हुंकार करत जब धमकी धरा दम दम कति थारति गहर हनु हनु हनु हन धागिर तक धुमगिर तक धेत्ता कृदेत्ता हं हं हं हं हाक देत कपि

कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा धा ता धा धा ता उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रें घ्रूं घ्र हनुमते नमः धा उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रें घ्रूं घ्र हनुमते नमः धा उं घ्रां घ्रीं घ्रूं घ्रें घ्रूं घ्र हनुमते नमः तथा। एक चीज ध्यान देने की है, इसमें हनुमान जी के समस्त बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है। धा

आगे तिट की परन मृदंग की विशेष परन कहलाती है और जो बहुत आवश्यक परन है। मृदंग या पखावज दोनों एक ही नाम है। लोगों को भ्रम है कि मृदंग अलग है और पखावज अलग है, लेकिन हम दोनों ही नाम एक हैं। हाँ, मृदंगम जरूर अलग है, वो दक्षिण भारतीय वाद्य है। ये चर्चा हम लोग किस कभी करेंगे। आज हम मृदंग की पर्णों की बात कर रहे हैं, पखावज के पर्णों की बात कर रहे हैं। टिट एक ये परंपरागत पर्ण है, लेकिन थोड़ा अलग हटके है। बिंता टिट कत गदी ग धा तुम गिर तक धान धकिट धान

एक बड़ी बड़ी परने तो धगतिट की बहुत मिलती हैं, जब ये अभी हमने भी बजाई है, लेकिन एक आवर्तन में ये गुरु कृपा से हमारी जिद्दत है, एक आवर्तन में आएगी। तीन परने हैं छोटी छोटी फुलझड़ी की टाइप की, तो तीन परनों में ये पहली धात संपन्न,

मतलब एक धा की तिहाई, फिर दूसरी धा, दो धा की तिहाई और फिर तीन धा की तिहाई और एक आवर्तन प्रस्तुत है छोटी पर्ने।

साईं बाबा, थोड़ा विवाद जरूर हो गया है उनके लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में जो संत हैं उनके अतीत को न देखिए। अतीत तो सबका है, वाल्मीकि जी का भी अलग था, तुलसीदास जी का भी अलग था, लेकिन जो वर्तमान था उनका और जो भविष्य था उस पर निगाह करके हमने श्री साई बाबा की परन बनाई है। और ये परन प्रस्तुत है, साई बाबा परन, ये गुरु कृपा से हमसे बन गई है, आपके सामने प्रस्तुत है। पहले पढ़ंत। जय जय शिरडी साई नाथ प्रभु, जयति जयति जय जय गंगाधर घिंद्र गिरतक ना त्रिगिरतक त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता शंकर अभयंकर प्रलयंकर धड़न्न तलन्न धाकृ धान धा धा शिव ही कृपा मैं साई नाथ प्रभु कष्ट हरन सुख करन भवतरन श्रद्धा और सबूरी मंत्र प्रदाता राज विधाता जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा जय जय श्री

एक रामपुर दरबार की है, आपके सामने प्रस्तुत है। पढ़न गदी गगन देत देत तगिनता धा त्रिगण देत देत देत धड़न नते तित तगित धगन का धगन का तणी तकित तक दिगन रान देत तगिन धा ताधा तित तित धिगित तगिन धगत तित गदिन तान धा किट किट धिगित तगिन धगत तित गदिन तान धा किट किट धिगित तगिन धगत तित गदिन तान।

जिस तरह से नृत्य में तांडव और लास्य होता है, उसी तरह हमारे पर्णों में भी तांडव और लास्य की स्थिति होती है। एक पर्ण हम आपको पहले लास्य की

अपनाएंगे और दूसरी परन तांडव की। पहली परन नाना साहब पानसे घराने की है और दूसरी परन कुदौ सिंह घराने की है। ये था लास्य। अब है तांडव।

Nana Panse घराने की। कान त्रिगृत तकत दिनता धा दिनता त्रिगृत कत्तगिन नगे नाता धा त्रिगृत कत्तगिन नगे नाता धा त्रिगृत कत्तगिन नगे नाता।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
4: पश्चिम एशिया की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz free, open or safe ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar